आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर आप हमारे कार्यक्रमों को न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की पांचवी तिथि तदनुसार 24 मई सन 2026 इस समय सुबह के 5:56 और 57 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चार दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की तीन दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े पांचवें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप हमारे कार्यक्रमों को न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, शुभारंभ मातृ वंदना से।

समूह स्वर में आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। लीजिए अब सुनिए जगजीत सिंह के स्वर में ये भजन। जमुना तट पर कृष्ण की मुरली की तान सुनकर सारी गोपियां और ग्रामवासी अपने दुख और सारे कष्टों को भूलकर उनके समीप आकर उनकी मुरली की धान में रम जाते हैं।

लीजिए यार, सुनिए जगजीत सिंह और लता मंगेशकर के स्वरों में ये वंदना। श्री नंद गोपाल श्री कृष्ण की छवि अत्यंत ही मनोरम है, जिसे देखने के लिए सारा गोकुलधाम तत्पर रहता है।

आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रकाश किरण, आज इसमें सुनिए कठोपनिषद से आत्म तत्व संबंधी विचार।

अधिकांश मनुष्य तो पुनर्जन्म में विश्वास न होने के कारण इस विषय में विचार ही नहीं करते। वे भोगों में आसक्त होकर अपने देव दुर्लभ मनुष्य जीवन को पशुवत भोगों के भोगने में ही समाप्त कर देते हैं। किंतु जिनका पुनर्जन्म में और परलोक में विश्वास है, उन विचारशील मनुष्यों के सामने जब श्रेय और प्रेय दोनों आते हैं, तब वे इन दोनों के गुण तत्व को पूर्णतया समझकर नीर क्षीर विवेकी हंस की तरह प्रेय की उपेक्षा करके श्रेय को ही ग्रहण करता है। परंतु जो मनुष्य अल्प बुद्धि है, जिसकी बुद्धि में विवेक शक्ति का अभाव है, वह श्रेय के फल में अविश्वास करके प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले लौकिक योग क्षेम की सिद्धि के लिए प्रेय को अपनाता है। वह इतना ही समझता है कि जो कुछ भोग पदार्थ प्राप्त हैं वे सुरक्षित बने रहें और जो अप्राप्त हैं वे प्रचुर मात्रा में मिल जाएं, यही योगक्षेम है।

यमराज यहाँ पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को परम प्राप्य बतलाकर उसके वाचक ओंकार को प्रतीक रूप से उसका स्वरूप बतलाते हैं। वे कहते हैं कि समस्त वेद नाना प्रकार और नाना छंदों से जिसका प्रतिपादन करते हैं, संपूर्ण तप आदि साधनों का जो एकमात्र परम और चरम लक्ष्य है तथा जिसको प्राप्त करने की इच्छा से साधक निष्ठा पूर्वक ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान किया करते हैं, उस पुरुषोत्तम भगवान का परम तत्व मैं तुम्हें संक्षेप में बतलाता हूँ। वह है ओम, यह एक अक्षर।

जीवात्मा को तो रथ का स्वामी उसमें बैठकर चलाने वाला समझो और शरीर को ही रथ समझो तथा बुद्धि को सारथी रथ को चलाने वाला समझो और मन को ही लगाम समझो।

0: इंद्रियों को घोड़े बतलाते हैं और विषयों को उन घोड़ों के विचरने का मार्ग बतलाते हैं, तथा शरीर, इंद्रिय और मन, इन सब के साथ रहने वाला जीवात्मा ही भोगता है, यूं बतलाते हैं।
1: आप सुन रहे थे प्रकाश किरण, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस का गायन। गायक स्वर है अनुराधा पौड़वाल और भूपिंदर सिंह के। संगीत निर्देशक है सतीश भाटिया।

लोमश ऋषि के शाप से ब्राह्मण शरीरधारी काकभुशुंडी को कौवे का शरीर प्राप्त हुआ, किंतु साथ ही ऋषिवर ने उन्हें राम मंत्र भी दिया। श्री राम का ध्यान करने की विधि बताकर उन्होंने श्री रामचरित सुनाया, जिसे स्वयं उन्होंने भगवान शिव से सुना था। अत्यंत प्रेम से इनके सिर पर हाथ रखकर ये वर दिया, उन्हें प्रभु कृपा प्राप्त होगी और अपनी इच्छा के अनुसार वे जो भी रूप धारण करना चाहेंगे कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण वरदान उन्हें ये प्राप्त हुआ कि अपना शरीर त्याग करने की इच्छा करने पर ही मृत्यु उनका वरण करेगी, अन्यथा नहीं। उन्हें कोई भी दोष, कोई अवगुण व्याप्त नहीं होगा और अपनी इच्छा मात्र से ही जिस उपलब्धि की कामना करेंगे वो उन्हें सहज ही प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाकर काकभुशुंडी ने गरुड़ से कहा, हे पक्षीराज, मैं यही कौवे का शरीर धारण कर 27 कल्पों से यहाँ निवास कर रहा हूँ। मुझे कौवे का शरीर इसलिए सबसे अधिक प्रिय है क्योंकि इसी शरीर से मैंने श्री राम की अविचल और अखंड भक्ति पाई है।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का गायन। गायक स्वर थे अनुराधा पौडवाल और भूपेंद्र सिंह के। संगीत निदेशक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि सामे की बेड़ा खड़ा चकोट।
1: काश्तकार भाई बहन मन, खेती चो सहायक रोजगार ने दूध बल्ले गोरस उत्पादन चो पेशा बल्ले निको आए। ये चो काजे किसान लगे जितलो गाय भैंस रले हुतलो फायदा होय से। मांतर गोरस उत्पादन चो पेशा निको चलते रहे दे और गाय भैंस के थनेला रोग बल्ले गोरस झेटी ने होतो बीती रोग हौन दिले किसान के खूबे नुकसान हो सके। आगर करुन ये रोग संकर बीती गाय भैंस जोन आगर गोरस देवात हुन मन के जौटू आए। थनेला रोग बैक्टीरिया विषाणु और वायरस नावचो जीवाणु ले जन्म आए और ये रोग गोटोक पशु ले दूसर पशु ने उफड़ते जाऊ आए। ये रोग कसन ने उफड़े से आले के सबले पहल जानू। पहला जेबे थनेला रोग जौटलोर पशु चो गोरस के दुहुन निको पशु के धोले ये रोग निको पशु के जौटुक सके। दूसर दूध दूहतर पहले गाय चो ढेटी के नगद साफ सफाई नी कर ले बले ए रोग जौन टुकलाए सके। तीसर जोन ठान ले थनेला रोग धरलो पशु बसुन उठे से और हुनी ठान ने निको पशु बसले हुन ठान चो जीवाणु मन निको पशु ने हो गेले ए रोग जौन टुकलाए सकोत। काश्तकार भाई बहन मन, ये तो रली गाय भैंस ने थनेला रोग जौट तोर कारण अदा ये चो लक्षण बल्ले रोग के चिता तोर चिना के बले जानू। ये रोग चो चिना आए गाय भैंस चो गोरस ढेटी कड़ा होय से और फुलू रहे से संगे संगे पशु के जरचे गाय से। काश्तकार भाई बहन मन, हरक चिना के मैं फेर सांगे से ये रोग चो चिना आए गाय भैंस चो गोरस ढेटी कड़ा होय से और फुलू रहे से संगे संगे पशु के जर बले चेगा है से। ढेटी मन ने खूबे दुखा रहे से हुन लगे खूब गरम बले रहे से। गोरस धूले गोरस लहू असन जन्म पातर ऐसे। किसान भाई बहन मन, ये तो रली थनेला रोग चो लक्षण बल्ले के कसन चितामा हुन चो चीना अदाय हमी ये चो रोकथाम कर तो उट के जानू जोन माई मुराए। काश्तकार भाई बहन मन, गाय भैंस गोरस उत्पादन कर तो लोग काजे खूबे मोलात ऐ काजे यमन चो रोकथाम काजे ये नगद उट मन के अपना तो राय। सबले पहल गोरस दूह तो भीता के आप लो हाथ चो नख काटून रतो राय और हाथ के साफ सुथरा धोतो राय। दूह तोर पहल गाय भैंस चो ढेटी के बले साफ पानी ने छुक छुका धोतो राय। ये चो पासे गोरस के दूह तो राय। दूसर ध्यान दे तोर गोट हो से गोरस दूह तो बीता के आप लो हाथ के 0.1% आइडोफोर जो घोल ने 30 सेकंड तक डुबाउन छुक छुका धोतो राय। हरक मय के फेर सांगे से दूसर हुआ आटा गोरस दूह तो बीता के आप लो हाथ के 0.1

0: एक प्रतिशत आइडोफोर्चो घोल ने 30 सेकंड तक डुबाउन छुक छुका धव तो राय। और तीसरा है थनेला रोग जोंटलोर पशु के भीने संघातो राय। और दूसर निको पशु मन के धूलो पाचे रोग बीती पशु के धोतो राय। और आगे नुआ नुआ गोरस देतो बीती गाय भैंस चो गोरस के धोतो राय। ये चो पाचे जुगे उम्र बीती पशु मन के धोतो राय। जसन की गाय भैंस के गोरस धोतो पहल एक दुई हार चो गोरस धार भूये घसरा हुआ मानते रस नहीं करतो राय। एक दुई हार चो गोरस धार के भूये घसरा ले थनेला रोग होलो पशु चो जीवाणु मन भूये घसरून निको रलो पशु ने जोटून हुन मन ने बले ए रोग के उफड़ाऊ सकोत। कास्तकार भाई बहन मन थनेला रोग ले गाय भैंस के बचा तो गोटोक और उपाय आसे और एक खंडिक ध्यान देऊन सुना। ये उपाय ने गोरस दूध और पाछे गाय भैंस चो ढेटी मन ने रलो जीवाणु के नाश करतो काजे 4% सोडियम डाइपोक्लोराइड 0.1% पोटेशियम परमैंगनेट 0.1% हाइड्रोफोर चो घोल तैयार करून गाय भैंस चो थन मन के ये घोल ने डंडी डुबाओ रतो राय। दादी दी मन हरक मय के फेर सांगे से ये उपाय ने गोरस दूध और पाछे गाय भैंस चो ढेटी मन ने रलो जीवाणु के नाश करतो काजे 4% सोडियम डाइपोक्लोराइट 0.1% पोटेशियम परमैंगनेट और 0.1% आइडोफोर चो घोल तैयार करून गाय भैंस चो थन मन के ये घोल ने डंडी डुबाऊन रहतो राय। किसान भाई बहन मन एवे सांगलोर उट के धरून गाय भैंस पोसले गोरस ढेटी ने धरतो रोग ले आप लोग गाय भैंस के बचाव सकासे तेबे ए मन निको गोरस उत्पादन करून किसान भाई बहन मंचो आमदनी के बढ़ा दे।
1: आप सुन रहे थे कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुकोट आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:41 हुए हैं। हुलहुली कार्यक्रम में लीजिए सुनिए गणपति कड़ियारी और साथियों का बजाया सनाह पहाड़।

होली होली कार्यक्रम में आप सुन रहे थे गणपति कड़ियारी और साथियों का बजाया सनाहा पार। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमारे कार्यक्रमों को न्यूज ऑन EIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। आज रात 9:30 पर सुनिएगा नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आज सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी, और शाम 6:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। आज सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे हल्बी समाचार बुलेटिन। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा आज सुबह 7:45 पर। आज सुबह 8:30 पर आप सुन सकते हैं विभिन्न बोलियों में लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। सुबह 9:00 सुनिएगा नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम बालवाड़ी। आज सुबह 9:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। हमारी आज की फिल्म होगी रिफ्यूजी। गुलशन कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे नए तराने, समय होगा सुबह के 10:00 का। फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम चाहत का प्रसारण किया जाएगा आज सुबह 10:30 पर। प्रस्तुति होगी आशा दुल्हानी की, संयोजन होगा चंद्र ऋषि ठाकुर का। आज सुबह 11:30 पर आप सुनेंगे लोकगीतों के कार्यक्रम गुर्दों में लोकनाथ वैष्णव और साथियों का गाया हल्बी लोकगीत। दोपहर 12:00 सुनिएगा कार्यक्रम रुसरुसा में लोक गाथा चंद्रकांत राजा, गायिका होगी शांति और साथी। दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे शहरी महिलाओं का अपना कार्यक्रम घर आंगन। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता समान आप सुन सकते हैं आज दोपहर 1:10 पर। दोपहर 2:30 पर सुनिएगा हल्बी में कार्यक्रम कला और कलाकार। हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5:00। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे युवा दोस्तों का अपना कार्यक्रम युवावाणी। शाम 6:30 पर सुनिएगा गुंडी समाचार बुलेटिन। शाम 7:00 सुनिएगा कार्यक्रम बस्तर के स्वर में कानून की बात। ग्रामीण श्रोताओं का अपना कार्यक्रम आम चुकाओ सुनिएगा आज शाम 7:21 पर। लोकगीतों कार्यक्रम बालीपुल में आज रात 8:00 आप सुनेंगे मधुराम और साथियों का गाया हल्बी लोकगीत। रात्रि 8:30 पर सुनिएगा हल्बी में कार्यक्रम पीलामन काजीकोट। आज का विषय होगा लाला लाजपत राय, प्रस्तुति होगी सुब्रू राम कश्यप की। और रात 10:00 दोना कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे मुरलीबाई और साथियों का गाया हल्बी चकार गीत। श्रोताओं दोपहर 3:00 से हम FM बैंड पर विविध भारती के कार्यक्रमों का प्रसारण करेंगे। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां हैदराबाद हाउस स्थले अद्य विदेशमंत्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अमेरिका देशीयेन विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन समं द्विपाक्षिक संवादं करिष्यति। एतौ क्षेत्रीय वैश्विक शांति सुरक्षा संबद्धान विषयान समेत्य अनेकेषु भिन्न विषयेषु चर्चां करिष्यतः इति आशास्ते। अमेरिका विदेशमंत्री गतदिने प्रातः चतुर्दिवसीय यात्रा प्रसंगे भारतं सम्प्राप्तः। द्विपक्षीय संबंधान सुदृढीकर्तुं अपि च वाणिज्य रक्षोर्जा सुरक्षा प्राविधिकी हिंद प्रशांत व्यूह रचनेत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारार्थं तस्य एषा भारत यात्रा नितरां महत्वाधायिनी वर्तते। गतवासरे सः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह भारतामेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति सन्धिं सुदृढयितुं चर्चाम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य विज्ञप्त्यनुसारि अमेरिका विदेश मन्त्रिणा रक्षा प्राविधिकी व्यापार निवेशोर्जा सुरक्षा सम्पर्क शिक्षा पारस्परिक जनसम्बन्धादिषु विविध क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य निरन्तर प्रगतेः विषये प्रधानमन्त्री संसूचितः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी शान्ति प्रयासेभ्यः भारतस्य सतत समर्थनं पुनरुदीरितवान् अपि च सम्भाषण कूटनीति माध्यमेन विवादानां शान्तिपूर्ण समाधानाय पुनरेकदा आह्वानं कृतवान्। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अद्यारभ्य भारतीय व्यापार नेतृणाम् एकेन प्रतिनिधिमण्डलेन सह कनाडादेशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। वाणिज्य मन्त्रालयेन सूचितं यत् श्रीगोयलः व्यापार निवेश भारत कनाडा व्यापकार्थिक सहभागिता वार्तालापं प्रवर्तयितुं ओटावा टोरंटो नगरयोः द्विपक्षीय समागमं करिष्यति। संसदीय कार्य सूचना प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगुनः अवदत् यत् प्रशासनं सप्तचत्वारिंशदधिक द्विसहस्रतम वर्षपर्यन्तं विकसितं भारतं इति स्वप्नं साकारयितुं प्रतिबद्धमस्ति। चेन्नई स्थिते आईसीएफ इति संस्थाने आयोजितं आजीविका मेलनं संबोधयन् सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे देशः आधारभूत संरचना विकासे वृत्त्यवसराणां वृद्धौ व्यापार सुगमतायां च तीव्रगत्या प्रगतिं करोति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तु विभागेन अद्य पूर्वीयोत्तर प्रदेशाय पूर्वीय मध्यप्रदेशाय विदर्भाय च अतितापपरा रक्तवारणिकी संचेतना प्रसारिता। भारतस्य उत्तर पश्चिमीय मध्य पूर्वीय दिग्विभागेषु कतिपय क्षेत्रेषु समाना एव स्थितिः आगामि सप्त दिवस पर्यन्तं भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। अन्ते क्रीडावार्तासु, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रो लखनऊ नगरे इकाना क्रिकेट क्रीडांगणे आयोजिते द्वन्द्वे श्रेयस अय्यरेण अर्जितानां एकोत्तर शत धावनांकानां बलेन पंजाब किंग्स दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं सप्तभिः क्रीडकैः पराजितम्। क्रीडान्ते अय्यरः स्पर्धा पुरुषः घोषितः। अद्यतने द्वन्द्वद्वये प्रथमं मुम्बय्याम् अपराह्णे सार्धत्रिवादने मुम्बई इण्डियन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन स्पर्धिष्यते। ततः सायं कोलकातायां कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स दलयोः द्वन्द्वं भविष्यति।

0: इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठकें करेंगे जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। दोनों देशों का साझा लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $70 अरब तक पहुंचाना है। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामले से जुड़े 5वें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जनसूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में ये घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत ने विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ उतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से दोपहर 3:30 बजे से होगा। दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.8 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमारे कार्यक्रमों को न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं।
4: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
5: पवन के ठंडे झोंके के साथ
4: हिलोरे लेगी
5: आकाश की वाणी।
4: आकाशवाणी
6: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
4: या फोन करें 222150 या 222400,
5: 222150 या 222400।
7: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
8: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
9: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1512।
10: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
11: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
10: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102, या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 7:10 होने को है। कुछ ही पलों में विशेष कार्यक्रम देश की वाणी आकाशवाणी, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

वाणी आकाशवाणी का देश की वाणी आकाशवाणी में सुनिए। आकाशवाणी के पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक श्री श्याम वर्मा से ली गई भेंट वार्ता, प्रस्तुत करता है दीपक खटवार।

0: देश की वाणी आकाशवाणी में आज हमारे खास मेहमान हैं आकाशवाणी रायपुर के एक ऐसे पूर्व उद्घोषक जिनकी वाणी को हमारे छत्तीसगढ़ के संगीत प्रेमी वर्षों से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सुनते आ रहे हैं और खासकर छत्तीसगढ़ी फरमाइशी कार्यक्रम में सुनने वालों को यूं लगता था कि कब उनकी आवाज इस कार्यक्रम में सुनाई देगी और उनकी आवाज का हमारे छत्तीसगढ़ के संगीत प्रेमियों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहा करता था। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं आकाशवाणी के पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक श्री श्याम वर्मा। श्याम भैया, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
0: श्याम जी, आकाशवाणी से आपका जो जुड़ाव रहा है उस यात्रा की कहानी भी बड़ी पुरानी है, तो सबसे पहले हम उस कहानी की शुरुआत की ओर जाना चाहेंगे कि रेडियो से आपका जो जुड़ाव है वो आकाशवाणी में आने से पहले किस तरह का रहा है।
1: आकाशवाणी में आने से पहले असली में क्या है कि उस जमाने में हमारे यहाँ घर में शुरू से रेडियो था, तो उस समय हम लोग बीबीसी लंदन सुना करते थे।
0: उस समय आपकी उम्र क्या रही?
1: करीबन मैं तो 11वीं पढ़ता था, तो वही 17-18 साल की उम्र रही है। तो उस समय हम लोग बीबीसी लंदन इसलिए सुनते थे कि हमारे गांव में पास में एक हाई स्कूल है 1962 से, तो सभी पढ़े लिखे थे, तो गांव का कल्चर भी अच्छा था, वहां पढ़ाई लिखाई को महत्व दिया जाता था, जो मेरा गांव है। तो उस जमाने में मैं बीबीसी लंदन सुन के नोट्स बनाया करता था।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो फिर उस समय रुझान धीरे धीरे फिर आकाशवाणी रायपुर की ओर बढ़ा और यहाँ का बहुत ही मशहूर कार्यक्रम युववाणी, तो उससे हम लोग युवा थे तो प्रेरित हुआ करते थे, तो युववाणी सुने। फिर उसके बाद सूट श्रृंगार कार्यक्रम 1 घंटे का आता था
0: जी,
1: तो उसके भी हम लोग दीवाने हो गए, क्योंकि मैं संगीत से जुड़ा हूं, तो संगीत में भी सूट श्रृंगार के कुछ गीत हम लोग गाते थे। तो धीरे धीरे धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मेरा एक भतीजा समझिए या दोस्त, वो आकाशवाणी में ईए के पद पर उसकी नियुक्ति हुई। अब उस समय हम लोग ग्रेजुएट हो गए थे, तो मैंने कहा यार मैं क्या करूं, आप तो जगदलपुर आपका पोस्टिंग हो गया, तो उसने बताया कि आकाशवाणी में नैमित्तिक उद्घोषक का जो पद है वो निकलता है, आप भरिए। तो ये बात है सन 1987। तो फिर रेडियो तो सुनता था, तो धीरे धीरे फिर रेडियो सुन के जैसे लाल राम कुमार सिंह जी है, किशन गंगेले हैं, मिर्जा मसूद जी हैं, उस समय के मशहूर उद्घोषक हुआ करते थे, तो हम लोग नकल करते थे कि ये कैसे बोलते। तो धीरे धीरे धीरे धीरे फिर मेरे भतीजे ने कहा भर दो, तो फिर मैं रायपुर आया। फिर सन 1987 में एक कार्यक्रम आया करता था श्रमिक जगत और चौपाल, तो पहले हम लोग 6:40 को श्रमिक जगत करते थे और फिर उसके बाद 7:21 को चौपाल। तो धीरे धीरे हम लोग फिर यहाँ मेरा वो उस समय चयन हो गया, इंटरव्यू दिया। फिर धीरे धीरे धीरे धीरे फिर रुझान हुआ आकस्मिक उद्घोषक की। उस समय क्या था, जैसे हम लोग केजुअल आते थे चौपाल कार्यक्रम में श्रमिक जगत में, उस समय के उद्घोषक जो होते थे हम लोगों को कंसोल, जिस दिन ड्यूटी रहती थी बोले आओ कंसोल में बैठो, तो हम लोगों को उस समय से ही कंसोल ऑपरेट करते
0: थे। 87-88 की बात,
1: 87-88 की बात, 87 की बात है,
0: बहुत पुरानी।
1: और फिर 1988 में फिर इन लोगों ने कहा कि तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम केजुअल अनाउंसर बन जाओ।
0: अच्छा।
1: तो कंसोल तो जानते ही थे, फिर केजुअल अनाउंसर 1988 से मैं नैमित्तिक उद्घोषक के रूप में यहाँ काम किया।
0: 1988 से कौन से साल तक आप नैमित्तिक उद्घोषक?
1: मैं 1996 तक।
0: 96 तक,
1: जी जी जी।
0: फिर उसके बाद आप जब परमानेंट हुए तो हमने सुना है कि आकाशवाणी रायपुर के किसी अन्य आकाशवाणी केंद्र में आप परमानेंट हुए थे, कौन सा?
1: मैं सन 1996 नवंबर में मध्य प्रदेश के आकाशवाणी शहडोल में मेरी पहली पोस्टिंग थी। और शहडोल का एक मजेदार किस्सा है कि जब मैं ज्वाइनिंग करने गया तो एक दो दिन तो मैं देखते रहा कि मेरे को ड्यूटी कब देंगे, तो वहाँ ये था कि ये नया लड़का है और इसको अभी सिखाओ। तो वहाँ के जो कार्यक्रम प्रमुख थे श्री मंगल सिंह जी, उसने कहा कि अभी सीखो। मैंने कहा सर मैं नहीं सीखूंगा, क्योंकि मैं सब जानता हूं। तो बोले कैसे जानते हो? मैंने कहा इतने साल तक मैं नैमित्तिक उद्घोषक था, तो मुझे कंसोल अनाउंसमेंट लिखना सब आता है, तो हम आपकी ड्यूटी कल लगा देते हैं। तो मेरी ड्यूटी लगी। और मजेदार देखिए कि उस समय हमारे गुरु आकाशवाणी रायपुर के किशन गंगेले जी, लाल राम कुमार सिंह जी, मिर्जा मसूद जी, कमल शर्मा जी, इनकी जो आवाज थी और इनका जो प्रसारण करने का तरीका था उसको हमने अपनाया। और वहां मैं जैसे ही पहली बार अनाउंसमेंट किया तो एक वहां का डीओ हुआ करते थे, बाद में वो एएसडी होके रिटायर्ड हुए, वो दौड़ते आ गया, बोले यार क्या है आप तो दिल्ली के अनाउंसर लगते हैं। तो मैंने कहा ये दिल्ली के अनाउंसर नहीं, ये आकाशवाणी रायपुर की देन है।
0: क्या बात। तो श्याम जी शहडोल में आप कितने साल रहे?
1: मैं शहडोल में नवम्बर 1996 से नवम्बर 1999 तक रहा।
0: तीन साल रहा वहां पर। फिर शहडोल के बाद आप रायपुर आ गए। तो वे श्याम वर्मा जो आकाशवाणी रायपुर में करीब 8 साल तक नैमित्तिक उद्घोषक थे, वे श्याम वर्मा एक परमानेंट अनाउंसर बनकर जब आकाशवाणी रायपुर आए तो उसके बाद यहां का वातावरण कैसा था? फिर कौन कौन से कार्यक्रम आपको मिले?
1: यहां का वातावरण तो वो हमारे जितने सीनियर थे वो समझते थे हमारे बीच का ही बंदा है। तो मैं आकाशवाणी रायपुर में आया तो सबसे पहले तो मुझे चौपाल कार्यक्रम दिया गया। उस समय हमारे केंद्र निदेशक हसन खान जी हुआ करते थे, चौपाल दिया। फिर धीरे धीरे मेरा जुड़ाव हुआ, फिर अनाउंसमेंट भी करता था साथ में, अनाउंसमेंट के साथ डीओ की ड्यूटी करना होता था। फिर धीरे धीरे मुझे एक लोकप्रिय कार्यक्रम राज्य बनने के बाद शुरू हुआ, उसका नाम है मोर भुइयां।
0: जी।
1: तो उस समय गोवर्धन देवांगन जी देखा करते थे, फिर मुझे भी वहां अटैच कर दिया गया। फिर उस कार्यक्रम को धीरे धीरे करते करते फिर मुझे युवाणी छत्तीसगढ़ी में जोड़ा गया।
0: अच्छा।
1: हाँ, उस समय क्या है युवाणी छत्तीसगढ़ी भी दिखता था
0: जी,
1: चौपाल तो दिखता ही था। फिर एक लोकप्रिय कार्यक्रम हुआ करता था नगर दर्पण, तो मेरी रोड ड्यूटी लगती थी, मैं रिकॉर्डिंग करने जहां भी जो जो आयोजन छत्तीसगढ़ शासन का या साहित्यिक कार्यक्रम या संगीत कार्यक्रम सभी में मुझे भेजा जाता था, वो कार्यक्रम मैंने किया। उसके बाद फिर कहा यार ये तो छत्तीसगढ़ ही जानता है, क्यों ना इसको आप मन के गीत और सुर श्रृंगार दे दिया जाए
0: जी।
1: तो आकाशवाणी रायपुर में रहते रहते मैं आप मन के गीत और सुर श्रृंगार कार्यक्रम बहुत किया। फिर धीरे धीरे धीरे धीरे मोर भुइयां अलग अलग स्वरूप में आने लगा। एक समय ऐसा था कि एक नाचा कार्यक्रम का हम लोग नाचा कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करते थे, उस समय महेश मिश्रा जी हुआ करते थे
0: जी।
1: तो मुझे यही कि ये लड़का छत्तीसगढ़ ही जानता है, इनको मिश्रा जी के साथ लगा दीजिए। तो उस जमाने में हम लोगों ने नाचा की रिकॉर्डिंग पहली बार आकाशवाणी रायपुर से हम लोगों ने जो किया वो ऐतिहासिक कार्यक्रम था। फिर धीरे धीरे हर कार्यक्रमों में, क्योंकि यहाँ आकाशवाणी में तो कोई छुट्टी अगर ले लिया तो आप इसका कार्यक्रम देखिए, तो ऐसे करके सारा कार्यक्रम मैंने गांधी चर्चा भी मैंने किया, गांधी चर्चा की रिकॉर्डिंग बहुत लंबे अरसे तक गांधी चर्चा देखा। और ये क्या है इंटरेस्ट की बात है
0: जी,
1: अगर आप मेहनत करते हैं तो ऐसे धीरे धीरे धीरे धीरे बहुत सारा कार्यक्रम करने को मिला। फिर मैं सबसे ज्यादा किया हूं बाहर की रिकॉर्डिंग,
0: ओ भी
1: कार्यक्रम
0: जी,
1: जिसमें संगीत कार्यक्रम एक रात को हुआ करता था, नाम मैं भूल रहा हूं, तो वो कार्यक्रम हम लोग गांव गांव में जाके करते थे। फिर युवाणी गांव में ये कार्यक्रम मैंने लगातार किया, ये कार्यक्रम लगभग सन 2022 तक मैंने किया। तो इसी का प्रतिसाद है कि कलाकार लोग मुझे जानते हैं। उसके बाद आकाशवाणी रायपुर में लोक संगीत कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में कलाकार लोग आते थे, फिर रिकॉर्डिंग में बेचारे बैठे रहते थे, तो मुझे हमारे पेक्स समीर जी बोलते थे यार रिकॉर्डिंग कर दो, तो मैंने लोक रंजनी का लोक संगीत का बहुत रिकॉर्डिंग किया।
0: अच्छा श्याम जी, आप जब युववाणी गांव में या इस तरह के जो कार्यक्रम स्थल ध्वनिंकन पर आधारित हुआ करते थे उनकी रिकॉर्डिंग के लिए आप गांव गांव जाते थे
1: जी जी,
0: आपके साथ में माइक तो एक ही हुआ करता था, और इतने सारे बजाने वाले गाने वाले जब बैठते थे तो एक माइक में किस तरह से आप सेट करते थे उसके बारे में कुछ
1: दीपक जी। देखिए एक अनाउंसर होता है, वो आवाज से नहीं, उसका मन मस्तिष्क कहता है कि यार इसको यहां बिठाऊं, इसको यहां बिठाऊं, इसको यहां बिठाऊं, फिर रिकॉर्डिंग हो जाएगी। एक अनाउंसर को माइक का जो तजुर्बा है वो बहुत होता है, तो मैं वैसे ही करता था, मैं सुनता कम था, पहले उनको बिठा के सुनता था, अरे ये तो बढ़िया आ रहा है। तो एक ये एक उद्घोषक या एक अच्छे प्रसारण जो करता है ये उनके ऊपर है। तो मैं अक्सर पहले आंख से देख लेता था कि जगह कैसी है, कहाँ कौन बैठे। तो एक
0: मतलब ये बड़े कमाल की बात होती थी
1: जी जी
0: कि आज के दौर में तो इतने सारे माइक्रोफोन होते हैं, ट्रैक में अलग अलग रिकॉर्डिंग की जाती है और ये सारी रिकॉर्डिंग आप एक साथ करते थे और एक माइक से करते थे
1: जी जी,
0: जिसमें गाने वाले भी दो हुआ करते थे, हारमोनियम भी साथ में हुआ करता था, बांसुरी भी, मंजीरा भी हुआ करता था, ढोलक भी हुआ करता था, तबला भी हुआ करता था। तो इस तरह से सारे साजों की और गायक कलाकारों के साथ एक माइक्रोफोन में आप रिकॉर्डिंग किया करते
1: जी, जी,
0: थे
1: जी, जी।
0: और उसकी बैलेंसिंग भी बड़ी गजब की हुआ करती थी।
1: ये कमाल हमारे यहाँ मेल्ट्रॉन जो मशीन है
0: जी
1: उसी का ही है, क्योंकि जहां तक मैं सुना हूँ सुर सिंगार के जितने भी गीत हैं सब
0: बाहर
1: की रिकॉर्डिंग है।
0: जी जी।
1: तो उसमें एक अद्भुत अद्भुत मशीन है वो, सब आवाज वो खींच लेती थी, चाहे वो गाने वाले का हो, हारमोनियम का हो। और हम लोगों का बिठाने का भी एक कला है
0: जी,
1: कि उनको गोल बिठा देते थे, बीच में माइक रखते थे, तो वो अच्छी रिकॉर्डिंग होती
0: जी,
1: थी।
0: जी जी, जी, जी। श्याम जी, आपने आकाशवाणी रायपुर में बहुत से नाटकों में और पारिवारिक धारावाहिक में भी काम किया है, तो
1: जी,
0: उसके बारे में अपने अनुभव बताएं।
1: जी अजीत सुनिए और नाटकों में, ये तो असली में मैं देखा, एक समय की बात है जब मैं नैमित्तिक उद्घोषक के रूप में आता था
0: जी,
1: मिर्जा मसूद जी उस समय एक नाटक कर रहे थे और उनको रेलवे में जो अनाउंसमेंट जो करते हैं ना, रेलवे का अनाउंसमेंट
0: जी,
1: उनके लिए एक आवाज की आवश्यकता थी। तो उन्होंने जितने भी कलाकार थे जो अप डाउन करते थे रेल से, बहुत कलाकारों को बुलाया, तो जमा नहीं। तो मिर्जा भैया एक बोले कि यार ये श्याम भी तो ट्रेन से सफर करता है। तो मुझे मिर्जा मसूद जी ने जो अनाउंसमेंट रेलवे का,
0: अच्छा,
1: आने जाने का अनाउंसमेंट दिया, मेरे लिए अद्भुत है। और मैं मिर्जा मसूद जी को इसलिए बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक पारखी निर्देशक है, उनको कैसी आवाज चाहिए, कौन चाहिए, ये मैं उस नाटक में देखा। और आपने बीच में कहा अजीत सुनिए कार्यक्रम
0: जी,
1: तो अजीत सुनिए कार्यक्रम में आपने भी खूब रोल निभाया, तो मैं भी बहुत दिनों तक अजीत सुनिए ये कार्यक्रम किया। दरअसल मैं देखा हूं कि निर्देशक जो होते हैं वो उनके ऊपर है, किनको क्या लेना है, किनको क्या लेना है। जैसे मैंने बताया एक नाटक के बारे में, वैसे ही बहुत सारे नाटकों में हमारे जो जो जो नाटक के निर्देशक हुए हैं तो वो परखते थे कि किसमें किनको लेना है, किसमें किनको लेना है। तो ऐसे करके मैं बहुत सारे सारा नाटक है उसमें काम किया। एक नाटक था उसमें एक राजा का रोल किया था, मैं आज भी सुनता हूं तो लगता है कि यार उस जमाने में हमारी आवाज कैसी थी, क्योंकि उस समय हम लोग नैमित्तिक उद्घोषक के रूप में आते थे
0: जी।
1: तो ये आकाशवाणी रायपुर का ही देन है कि उन्होंने हमें सिखाया।
0: श्याम जी, आपने आकाशवाणी रायपुर के बहुत सारे लोकप्रिय कार्यक्रमों को लगातार किया है
1: जी,
0: खासकर फरमाइशी कार्यक्रमों की अगर हम बात करें,
1: और
0: फरमाइशी कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने वाले श्याम वर्मा जी को छत्तीसगढ़ के कोने कोने के श्रोता बहुत प्यार भी करते थे
1: जी, जी।
0: जानते भी थे, मानते भी थे। आप जब यहां से निकलकर किसी गांव में, सुदूर गांव में जाते थे और लोगों को जब पता चलता था कि श्याम वर्मा जी आए हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं, किस तरह का माहौल आपको वहां का मिलता
1: जी था? ये तो बड़ा ही एक प्रसारक और एक जो श्रोता है इनके बीच का जो रिश्ता है वो तो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन गांव जाओ तो ऐसे स्वागत करते थे, नहीं भैया आपको खा के जाना है भैया, नहीं भैया ऐसा है भैया। तो वहां ये पता चलता था कि 10 किलोमीटर के जो श्रोता हैं वो भी आते थे मिलने
0: जी जी।
1: तो श्रोताओं का प्यार तो बहुत मिलता है, और ये चाहे आप आकाशवाणी में रहें या आकाशवाणी से आप रिटायर्ड भी हो गए, फिर भी उनका प्यार आपके प्रति वैसे ही रहता है। कारण ये है कि हम लंबे समय तक जिस संस्था में थे, लोग जो बोलते हैं कई बार कि नहीं रिटायर्ड होने के बाद श्रोता से कम हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं, श्रोता आज भी उतना ही प्यार करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के जो श्रोता हैं, ये श्रोता तो पूरे भारत में कहीं नहीं, महाराष्ट्र के श्रोताओं से भी मेरा उतना ही जुड़ाव है और छत्तीसगढ़ के श्रोताओं की तो बात ही अलग है। और इसी के चलते श्रोताओं का जो एकजुटता हमें दिखता है ना
0: जी,
1: बहुत अच्छा लगता है।
0: आपने तो बहुत सारे श्रोता सम्मेलन भी अटेंड किए हैं।
1: जी जी जी।
0: तो उन सम्मेलनों का कोई खास अनुभव आपको याद आ रहा होगा?
1: मैं अभी चार बड़े बड़े श्रोताओं का सम्मेलन, पटियाला गया था मैं, बागपत गया, बुलढाणा, ये तीन जगह मेरा जाना हुआ। वो तो जो श्रोता हैं वो तो ऐसा हाथों हाथ लेते हैं उद्घोषक को कि पूछे मत। लेकिन एक चीज है, लोगों को लगता है कि रेडियो के श्रोता वही कुछ वर्ग के लोग हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि रेडियो में एक बड़े उद्योगपति भी जुड़ा हुआ है, एक वैज्ञानिक भी जुड़ा हुआ है और एक शिक्षाविद भी जुड़ा रहता है। तो जब वहां जाते हैं ना, तब वो जब ये मिलते हैं तब पता चलता है कि नहीं यार, हम रेडियो में हालांकि काम करते हैं लेकिन ये जो श्रोता वर्ग हैं कितने बड़े बड़े लोग हैं, समय निकाल के कैसे रेडियो सुनते हैं। और आप जैसे ही जाएंगे तो इतनी आत्मीयता से आपको, मैं तो अभी जहां जहां गया हूं ना, तो वो तो ऑटोग्राफ के लिए उन लोग भी तरसते हैं अभी भी। लेकिन ये चीज मानना पड़ेगा कि इतने धनाढ्य होने के बाद भी श्रोता उस सम्मेलन में आते।
0: श्याम जी, जिस दिन आप आकाशवाणी से सेवानिवृत्त हुए वो तारीख कौन सी थी और उस दिन आपको कैसा लग रहा था?
1: 2022 के जनवरी के माह की अंतिम तारीख को मैं जब विदा हुआ, मुझे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ा कि मेरा कहना है कि जिस संस्था में आपने काम किया वो संस्था में रहते हुए भी आप उतना ही प्रेम करते थे और जाने के बाद भी उस संस्था को उतना ही सम्मान दीजिए। एक संस्था के लिए तो यही सबसे बड़ी बात है कि हम उस संस्था को मरते दम तक न भूलें। आकाशवाणी रायपुर को इसलिए बहुत बड़ा मानता हूं कि यहाँ बड़े बड़े प्रसारक हुए हैं जो दिल्ली तक गए हैं और यहाँ के कार्यक्रमों का जो नाम उन्होंने दिया, आज भारत के बहुत से स्टेशनों में ऐसा लगता है कि आकाशवाणी रायपुर से लिया गया कार्यक्रम का नाम।
0: श्याम जी, अभी सेवानिवृत्ति के बाद आपका समय किस तरह से कट रहा है?
1: दरअसल सेवानिवृत्ति के बाद एक तो मुझे बचपन से आदत है 3:30 बजे उठने की, फिर सुबह घूमता हूँ, घर का जो काम है वो करता हूँ। और मेरे लिए मेरे बड़े भाई ने एक बहुत बड़ा संपत्ति दिया है, वो है संगीत का, क्योंकि मेरे बड़े भैया स्वर्गीय प्रेमलाल वर्मा जी बड़ोदरा घराने के, हालांकि हम लोगों ने पूरे परिवार संगीत में रमे हुए हैं, हम लोगों ने सीखा नहीं क्योंकि उनको डरते थे, लेकिन उनके दिए हुए संगीत का भी हम लोग आनंद उठाते हैं। मैं हारमोनियम बजाता हूँ और गाता हूँ, और सबसे बड़ी बात है तो हमारा पोता आ गया है तो वो उनको पूरा समय देना पड़ता, समय का पता ही नहीं चलता, और फिर शाम को यार दोस्तों के यहाँ बैठना होता है। और एक सेवानिवृत्त कोई भी हो उनको सबसे वही संबंध बना के रखना चाहिए जो हमारा जब हम यहाँ काम करते थे उस समय का संबंध अभी काम आता है।
0: तो श्याम जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप जिस तरह से हमें दिखाई दे रहे हैं बड़े स्वस्थ और फिट लग रहे हैं, आप यूं ही स्वस्थ रहें, फिट रहें, हमेशा प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें और आकाशवाणी रायपुर की सुनहरी यादों के संग सदैव खुश रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप हमारे कार्यक्रमों को न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए हल्बी समाचार बुलेटिन।

0: जुहार, ये आकाशवाणी जगदलपुर आए हलबीने समाचार बुलेटिन संगे मैं शांति नाग। पहल आजिचो मूर खबर, स्कूल शिक्षा विभाग निजी बलों ने प्राइवेट स्कूल मन चो दखा रखा करतु काजे प्रदेश भर ने समिति मन बना ली से। राज्य सरकार खनन काम ने पारदर्शिता और शिकायत मन ने कार्रवाई करतु काजे खनन सूचना केंद्र बना ली से। नीति आयोग बाटले जारी आकांक्षी ब्लॉक मंचो चैंपियंस ऑफ द क्वार्टर रिपोर्ट ने बीजापुर चो उसूर ब्लॉक देश भर ने दूसर ठान पावली से। प्रदेश चो सपा डाकघर मन ने 25 और 26 मई के अल्प बचत खाता खोलतो काजे चलातो रोय दे विशेष अभियान। अदाय खबर मन सरसराले, छत्तीसगढ़ शासन चो स्कूल शिक्षा विभाग निजी बलों ने प्राइवेट स्कूल मन चो देखरेख करतो काजे प्रदेश भर ने समिति मन बना ली से। ये समिति अशासकीय स्कूल मन ने फीस बाढ़ती और पुस्तक ड्रेस घेन तो शिकायत मन चो जांच करे दे। ये बारे ने स्कूल शिक्षा विभाग सपा जिला कलेक्टर मन के पत्र जारी कर ली से। जारी आदेश ने बल्लो रासे की शासन चो संज्ञान ने ये गोटी ली से की छत्तीसगढ़ ने चलते बीती अशासकीय स्कूल मन बाटले माय बाप मन के किताब ड्रेस और दूसर जिनिस मन कोनी गोट की फर्म ले घेन तो काजे जोर दे सोत। हुन फर्म चो एके हार दाम कारण ने माय बाप मन उपरे पैसा चो बोझ बाड़े से। हुन मन चो झपके निराकरण काजे जिला और विकास खंड स्तर ने रेख देख और जांच समिति मन बना लो रासे। स्कूल शिक्षा विभाग एतो बीती शिक्षा सत्र काजे सरकारी स्कूल मन ने स्थानीय शुल्क बल्लो ने फीस बढ़ातो आदेश जारी कर ली से। ये नुआ दर सरकारी स्कूल मन संगे संगे स्वामी आत्मानंद स्कूल मन और अनुदान मृतो बीती स्कूल मन ने बले लागू हो दे। जारी आदेश हिसाब ने हाई स्कूल स्तर चो पढ़ते पीला मन चो फीस अदाय 410 रुपया ले बाढ़ती करून 500 रुपया कर लो रासे। हुताय उच्चतर माध्यमिक स्कूल मन चो पढ़ते पीला मन के अदाय 445 रुपया चो ठान ने 550 रुपया देतोर हो दे। विभाग चो हिसाब ने नुआ शुल्क दर मन एतो बीती शिक्षा सत्र ने लागू करतर हो दे। राज्य सरकार खनन बलों ने खुदाई काम मन ने पारदर्शिता और शिकायत मन ने तुरते कार्रवाई करतो काजे खनन सूचना केंद्र बना ली से। ये पहल भित्रे टोल फ्री नंबर 1800-233-2140 जारी कर ली से। ये नंबर ने साधारण लोग अवैध खुदाई, अवैध परिवहन और खनिज बीती अनियमितता मंचो शिकायत सीधा दर्ज करा सक दे। सूचना केंद्र के रोजी बिहाने 10 बजे ले सांझ बेरा 5:30 बजे तक चलातर हो दे। मुख्य सचिव विकासशील जल जीवन मिशन भित्रे राज्य ने नियमित पेयजल आपूर्ति और पानी चो गुण चो सरलगा जांच करतो काजे निर्देश अधिकारी मन के दिला से। हाल ने ची मंत्रालय ने राज्य जल और स्वच्छता मिशन चो अपेक्स कमेटी चो बसका जल जीवन मिशन 2.0 पीएम जन मन कार्यक्रम और PVGT बसलो बाटे पीतो पानी चो व्यवस्था संगे कैक विषय मन ने गोट बात होली। मुख्य सचिव बल्ला से की अदाय नल जल योजना मंचो नंगत चलातोर और मॉनिटरिंग ने विशेष ध्यान देतोर जरूरत आसे। छत्तीसगढ़ ने जनजातीय समुदाय मन तक शासकीय योजना मन के अमरातो काजे 28 मई ले जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलातोर हो से। अभियान भित्रे जनजातीय क्षेत्र मन ने खूबे असन जन जागरूकता कार्यक्रम चलाउन हुन लोग मन के शासकीय योजना मन चो जानकारी देतोर हो से। संगे ची आदि सेवा केंद्र मन ने जन सुनवाई करून शिकायत मंचो समाधान बले करतो होय से। प्रदेश ने पीएम जनमन योजना और धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान भीतरे बनालो लमसम 8000 गांव मन और 7000 ले आगर आदि सेवा केंद्र मन ले ये अभियान चलातोर होय से। जनजातीय गौरव उत्सव जन भागीदारी अभियान भीतरे बस्तर जिला चो 377 गांव मन ने धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान काजे दखलवा से। ये अभियान भीतरे लोग मन के सरकारी योजना मंचो जानकारी देतो संगे ची हुन मंचो समस्या मंचो निराकरण करतो होय से। अभियान दाय आयोजित होतो बीती सफाई काम मंचो प्रगति प्रतिवेदन तैयार करून हुनके आदि प्रसारण पोर्टल ने अपलोड करतो होय से। जनजातीय गरिमा उत्सव भीतरे ये अभियान काली 25 मई तक चले दे। नीति आयोग बाटले जारी देश चो आकांक्षी ब्लॉक मंचो चैंपियंस ऑफ द क्वार्टर रिपोर्ट ने बीजापुर जिला चो उसूर ब्लॉक सेंट्रल जोन ने देश भर ने दूसर ठान पावली से। आयोग स्वास्थ्य और सामाजिक बाढ़ती ले जुड़लो कई संकेतक मंचो आधार ने मूल्यांकन करू रहे। जोन थाने उसूर ब्लॉक चो प्रदर्शन खूबे नंगत मिरली। ये उपलब्धि ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिला चो लोग मन स्वास्थ्य कर्ता मन और जिला प्रशासन के बधाई दिला से। हनुमान बल्ला की उसूर ब्लॉक जो राष्ट्रीय स्तर ने दूसर ठान पाओ तो राज्य सरकार बाटले चला तो बीते योजना मंचो नंगत प्रभावी लागू होते प्रत्यक्ष प्रमाण आए। हुताय वन मंत्री केदार कश्यप बल्ला की कठिन भौगोलिक परिस्थिति होलो पाछे बले स्वास्थ्य कर्मी मन और जिला प्रशासन जोन समर्पण दखाली से हुन सहरा तो असन आए। श्री कश्यप बल्ला की सरकार तो संकल्प हर एक गांव तक बाढ़ती के अमरा तो राय। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल बाटले प्रदेश जो सपाय डाकघर मन ने 25 और 26 मई के अल्प बचत खाता खोल तो काजे विशेष अभियान चलातर हो दे। ये दाएं कोनी बले लोग आप लोग लगे चो डाकघर बल्लो ने पोस्ट ऑफिस जाऊन नहाले राज्य सरकार बाटले नियुक्त अधिकृत एजेंट मन ले अल्प बचत योजना मन जसन मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और बले कैक योजना मन ने निवेश करुक सकोत। उप मुख्यमंत्री अरुण साव गेलो 20 मई के कोंडागांव जिला चो केसकाल ने होलो बीती पहल तेलीन सती माता महोत्सव ने शामिल होला। कार्यक्रम के संबोधित करते श्री साव बल्ला की साहू समाज दूसर समाज मन संगे मिसुन छत्तीसगढ़ महतारी चो मान के पूरे आंतो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए से हुनमन आशा करला की एतो बीती बरक ने ये महातिहार के और आगर भव्य रूप ने करतर हो दे। ये मौका ने वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप और विधायक नीलकंठ टेकाम बले रला। प्रदेश ने 5 से 20 मई तक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलातर होली। ये समय ने किसान मन के आधुनिक और उन्नत खेती चो तकनीक मंच जानकारी दिला। अलेन ने बीजापुर जिला ने होलोबीती कार्यक्रम मन ने वैज्ञानिक मन और कृषि विशेषज्ञ मन किसान मन के केंद्र और राज्य सरकार चो कृषि योजना मन और खरीफ फसल मन चो तैयारी ले जुड़लो जानकारी दिला। अभियान के चलातो काजे जिला चो सपाय विकास खंड मन ने दूसर दूसर वैज्ञानिक दल बना लो रहे। ये दल मन रोजे दिना चयन कर लो गांव मन जाऊन किसान मन के बीज उपचार, मृदा परीक्षण, जैविक और प्राकृतिक खेती, जैविक उर्वरक मंच उपयोग, ग्रीष्मकालीन जोताई, रोग और कीट प्रबंधन, पौध संरक्षण और बागवानी फसल मंच उन्नत खेती के बारे में जानकारी दिला। एके छाड़ून आधुनिक कृषि यंत्र, ड्रोन तकनीक, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, मशरूम उत्पादन और मधुमक्खी पालन जैसन विषय मन ने बले किसान मन के प्रशिक्षण देतो होली। विकसित कृषि संकल्प अभियान भीतरे सुकमा जिला चो 72 ग्राम पंचायत मन ने जन जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करतर होली। अभियान दाएं वैज्ञानिक मन और कृषि विभाग चो अधिकारी मन किसान मन के केचुआ खत बनातोर, नील हरित काई उपजातोर, हरा खत, पोषण वाटिका, माटी परीक्षण और धान चो विकल्प चो रूप ने दूसर खरीफ फसल मन के अपनातो काजे प्रेरित करला। केंद्रीय अतिरिक्त सचिव और जल जीवन मिशन चो संचालक कमल किशोर सोन गेलो 20 मई के कोंडागांव जिला चो जुगानी कलार गांव ने जल जीवन मिशन भीतरे लागू होलोबीती एकल ग्राम पेयजल योजना चो निरीक्षण करला। ए दाय हुनमन योजना चो चलातोर जल वितरण प्रणाली और पानी चो गुण चो जांच प्रक्रिया के बले दखला। श्री सोन अधिकारी मन ले बल्ला की हुनमन बरसा चो पहल टंकी मन चो साफ सफाई संगे पानी चो जांच करोत। हुनमन पानी बचातोर और भूजल संवर्धन ने जुगे ध्यान देतो काजे बल्ला। आप लोग प्रवास दाएं केंद्रीय अतिरिक्त सचिव स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भीतरे बनातो बीती शौचालय मंच बारे ने बले जानकारी धरला। बस्तर संभाग चो आयुक्त डोमन सिंह गेलो 21 मई के अधिकारी मंचो बसका धरून कैक विभाग मंचो काम मंचो समीक्षा करतो संगे योजना मंचो बाढ़ती चो जानकारी धरला। हुनमन अधिकारी मन ले बल्ला की माओवाद मुक्त होलो भीतर चो क्षेत्र मन ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पीऊ तो पानी, सड़क, बिजली और आजीविका ले जुड़लो सुविधा मन दे तो काजे निर्देश दिला। बसका ने श्री सिंह राजस्व विभाग चो कामकाज चो बले समीक्षा करला और बल्ला की गांव मन ने पटेल और कोटवार मंचो खाली पद मंचो भर्ती झपके करतो हो। हुनमन ग्राम पंचायत मन ने अविवादित नामांतरण, बंटवारा प्रकरण मंचो निराकरण करतो संगे ची जमीन मालिक मन के खसरा बी वन किसान किताब और वन अधिकार पट्टा चो फौती नामांकरण चो काम के पहल करतो काजे बल्ला। बस्तर विकास प्राधिकरण चो उपाध्यक्ष लता उसेंडी गेलो 21 मई के कोंडागांव जिला चो बोलबोला गांव ने 8 लाख रुपया चो लागत ले बनतो बीती बाढ़ती काम मंचो भूमि पूजन करला। ये चो पाछे प्लाटपारा चौक लगे रंगमंच और जरे बेंद्री ने 100 मीटर सीसी सड़क बनातर हो दे। कार्यक्रम ने सुश्री उसेंडी जुआन मन के खेल समान मन बले बाटला। दंतेवाड़ा कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव गेलो दिने गाटम चो उप स्वास्थ्य केंद्र चो निरीक्षण करला। ए दाय हुन मन स्वास्थ्य केंद्र ने दवाई मंचो रतोर और मरीज मन के देतो बीती सुविधा मंचो जानकारी धरला। कलेक्टर डॉक्टर मन के स्वास्थ्य केंद्र ने एंटी स्नेक दवाई के संगातोर निर्देश दिला। बीजापुर जिला चो सागमेटा संड्रा एडापल्ली और पिलूर ग्राम पंचायत ने गेलो 22 मई के अधिकारी मन जन चौपाल लगाला। ए दाय गौरिया मन सड़क बनातोर राशन बांटतो ने होतो बीती समस्या मन पीतो पानी चो संकट स्वास्थ्य सुविधा मन चो कमी शिक्षा और दूसर मूर जरूरत मन ले जुड़लो गोट मन के अधिकारी मन चो पूरे सांगला। ए मौका ने जिला कलेक्टर विश्वदीप विभागीय अधिकारी मन के गौरिया मंचो समस्या मंचो पहल ची निराकरण करतो निर्देश दिला। हुनमन बल्ला के शासन चो पहल काम आखिरी मनुक तक योजना मंचो लाभ अमरातो राय। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण दंतेवाड़ा जिला ने 20 मई ले विशेष स्वच्छता अभियान चलातर हो 20 जून तक चलते बीती ए अभियान भीतरे ग्राम पंचायत मन ने जन जागरूकता कार्यक्रम और स्वच्छता काम मंचो आयोजन करतर हो होता है। विकास खंड समन्वयक युवोदय टीम और स्व सहायता समूह मंचो मेहरार मन घर घर जाऊन गौरिया मन के शौचालय बनातु काजे प्रेरित करसोत। अभियान भीतरे धुरली ग्राम पंचायत ने होलो कार्यक्रम ने गौरिया मन के खुला ने भाटा गेलो ने होतो बीती बीमारी मन और एचो दुष्प्रभाव मंचो जानकारी दिला। भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा चो तारीख घोषित करलो रासे। ए ऑनलाइन परीक्षा ए तो 1-5 जून तक और एचो पाछे 8-12 जून तक आयोजित करतर हो दे। एचो काजे भिलाई दुर्ग रायपुर बिलासपुर और जगदलपुर ने कुल 10 ठान परीक्षा केंद्र बना लो रासे। जोन थाने रोज दिना 4 पाली मन ने परीक्षा धर दे। सपाय पंजीकृत उम्मीदवार भारतीय सेना चो आधिकारिक वेबसाइट ने जाऊन आपलो प्रवेश पत्र डाउनलोड करुक सकोत। भारतीय सेना बाटले अग्निवीर भर्ती भीतरे अग्निवीर लिपिक और स्टोर कीपर टेक्निकल पद मन काजे आयोजित परीक्षा चो परिणाम घोषित करलो रासे। ए परीक्षा ने छत्तीसगढ़ चो 20 जन अभ्यर्थी मन पास होला से। परीक्षा परिणाम भारतीय सेना चो वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in ने आसे और सेना भर्ती कार्यालय रायपुर चो नोटिस बोर्ड ने बले दखालो रासे। लेख कर तो गोटे आए कि सेना भर्ती कार्यालय बाटले अग्निवीर लिपिक और स्टोर कीपर टेक्निकल पद मन काजे ए परीक्षा गेलो जनवरी महीना ने धमतरी ने आयोजित हो रहे। खेल और युवा कल्याण विभाग बाटले बस्तर ने आवासीय खेल अकादमी मूर करतर हो से। ए अकादमी ने एथलेटिक्स तीरंदाजी और फुटबॉल जैसन खेल मन के शामिल करतर हो दे। अकादमी ने 13-17 बरक आयु वर्ग चो लेका मन भर्ती हो सकोत। अकादमी ने भर्ती काजे चयन परीक्षा 28 और 29 मई के जगदलपुर चो धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर ने बिहाने 7 बजे ले आयोजित करतर हो दे। बड़े खेल अधिकारी सांगला के मन कर लो खिलाड़ी जरूरी प्रमाण पत्र और खेल ने मिरलो प्रमाण पत्र मन संगे 27 मई तक अमरुक सकोत। खेल अधिकारी सांगला की ट्रायल ने नंगत प्रदर्शन चो आधार ने खिलाड़ी मन चो चयन करतर हो दे। सरासरी दाय मूर खबर एक हार फिर स्कूल शिक्षा विभाग निजी बल्लो ने प्राइवेट स्कूल मंचो दखा रखा करतो काजे प्रदेश भर ने समिति मन बना ली से। राज्य सरकार खनन बल्लो ने खुदाई काम ने पारदर्शिता और शिकायत मन ने कार्रवाई करतो काजे खनन सूचना केंद्र बना ली से। नीति आयोग बाटले जारी आकांक्षी ब्लॉक मंचो चैंपियंस ऑफ द क्वार्टर रिपोर्ट ने बीजापुर चो उसूर ब्लॉक देश भर ने दूसर ठान पावली से। प्रदेश चो सफाई डाकघर मन ने 25 और 26 मई के अल्प बचत खाता खोलतो काजे चलातोर हो दे विशेष अभियान। एचे संगे हल्बी समाचार बुलेटिन चो ए अंक एथाय सरे से जुहार।
1: आप सुन रहे थे हल्बी समाचार बुलेटिन आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

0: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
1: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए फिल्म टू स्टेट से। गीतकार है अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार है शंकर एहसान लॉय और आवाज है मोहन और याशिता की।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: अगला गीत सुनिए फिल्म बुलेट राजा से। गीतकार है कैसर मुनीर, संगीतकार है साजिद वाजिद, आवाजें हैं श्रेया घोषाल और वाजिद की।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए अमिताभ भट्टाचार्य और अनुषा माने के स्वरों में फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का गीत। गीतकार है अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार है विशाल शेखर।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर

0: pmsuryaghar.gov.in.
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी, स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
3: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
4: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
2: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
3: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
2: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
0: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
7: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इसराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
2: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते सीईपीए पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
8: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्य में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स अनुसार, रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्ट पर लोकसत्य ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार, घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार, सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में, शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
2: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July. Swasth Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against four accused in Nashik TCS sexual assault and religious conversion case. U.S. President Donald Trump says Iran deal, including reopening of Strait of Hormuz, largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India, including Delhi today. And in athletics, Gurinderveer Singh wins men's 100-meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a four-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting.
10: The Quad Foreign Ministers Meet will be held on the 26th of this month. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Australian Foreign Minister Penny Wong, Japan's Foreign Minister Toshimitsu Motegi and U.S. Secretary of State Marco Rubio will participate in the meet. In keeping with the Quad vision for a free and open Indo-Pacific, they will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on the recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. With Suparna Sakya, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
9: Secretary Rubio called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. He shared U.S. perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. Prime Minister Modi asserted that India and the United States will continue to work closely for the global good. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio called India a vital partner to the United States. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met Executive Vice President, Global Public Policy and Corporate Strategy at Boeing Company, Jeff Shockey, in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Goyal said that during the meeting, both sides discussed measures on advancing India-US cooperation in aviation and aerospace manufacturing. He added that the meeting also followed discussions focused on developing maintenance, repair and overhaul opportunities, skilling, supply chains, innovation and growing India's role as a trusted global manufacturing and engineering hub. The Ayushman Bharat scheme will start in West Bengal from July this year. Chief Minister Shubhendu Adhikari announced this in Kolkata after a virtual meeting with Union Health Minister J.P. Nadda yesterday. The existing beneficiaries under the state health scheme Swasthya Sathi will be incorporated into the Ayushman Bharat scheme. The Memorandum of Understanding in connection with the Ayushman Bharat Arogya Mandir will be signed in June in New Delhi. Mr. Adhikari said that a proposal has been sent to the centre regarding an increase in the number of PM Jan Aushadhi Kendras in West Bengal from the existing 117 to 469. The Chief Minister also said that proposals for new medical colleges in Alipurduar, Kalimpong and South Dinajpur districts as well as a new AIIMS for North Bengal have also been sent to the central government. In Maharashtra, a 1,500-page charge sheet has been filed by the state special investigation team before a court in Nashik in connection with the alleged sexual assault and attempted religious conversion case linked to a TCS facility in the city. According to SIT Chief Sandeep Mitke, the charge sheet was filed yesterday against four accused, Martin Patel, Nida Khan, Danish Sheikh and Tosif Athar. He said additional charge sheets related to 7 to 8 persons connected to offences are expected to be filed within the next 3 to 4 days. Police said the first case in connection with the matter was registered at the Deolali Camp police station on the 25th of March. Officials further stated that 2 cases have been registered against Nida Khan, while 6 to 9 cases each have been registered against the other accused. Health and Family Welfare Minister JP Nadda has said that along with healthcare infrastructure, training of health experts and medical professionals is equally important. He made these remarks while addressing the 23rd convocation ceremony of the National Board of Examinations in Medical Sciences in New Delhi yesterday. Mr. Nadda emphasized that doctors serve as the software of the healthcare system, while infrastructure and other facilities function as the hardware for the nation.
11: We as policymakers give you infrastructure, but that is only going to remain as a hardware. The software is the doctor. The software are the people who are working in the field of health. I'm also happy to note that today we have started 11 new courses. I really congratulate NBEABS for this initiative that they have taken.
9: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on X handle at EIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and download the News on EIR app. The government has published draft rules under the Viksit Bharat G. Ramji Act 2025 for wider public consultation. The Rural Development Ministry said that any person, stakeholder, organization or institution may submit objections or suggestions on the draft rules for consideration by the 21st of next month. Our correspondent has the details.
0: The Viksit Bharat G. Ramji Act replaces the 20-year-old Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. The new act aims to enhance the statutory employment guarantee from 100 days to 125 days in a financial year. The ministry said that the draft rules, including transitional provisions rules, national level steering committee rules, Central Gramin Rojgar Guarantee Council rules, administrative expenses rules and grievance redressal rules have been placed in the public domain for consultation. The new act places strong emphasis on timely, transparent and accountable wage payments. The Act also provides for an unemployment allowance if work is not provided within the stipulated time. The VBG Ramji Act 2025 was notified on the 11th of this month for commencement across all the states and union territories with effect from 1st of July this year. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
9: U.S. President Donald Trump said that a deal with Iran, including opening the Strait of Hormuz, has been largely negotiated after calls with Israel and other allies in the region. Announcing progress on his Truth Social platform, Trump said final aspects and details of the deal are being discussed and will be announced shortly. President Trump said he had spoken with leaders from Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Qatar, Pakistan, Turkey, Egypt, Jordan and Bahrain along with Israel. Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Bakai earlier told state television that the US and Iranian positions had been converging in the last week but warned it did not mean agreements would be reached on key issues and accused the Americans of contradictory statements. A ceasefire in Iran was agreed on 8th of April, and since then, Washington and Tehran have engaged in talks over a long-term peace deal. In the United States, a person who opened fire near a White House security checkpoint was shot dead by Secret Service officers after they returned fire. The Secret Service said in a preliminary statement posted on X that the suspect near 17th Street and Pennsylvania Avenue pulled a weapon from his bag and began firing. Officers responded by opening fire, injuring the suspect, who was later declared dead at a hospital. The suspect was identified as a 21-year-old man, according to a law enforcement official. A bystander was also injured in the incident. U.S. President Donald Trump was inside the White House at the time of the incident. This was the third gunfire-related security incident near the president in the past month. President Draupadi Murmu will present Padma Awards for the year 2026 at the Civil Investiture Ceremony tomorrow. On this occasion, we bring 16 programs as part of our series, People's Padma on Akashwani. In these episodes, you would get an insight into the work and life of Padma awardees. These episodes would be broadcast today and tomorrow on 100.1 Akashwani Gold. It can also be heard on News on EIR app and News on EIR official YouTube channel. Stay tuned to Akashwani today and tomorrow from 9:10 a.m. onwards. The India Meteorological Department, or IMD, has forecast severe heat wave conditions today in parts of Delhi, Haryana, Chandigarh, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbh. Similar weather conditions are also likely in places over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Punjab, Rajasthan, Telangana, West Madhya Pradesh and West Uttar Pradesh. The weather agency also predicted heavy rainfall today in parts of Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim. In Meghalaya, a vibrant musical evening was held last evening at the State Convention Hall in Shillong to mark the 90 years of Akashwani's service to the nation as a public broadcaster. Jointly organized by Akashwani Shillong and Akashwani Northeastern Services, the musical evening featured dynamic performances by leading artists and bands of Meghalaya. On to sports, Gurinder Veer Singh has clinched the gold medal in the men's 100-meter event at the 2026 Athletics Federation Cup in Ranchi with a new national record timing of 10.09 seconds. He improved his previous personal best of 10.17 seconds and comfortably surpassed the Commonwealth Games qualification mark of 10.16 seconds. Animesh Kujur secured the silver medal with a timing of 10.2 seconds, while Pranav Pramod took bronze, clocking 10.29 seconds. In the men's 400-meter event, Vishal TK won the gold medal with a new national record of 44.98 seconds, becoming the first Indian athlete to break the 45-second barrier in the event. And in IPL cricket, riding an unbeaten 101 runs by skipper Shreyas Iyer, Punjab Kings defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in Lucknow last night. Chasing a target of 197 runs set by Lucknow Super Giants, Punjab Kings scored 200 for 3 in 18 overs. And now for a look at today's newspapers, it's over to Saira Mujtaba.
12: Thank you, Anuja. The visit of U.S. Secretary of State Marco Rubio and his meeting with Prime Minister Narendra Modi has been prominently covered by most of the newspapers. PM backs peace push with renewed push to repair ties in meeting with Rubio is a front page headline in Hindustan Times, while the Tribune writes, India flags energy crisis. State Secretary tows U.S. oil, extends Trump's invite to Modi to visit White House. Another headline in Hindustan Times says, headway in Iran-U.S. talks raises truce hopes. Quoting Defense Minister Rajnath Singh, a Sunday Pioneer headline says, India to be biggest weapon exporter in 25-30 years, adding the government wants private sector share in defense production to rise to 50%. The Hindu reports on new law Viksit Bharat Jiramji replacing the 20-year-old MG Narega set to come into effect from 1st of July with draft rules open for feedback till 3rd week of June. Under the headline, big poor states to get higher funds under government's new rural job scheme. Hindustan Times editorial writes how Sikkim showcases a thoughtful vision of development while respecting tradition and an exemplary social harmony to its education sector, opening the doors to the future. More red, white and blues for green card applicants, states the Economic Times, as new policy for U.S. immigration may force permanent residency seekers to return home for paperwork. And finally, the Sunday Times reports that only 6 states now have fertility rate above replacement level. The paper refers to latest sample registration report of 2024. And with that, it's back to Ganucha.
9: Thank you, Saira. And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. H. Jayashankar to hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July. Swasthya Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against 4 accused in Nashik TCS sexual assault and religious conversion case. U.S. President Donald Trump says Iran deal including reopening of Strait of Hormuz largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India, including Delhi today. And in athletics, Gurinderveer Singh wins men's 100 meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
13: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमारे कार्यक्रमों को न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है विभिन्न बोलियों में लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। कार्यक्रम का पहला लोकगीत सुनिए धुरबी में, कलाकार है कलावती और साथी।

0: अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया।
1: अरे तो बैंक को कंप्लेन करना।
0: बैंक को लिखे एक महीना हो गया है, बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहे हैं।
2: तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो।
3: रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को एक महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अगला लोगी सुनिए, हल्बी में कलाकार है सिधर और साथी।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं, आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं विभिन्न बोलियों में लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, मीठू राम और साथियों के सरों में भद्री नाट गीत।

0: अगला लोकगीत सुनिए, छत्तीसगढ़ी में कलाकार हैं डीएस पुरकर और साथी।
1: जीवो स

आप सुन रहे थे विभिन्न बोलियों में लोक गीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप हमारे कार्यक्रमों को न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम बाल बाड़ी।

0: बालवाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी बच्चों को स्मृता दीदी का ढेर सारा प्यार और बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: कैसे हैं बच्चों आप सब?
1: अच्छे।
0: तो बच्चों इसी अच्छाई के साथ हम भी आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आप सबको सुनाते हैं एक प्यारा सा कार्यक्रम जिसका नाम है
1: बालवाड़ी कार्यक्रम।
0: हाँ बच्चों, आपने कभी सोचा है हमारे इस कार्यक्रम का नाम बालवाड़ी क्यों पड़ा है? बताओ जरा सोच के। बाल याने
1: बच्चे,
0: छोटे छोटे बच्चे, और बाड़ी याने एक बगीचा, छोटी सी बगिया। तो बच्चों की बगीचा जो है वही बालवाड़ी है ना
1: जी।
0: कितना सोचकर नाम रखा है इस कार्यक्रम का। चलिए अब ये बताइए कि आप लोगों की गर्मी की छुट्टियां लग गई हैं
1: जी,
0: तो आप लोग के तो बड़े मजे होंगे
1: जी।
0: तो क्या कर रहे हैं बच्चों इन छुट्टियों में आप लोग?
1: खेल कूद
0: और
2: कहीं घूमने जा रहे हैं शादी फंक्शन में।
0: अच्छा, तो शादी का फंक्शन भी एंजॉय कर रहे हो, घूमने भी जा रहे हो दादी नानी से मिलने, और फिर खेल कूद रहे हो। लेकिन इन दिनों मौसम में काफी तेजी से गर्मी बढ़ गई है ना बच्चों
1: जी।
0: तो हमको क्या रखना है अपनी सेहत का भी?
1: ध्यान
0: रखना है। बहुत सही बात। अब ये बताइए कि इन दिनों शादी का सीजन तो है ही और गर्मी की छुट्टियां भी है, तो क्या आप सबके रिजल्ट आ गए?
3: नहीं आया है।
0: अभी नहीं आया है ना? और कुछ बच्चों को तो नया सेशन भी शुरू हो गया, तो उनके रिजल्ट तो आ गए होंगे
1: जी।
0: तो आप लोगों का परीक्षा परिणाम, जिनका रिजल्ट आ चुका है कैसा निकला?
1: अच्छा।
0: और जिनका नहीं आया है उनकी तैयारी कैसी है भाई रिजल्ट को लेकर?
1: अच्छा।
0: अच्छी है ना? तो बच्चों ये बताओ, क्या स्कूल में सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास हो जाते हैं?
1: नहीं।
0: कोई सेकंड भी आता है, कोई थर्ड भी आता है ना
1: जी।
0: तो इसका क्या मतलब है? जीवन में जो पहले स्थान पर आता है वो जीत गया और जो दूसरा पीछे रह गया वो हार गया क्या?
1: नहीं।
0: खेल हो चाहे जीवन हो चाहे कोई परीक्षा हो, उसमें दो परिणाम आते हैं, एक हार और एक जीत का, है ना? तो हार का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता बच्चों कि हम अपनी कोशिश को रोक दें, अपनी तैयारी छोड़ दें। हार का मतलब ये है कि उससे हम कुछ नया सीखें, हमारे अंदर कहाँ कमी है उसको सुधारें और फिर से नए उत्साह नए जोश के साथ कामयाबी की ओर कदम बढ़ाएं, तभी हम दूसरों की तरह पहले नंबर की सीढ़ी पर बैठ जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि नहीं?
1: जी।
0: हाँ, तो हार और जीत से आपको क्या सीखना चाहिए? जीतने के बाद घमंडी मत होना। क्या नहीं होना है?
1: घमंडी।
0: हाँ, हमको अभिमानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीत ही कोई अंतिम नहीं है और हार भी कोई अंतिम जगह नहीं है, है ना? जो आज जीता है वो कल हारेगा और जो कल हारा था वो आज जीतेगा। तो हमेशा समय बदलता रहता है, बस आप अपनी कोशिश को हमेशा करते रहिए और पूरी निष्ठा के साथ करिए, पूरे उत्साह जोश और लगन के साथ यदि आप काम करोगे तो हार जीत से बहुत ऊपर आप चले जाओगे। हार से सीखना और जीत से भी सीखना और आगे बढ़ना, यही आज की वो टिप थी जो हम आपको कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहते थे। तो कैसा लगा ये जानकर आपको?
1: अच्छा।
0: तो अब आप भी हार जीत से परेशान तो नहीं होंगे?
1: नहीं।
0: उससे सीख लेंगे ना
1: जी,
0: और कमियों में क्या करेंगे?
4: सुधार।
0: हाँ बच्चों, तो दीदी ने इतनी अच्छी बात बताई है तो दीदी के लिए भी ताली बजनी चाहिए कि नहीं? चलिए, अब ये बातें तो हो गई जो आपकी और हमारी थी, अब हम चलते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की अगली कड़ी की ओर, जो है सामुदायिक गीत।

0: बच्चों अभी आप सुन रहे थे सामुदायिक गीत, और इस गीत के बाद अब आती है बारी बच्चों की फुलवारी की। तो सबसे पहले हम बुलाते हैं आपको, आप अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम अपेक्षा ठाकुर है।
0: आप क्या सुना?
1: पहली।
0: पहली पूछेंगी? तो चलो बच्चों, बेशक छुट्टी है लेकिन दिमागी कसरत करने को तैयार हो जाओ, पूछिए।
1: फलों की रानी किस फल को कहा जाता है?
0: अच्छा बताओ, फलों का राजा तो आम है, तो रानी कौन है भाई? आप ही बता दो।
1: लीची।
0: अरे वाह, हमको भी नया चीज पता चल गया।
1: किस फल में एक भी बीज नहीं होता है?
2: केला।
0: सही जवाब।
1: कौन से जीव के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं?
2: चूहा।
0: अरे वाह।
1: किस चिड़िया का आवाज कोयल से भी मधुर होता है?
2: बुलबुल।
0: सही जवाब।
1: जी तेजी से दौड़ने के लिए कौन सा फल खाना चाहिए?
2: केला।
0: तो तालियां हो जाए भाई अपेक्षा के लिए। बहुत अच्छी पहले आपने पूछी और हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी के साथ इसके उत्तर भी दिए। चलिए अगली प्रस्तुति के लिए हम बुलाते हैं आप अपना नाम बताइए।
3: मेरा नाम कुमारी भूमिका ठाकुर है।
0: आप क्या सुनाएंगे?
3: कविता।
0: सुनाइए।
3: गर्मियों के दिन थे, सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे, सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा। उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी, वहां आम की गुठली डाल दी। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ी पानी छिड़की। वह प्रतिदिन सुबह वहां पानी डालता। कुछ दिन बीत गए, आम का पौधा नहीं निकला। उसने पानी डालना बंद कर दिया। एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। सामने ही लाल लाल कोपलों वाला नन्ना सा पौधा लगा था। पौधे देखकर ही सौरभ प्रसन्न हो उठा। पौधा निकल आया कहते कहते वह अंदर भागा। अपनी छोटी बहन रिया का हाथ पकड़कर उसने बगीचे में ले आया। पौधा देखकर प्रिया भी खुश से झूम पड़ी। सौरभ बोला, यह पौधा मैंने लगाया है, यह आम का पौधा है, इसमें खूब मीठे आम लगेंगे। दोनों भागे भागे पिताश्री के पास गए। पिताश्री बोले, क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो। प्रिया बोली, पिताश्री बगीचे में आम का पौधा निकल आया है, अगले वर्ष हम अपने बगीचे के आम खाएंगे। उसने बात सुनाकर पिताश्री प्यार से बोले, छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा, 4-5 वर्ष में यह एक बड़ा पेड़ बनेगा। इसका तना मोटा होगा, बड़ी शाखाएं होगी, तब इसमें आम लगेंगे। यह सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई। सौरभ तुरंत बोला, कोई बात नहीं, मैं पौधे की देखभाल करेंगे, एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे।
0: हमें भूमिका ने बोल के हम कविता सुनाएंगे, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी कहानी सुनाई, आम का पेड़। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली आप लोगों को? अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, हार जीत से हमें क्या सीखना चाहिए?
2: जीतना।
0: हार के कभी निराश नहीं होना, और जीतने के बाद कभी जरूरत से ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, ठीक है? ऐसे ही बच्चों, हमको आम के पेड़ से सीख मिलती है कि अगर कोई पेड़ हमें फल तुरंत न दे तो उसकी देखभाल करनी हमको छोड़नी नहीं चाहिए, हमें उसका पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है बच्चों? कैसी लगी कहानी भाई, ताली बजाओ उसके लिए। आपका नाम क्या है?
4: माय नेम इज तुषार ठाकुर।
0: आप क्या सुनाएंगे?
4: कविता।
0: सुनाइए।
4: हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, इसलिए उससे आकर बोली, तुम लगी हो बड़ी भोली, अब जागो, तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। खेली सुंदर मैं तुम्हारी, मैं के सारी गली गली, गली सड़क पर हुई लम्हे रंगे हली। तुरंत खेल के सुनकर बात साथ हवा के लगी भाग में, तितली चुने उसे चली।
0: आप अपना नाम बताइए।
5: मेरा नाम कुमारी पल्लवी मेहता।
0: क्या सुनाएंगी?
5: कहानी
0: सुनाइए।
5: एक कुएं को बहुत तेज भूख लगी थी। वह उड़ते उड़ते एक आम के पेड़ पर जा बैठा। पेड़ पर आम लगे हुए थे। पेड़ पर आमों के बीच एक पीला गुब्बारा भी लटका हुआ था। कुएं उन आमों के बीच लटका हुआ गुब्बारा एक मोटे आम जैसा लगा। जैसे ही कुएं ने खाने के लिए उस गुब्बारा में चोंच मारी, वह फूट गया। फटाक हुआ, डर कर उड़ गया वह जंगल की ओर निकल गया।
0: कहानी का शीर्षक था कौवे की भूख। तो बच्चों, कहानी सुनकर क्या सीखे आप लोग? बिना परिणाम का सोचे हमको डरना नहीं चाहिए, है ना। अगर उसने पलट कर देखा होता तो उसको सच्चाई पता चल जाती कि गुब्बारा फूटा है, कोई मुसीबत नहीं है। लेकिन बिना देखे वह डर कर भाग गया। तो परिणाम देखे बिना निर्णय तक नहीं पहुंचना चाहिए, है ना। और अब आपकी बारी, आप अपना नाम बताइए।
6: मेरा नाम कुमारी इंदु ठाकुर है।
0: आप क्या सुनाएंगे?
6: कहानी
0: सुनाइए।
6: जीशु सुबह से ही उदास बैठा था। तुम इतना उदास क्यों बैठे हो, उसके बड़े भाई मोहन ने पूछा। जीशु बोला, बाहर बहुत गर्मी है, मैं खेल नहीं पा रहा हूँ। जीशु के दो भाई बहन थे, एक थी बहन और एक भैया। जीशु की उम्र 6 साल थी। उसकी छोटी बहन का नाम मानवी था। मानवी 4 साल की थी। मोहन 9 साल का था। उसके भैया ने कहा, चलो मानवी और जीशु आइसक्रीम बनाते हैं। आइसक्रीम मानवी और जीशु एक साथ चिल्लाए। फिर तीनों रसोई घर में गए। मोहन भैया ने कहा, पहले हमें डेढ़ आटा दूध गैस पर उबालना होता है और हमें मम्मी से कहना होगा कि दूध गैस पर रख दे। फिर जीशु ने पूछा, पर हम कितना दूध लेना पड़ेगा? मोहन बोला, लगभग 1 लीटर। फिर चलो मम्मी बोलने चलते हैं, तीनों बोले। मानवी मान गई। फिर 1.5 घंटा हो गया। मानवी ने पूछा, अब क्या करना है? मोहन भैया, अब पहले यह बताओ कि किस फ्लेवर की आइसक्रीम चाहिए? मोहन ने पूछा। जीशु बोला, चॉकलेट। मानवी मोहन और मम्मी पापा सब मान गए। फिर मोहन बोला, मानवी चोको पाउडर ले आओ। और जीशु चॉकलेट बिस्कुट। दोनों ने अपना काम फटाक से कर लिया। फिर मोहन ने बिस्कुट और पाउडर को उबले हुए दूध में डाला और बोला, मानवी चीनी देना। ठीक है। मोहन ने चीनी डाली और बोला, इसे मिक्स कर लो। जीशु ने, अब हमें इसे फ्रीजर में रखना होगा, हमसे दूध गिर जाएगा, इसलिए हमें मम्मी से बोलना होगा। मम्मी ने फ्रीजर में रखा और कहा कि हमें 6-7 घंटे बाद डिनर में आइसक्रीम मिल जाएगी। यह बात मम्मी ने तब बोली जब दिन के 2:30 बज गए थे। फिर डिनर के बाद मम्मी ने आइसक्रीम परोसी। आइसक्रीम बहुत स्वादिष्ट थी। मम्मी पापा ने कहा, वाह बच्चों, आइसक्रीम बड़ी स्वादिष्ट है। आइसक्रीम खाने के बाद मम्मी ने जीशु पर बम फोड़ डाला। मम्मी ने कहा, जीशु तुम कल खेलने जा सकते हो, मगर इतनी गर्मी में। मम्मी ने तुरंत मोबाइल उठाया और वेदर कॉम खोला। फिर बोली, बेटा कल दिन में बारिश हो जाएगी। बारिश होने की वजह से शाम को भी ठंडक रहेगी। कल शाम 6:30 बजे खेलकर आ जाना। जीशु लगातार 10 मिनट कूदता रहा, फिर वह सो गया। फिर जब वह उठा, सुबह ही मौसम ठंडा था। उसने मम्मी से पूछा, मम्मी क्या आपका मोबाइल 5 मिनट के लिए ले सकता हूँ? मम्मी बोली, ठीक है जीशु। उसने मोबाइल खोला तो फिर उसने वेदर कॉम खोला। वहाँ लिखा था कि आज शाम को भी ठंडक होगी। कल शाम 6:30 बजे से 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, मगर आज बारिश की 90% संभावना है। जीशु खुश हो गया, बारिश सच में हुई और 5 बजे रुक गई। जब जीशु खेलने गया तो तापमान सिर्फ 32 डिग्री था। हर तरफ से ठंडी हवा थी। वह बहुत खुश था। वह जब घर आया तो उछलता कूदता हुआ बोला, इतना अच्छा नजारा और ठंडी ठंडी हवा मुझे प्रसन्न करती है। वह मजे में गाना गाकर नृत्य कर रहा था और साथ साथ में वही पंक्ति दोहरा रहा था, इतना अच्छा नजारा और ठंडी ठंडी हवा मुझे प्रसन्न करती है। जीशु को उछलना कूदना देखकर सब मुस्कुरा गए।
0: इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? कि मम्मी पापा हमारी खुशी में खुश होते हैं और हमारे दुख से दुखी भी। इसलिए जब वो हमको किसी काम के लिए मना करते हैं तो हमें नाराज नहीं होना चाहिए। चलिए अगली प्रस्तुति के लिए हम बुलाते हैं आपको। आप अपना नाम बताएं।
7: मेरा नाम भारती ठाकुर है।
0: आप क्या सुनाएं?
7: कविता।
0: हाँ सुनाइए।
7: मेरी प्यारी प्यारी नानी मुझे सुनाओ एक कहानी। बिस्कुट के पेड़ हो, चॉकलेट का ढेर हो, जूस का नल हो, चारों ओर फल हो, पापा लाए खूब खिलौने, मम्मी बनाए गरम पकौड़े, खूब मौज मस्ती हो, ऐसी सुनाओ एक कहानी मेरी प्यारी प्यारी नानी।
0: भाई गर्मी के दिनों में नानी के घर जाते हैं तो नानी हमको क्या सुनाती है?
8: कहानी।
0: बहुत अच्छी कविता। और अब बुलाते हैं आपको। आप अपना नाम बताइए।
9: मेरा नाम कुमारी प्रिया कश्यप है।
0: आप क्या सुनाएंगे?
9: कविता।
0: सुनाइए।
9: जन्मदिन पर पेड़ लगाओ, हरा भरा संसार बसाओ, जन्मदिन पर पेड़ लगाओ, हरियाली से है खुशहाली, सुंदरता रहने वाली, पेड़ और प्रकृति का मान नाता, जैसे हो बच्चों की माता, फूल और फल तुम पाओ, जन्मदिन पर पेड़ लगाओ।
0: बहुत अच्छी कविता हमें सुनाई प्रिया ने कि हमें जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। और जिस तरह से आज इतनी गर्मी पड़ रही है ना, अगर हमारा पर्यावरण हरा भरा होगा तो इस गर्मी से भी हमको क्या मिलेगा? छुटकारा मिलेगा। चलिए बहुत अच्छी कविता। और इसके बाद आपकी बारी। आप अपना नाम बताइए।
10: मेरा नाम कुमारी निजिशा बघेल है।
0: आप क्या सुनाएंगे?
10: कविता।
0: सुनाइए।
10: सरपट सरपट हर कोई दौड़ा, आंगन दौड़े घर भी दौड़ा, दौड़ी नदियां दौड़े खे, दौड़ पड़ी सड़कों की रे, दौड़ रहे गांव के गांव लेकर अपनी ठंडी छाव, शहरों के सरकर भी दौड़े, बड़ी इमारत पुल भी दौड़, देखो जादू का ये खेल, जादू करती जाती रेल।
0: बहुत अच्छी कविता। और अगली प्रस्तुति के लिए हम आपको बुलाते हैं। आप अपना नाम बताइए।
11: मेरा नाम भूमिका ठाकुर है।
0: आप क्या सुनाएंगे?
11: कहानी।
0: सुनाइए।
11: सड़क सुरक्षा। सड़क पर चलने के नियमों को हमेशा याद रखना चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल पर लगी लाइटों का समझना बहुत जरूरी है। लाल का अर्थ है सभी वाहन सिग्नल पर रुक जाए, पीले लाइट का अर्थ है आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाए, हरी लाइट का अर्थ है सभी वाहन आगे बढ़ जाए, सड़क पार करने के लिए हमेशा जेबरा क्रॉसिंग का प्रयोग करें, ट्रैफिक सिग्नल पर जेबरा क्रॉसिंग का सिग्नल दिखे तभी सड़क पार करें, सड़क पार करते समय दौड़े नहीं, पैदल चलने के लिए हमेशा फुटपाथ वाला रास्ता अपनाएं।
0: ट्रैफिक सिग्नल की बहुत अच्छी जानकारी हमें छोटी सी कहानी के जरिए सड़क सुरक्षा में भूमिका ने बताई और अगली प्रस्तुति के लिए हम बुलाते हैं आपको। आप अपना नाम बताइए।
8: मेरा नाम कुमारी इंदु मौर्य है।
0: आप क्या सुनाएंगी?
8: कविता। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो, बीती रात कमल दल फूले उनके ऊपर भौरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई, भोर हुआ सूरज उठ आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, ऐसा सुंदर समय न खाओ मेरे प्यारे अब मत सो।
12: ऐसा क्या है जिसे हम खाते हैं लेकिन उसे हम देख नहीं सकते?
0: बताओ बच्चों क्या है?
13: कसम।
14: सही जवाब।
12: जी, वह कौन सी चीज है जो ऊपर तो जाती लेकिन नीचे नहीं आती?
14: सही जवाब।
12: जी, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ दुनिया भर में घूमती हूँ पर घर नहीं छोड़ती, मैं क्या हूँ?
14: बताओ क्या है जो दुनिया भर को घूमती है लेकिन अपना घर नहीं छोड़ती है?
13: आँख।
14: सही जवाब।
12: जी,
14: तो तालियां हो जाए भाई इनके लिए।
0: आपका नाम बताइए।
15: मेरा नाम युवराज नाग है।
0: आप क्या पूछने वाले, क्या सुनाने वाले हैं?
15: पहेलियां।
0: पहेलियां पूछेंगे?
14: पूछिए।
15: जितना मैं सूखता हूँ उतना ही मैं गीला होता हूँ, मैं क्या हूँ?
13: तौलिया।
14: सही जवाब।
15: जी, वह क्या है जो पूरे गांव में घूमती है मगर मंदिर में जाने से डरती है?
13: चप्पल।
14: सही जवाब।
15: जी,
14: तो तालियां बजाइए।
0: आपका नाम?
16: मेरा नाम कुमारी अपेक्षा ठाकुर है।
0: आप क्या सुनाएं?
16: कविता।
0: सुनाइए।
16: बेटी ही मेरा सम्मान, बेटी पर हरदम कुर्बान, बेटी सबका गर्व कुमार, बेटी ही मेरा अभिमान, चाकू दो धारी बन जाता, बेटी वो भारी बन जाता, अपनी रक्षा आप करे जो, वैसे तो नारी बन जाना, दुनिया भर में घूमो बेटी, नाचो गाओ झूमो बेटी, पाँव धरातल पर ही रखना, बेशक नभ को चूमो बेटी।
0: बहुत प्यारी प्यारी प्रस्तुतियां थी बच्चों, आप सभी को इसके लिए धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छी कोशिश थी आप सभी बच्चों की, और इसी के साथ जब आपने इतने अच्छे कार्यक्रम की प्रस्तुति दी है तो दीदी भी चाहेंगी कि क्यों ना हम आपको एक प्यारा सा गीत सुनाएं। सुनना चाहोगे बच्चों?
2: जी।
0: तो आइए बच्चों, हम और आप मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

और इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये बालवाड़ी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अगले रविवार आप सभी से फिर ठीक 9 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बालवाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी बच्चों को स्मृता दीदी का ढेर सारा प्यार, और बच्चों जय हिंद।

आप सुन रहे थे नन्ही मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम बालवाड़ी, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप हमारे कार्यक्रमों को न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से। हमारी आज की फिल्म है रिफ्यूजी।

अभी आपने अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ों में फिल्म रिफ्यूजी का गीत सुना। श्रोताओं, फिल्म रिफ्यूजी वर्ष 2000 में बनी हिंदी भाषा की एक प्रेम कथा है, जिसके निर्माता निर्देशक हैं जेपी दत्ता। तो आइए सुनते हैं फिल्म रिफ्यूजी का एक और गीत अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ों में।

श्रुतम फिल्म रिफ्यूजी अभिनेता अभिषेक बच्चन और अभिनेत्री करीना कपूर की पहली फिल्म थी जिसमें इन दोनों के ही अभिनय को काफी पसंद किया गया और सम्मानित भी किया गया। इस फिल्म में अन्य कलाकार हैं जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, सुदेश कुलभूषण खरबंदा, अनुपम खेर, रीना राय, मुकेश तिवारी, आशीष विद्यार्थी, अवतार गिल और विश्वजीत प्रधान। तो आइए सुनते हैं फिल्म रिफ्यूजी का एक और गीत अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में ही।

श्रोताओं, आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। हमारी आज की फिल्म है रिफ्यूजी। फिल्म रिफ्यूजी के गीतों को लिखा है जावेद अख्तर ने और इसके मधुर संगीत से सजाया है अनु मलिक ने। गीतों को अपनी आवाज दी है सोनू निगम, अलका याग्निक, उदित नारायण, सुखविंदर सिंह और शंकर महादेवन ने। तो आइए सुनते हैं फिल्म रिफ्यूजी का एक और गीत। उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में

श्रोताओं, वर्ष 2000 में सफल फिल्मों में शामिल फिल्म रिफ्यूजी को काफी लोकप्रियता मिली और कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। ये फिल्म एक प्रेम कथा है जिसकी कहानी और संगीत इसकी लोकप्रियता को और बढ़ाती है और इसमें मुख्य भूमिका भी अदा करती है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अंत में फिल्म रिफ्यूजी का एक और गीत अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9:55 होने को है। कुछ पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर दिल्ली में वहां पर चर्चा करेंगे, विषयों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी 7 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और इस उपलक्ष्य में देशभर के साथ छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से सभी राज्यों में लागू हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा आज 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। इस बार परीक्षार्थियों को पहली बार फेस स्कैन सिस्टम से गुजरना पड़ा। चेहरा मैच होने के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्र के भीतर जाने की अनुमति दी गई। परीक्षा को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस परीक्षा के लिए रायपुर जिले में 22 केंद्र बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और आम लोगों को घबराकर अतिरिक्त खरीदी करने की जरूरत नहीं है। सरकार के अनुसार राज्य में करीब 3,94,00,000 लीटर पेट्रोल और 8,08,00,000 लीटर से अधिक डीजल का भंडार उपलब्ध है। किसानों और जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए ईंधन की आपूर्ति जारी है। राज्य में 22 मई से ड्रम और जेरिकन में पेट्रोल डीजल पर रोक लगाई गई है। सरकार ने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने कल जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जल जीवन मिशन के शेष कार्य समय सीमा में पूरा करने और लापरवाही पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि राज्य में जल जीवन मिशन के तहत 8,555 योजनाएं ग्राम पंचायतों को संचालन संधारण के लिए सौंपी जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में करीब 13,000, अगले वित्तीय वर्ष में 7,000 से अधिक योजनाएं पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ शासन को विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 2 माह में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि राज्य में 49,000 से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए करीब 4,000 विशेष शिक्षकों की जरूरत है। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि 848 स्वीकृत पदों में से 62 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 155 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और 85 विशेष शिक्षकों की स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होने का अवसर दिया जाए। दंतेवाड़ा में कल पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम पंजीयन शिविर माय भारत और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। इस शिविर में दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बस्तर जिले के 450 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। युवाओं ने एनएमडीसी की किरंदुल और बचेली परियोजनाओं के 142 इंटर्नशिप पदों के लिए आवेदन किया। चयनित युवाओं को एनएमडीसी में 9 महीने के इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा। इसके तहत 6,000 रूपये ज्वाइनिंग बोनस और 9,000 रूपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाएगा। बिटकॉइन में निवेश पर मुनाफा दिलाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 7,500,000 रूपये की धोखाधड़ी करने के मामले में दुर्ग पुलिस ने आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए और यूपीएससी की सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा आज 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप हमारे कार्यक्रमों को न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 10:02 हुए हैं। गुलशन कार्यक्रम में लीजिए सुनिए नए तराने। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए फिल्म कनेक्ट से। गीतकार है आकांक्षा शेट्टी, संगीतकार है पृथ्वी चंद्रशेखर, गायक स्वर है बेनी दयाल और हारनिया नफीसा के।

अगला गीत सुनिए फिल्म गदर 2 से। गीतकार है सैयद कादरी, संगीतकार है मिथुन और आवाज है अरिजीत सिंह की।

तू झूठी मैं मक्कार। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजों में। गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत था प्रीतम का। ताइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत अरिजीत सिंह और मनन भरद्वाज की आवाजों में। गीतकार है मनन भरद्वाज और संगीतकार भी है मनन भरद्वाज। फिल्म का नाम है यारियां 2।

एनिमल लीजिए अब कार्यक्रम के अंत में इस फिल्म का गीत सुनिए। गीतकार है सिद्धार्थ गरिमा, संगीतकार है श्रेयस पुरनिक और आवाज है अरिजीत सिंह की।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलशन। आज आप इसमें सुन रहे थे नए तराने। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हमारे कार्यक्रमों को न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम चाहत। प्रस्तुति है आशा दुल्हानी की, संयोजक है चंद्र ऋषि ठाकुर।
1: एक प्यारी सी मुस्कान और ढेर सारी गर्मजोशी के साथ आप सभी श्रोताओं को इस खास रविवार की बेहद खूबसूरत सुबह का सादर नमस्कार। श्रोताओं, बाहर गर्मी का पारा भले ही धीरे धीरे चढ़ रहा है, लेकिन आज की इस फुर्सत का सुकून ही कुछ अलग है। अपनों के बीच बैठना और रेडियो ऑन करके पसंदीदा गीतों में खो जाना, यही तो इस छुट्टी के दिन का असली मजा है। और जब आप और हम साथ हो तो इस तपते मौसम में भी बातों और गानों की ठंडी फुहारें छिड़कना तो बनता ही है। तो चलिए दिलों के फासलों को कम करते हैं और देखते हैं कि आज की इस सुहानी सुबह सबसे पहले कौन से श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेते हैं आज की पहली कॉल।
2: हेलो चाहत
1: जी। हाँ, फोन इन चाहत से बोल रहे हैं।
2: परम आदरणीय दीदी, सादर नमस्कार।
1: कौन बोल रहे हैं आप, बताइए
2: जी। मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं, वहाँ मौसम कैसा है?
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रजापति जी हमारे कार्यक्रम फोन इन चाहत में। जी मैं बहुत अच्छी हूँ और यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है। आप सुनाइए, आप क्या करते हैं शारदा प्रसाद जी?
2: जी मैं एक दृष्टिहीन व्यक्ति हूँ, घर पर रहता हूँ बच्चों के साथ में जी। और आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनना मेरा शौक है, दीवानगी है, जुनून है। आप लोग से वार्तालाप करके मुझे बेहद खुशी होती है, मेरा दिल हृदय प्रफुल्लित और गदगद हो जाता है जब कॉल लग और आपसे वार्तालाप होती है। आप लोग कार्यक्रम इतने अच्छे से तैयार करके हमारे श्रोताओं के लिए प्रस्तुत करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपका प्रयास तो सफल हो रही है।
1: हमें भी बहुत खुशी होती है कि जब श्रोता लोग हमारे कार्यक्रम को पसंद करते हैं, हमारे कार्यक्रमों की सराहना करते हैं, और आपको जो आकाशवाणी जगदलपुर के कार्यक्रम पसंद करते हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है शारदा प्रसाद जी। चलिए तो आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
2: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है गाइड, किशोर कुमार साहब के साथ में लता मंगेशकर जी ने गीत को गाया है और गीत के बोल हैं गाता है।

0: हेलो, फोन इन चाहत।
1: हेलो, फोन इन चाहत।
0: जी हाँ, फोन इन चाहत से बोल रहे हैं।
1: नमस्ते मैडम।
0: जी नमस्ते, आप कौन बोल रहे हैं?
1: राम मामड़ साहब दरबार ब्लॉक से।
0: गणपत बघेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस कार्यक्रम फोन इन चाहत में। और सुनाइए, कैसा चल रहा है?
1: धन्यवाद मैडम, आपके साथ पहली बार बात हो रहा है फोन इन चाहत में मेरा।
0: जी जी जी, क्या करते हैं आप गणपत बघेल जी?
1: खेती किसानी है मैडम अभी।
0: अच्छा, खेती।
1: थोड़ा बहुत मक्का लगाए हैं, तो एक हफ्ते के बाद मक्का तोड़ेंगे
0: जी। उसके बाद आपने मतलब बारिश की सीजन के लिए क्या तैयारी करके रखी है अपनी खेती में?
1: बारिश के सीजन के लिए तो उसके बाद मक्का खत्म होने के बाद धान लगाएंगे।
0: अच्छा,
1: तो अभी तैयारी हो रहा है। मैडम जी, मैं दो लाइन बोलना चाहता हूँ।
0: जी हाँ, बिल्कुल बोलिए।
1: मेरी है सदा का हाइना तुझसे है, मेरी है मंजिल का रास्ता तुझसे है, कभी दूर ना होना मेरी जिंदगी से, मेरी है खुशी का वास्ता तुझसे है।
0: अरे वाह गणपत बघेल जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लाइन बोली आपने। वैसे ये लाइन आपने किसको समर्पित करी है रेडियो के जरिए, बताइए?
1: आपको भी मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ मैडम जी, और श्रोताओं को भी मैं वो करना चाहता हूँ। और अभी तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है मैडम।
0: गर्मी तो सूरज के बहुत ज्यादा तेवर यहाँ पर भी है गणपत बघेल जी।
1: जी,
0: गर्मी तो हमारे पूरे भारत देश में इन दिनों में काफी पड़ती है। बस यही है कि हमें गर्मी से अपने आप को बचा के रखना है, अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना है, और दूषित भोजन को नहीं खाना है, क्योंकि आजकल पीलिया बहुत फैल रहा है। तो अपना ध्यान रखिए गणपत बघेल जी। आप खेती किसानी का काम करते हैं, खेतों में जाते हैं, धूप में काम करते हैं, तो हमारी यही कामना है कि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। कौन सा गीत सुना दें श्रोताओं को आपकी पसंद का, बताइए?
1: राजा का तुमने अगर प्यार से देखा नहीं, वैसा करके गीत है। अलका याग्निक की आवाज में गाने का बोले।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: हेलो, फोन इन चाहत।
5: हेलो, फोन इन चाहत।
4: जी हाँ, फोन इन चाहत से बोल रहे हैं, आप कौन बोल रहे हैं?
5: जी मैं ग्राम भिवरी गांव जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से आपका नियमित श्रोता सुरित रमेश साहू बोल रहा हूँ बहन जी।
4: अच्छा सुरित रमेश साहू जी, आपका फोन इन चाहत में बहुत बहुत स्वागत है
5: जी। धन्यवाद बहन जी।
4: सुरित रमेश साहू जी कैसे हैं आप, सुनाइए।
5: मैं बहुत बढ़िया हूँ दीदी, और आप लोग कैसे हैं? और हमारे आकाशवाणी जगदलपुर केंद्र के समस्त आर्य उद्घोषक भाई बहन कैसे हैं दीदी?
4: साहू जी सभी बहुत अच्छे हैं, सभी अपना अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो इसी गर्मी में बस हम अपने आप को सुरक्षित और हाइड्रेट रखने की कोशिश करते हैं, आप सुनाइए।
5: गर्मी के मौसम में तो मैं तो कहता हूँ घड़े का पानी पीना चाहिए, शुद्ध ठंडा पेयजल। और दूसरी बात ऐसा है कि बाहर का जो थम्सअप वगैरह है, माजा वगैरह है, या बाहर का अन्य चीजें ना पिए, हो सके तो गन्ना रस पी लें, और गन्ना रस के साथ साथ अपना नींबू का रस पिए, नींबू का ठंडा पानी शरबत बना करके पिए, दही मही मठा का शरबत बना करके पिए, आम का पना बना करके खाएं, और साथ ही साथ में दीदी बेल वगैरह का शरबत बना करके पिए दीदी, और खीरा ककड़ी वगैरह खाए, पपीता वगैरह खाए दीदी इस गर्मी के मौसम में।
4: बहुत अच्छी बात कही सुरेंद्र रमेश साहू जी, क्योंकि प्राकृतिक पेय पदार्थ ही हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, और जितने भी ये पदार्थ हैं जैसे थम्सअप है, ये जो सभी प्रकार की जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो हमारे शरीर के लिए तो नुकसानदेह है ही, जो आपने कहा। और बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी कि गर्मी में अपने शरीर में कैसे पानी की कमी न होने दें।
5: आप कौन बोल रहे हैं दीदी? आपकी आवाज जो है बहुत ही मधुर, मनमोहक, मीठी और बहुत ही प्यारी है दीदी, और कार्यक्रम की पेशकश से क्या कहें।
4: मैं आशा दुल्हानी बोल रही हूँ साहू जी।
5: जी आशा दीदी जी, आपके लिए एक छोटी सी दो लाइन की पंक्ति है दीदी, अगर इजाजत हो तो बोलो।
4: हाँ जी बोलिए, बिल्कुल बोलिए
5: जी। तो जिंदगी एक सफर है, जिंदगी एक सफर है, सफर सभी की चलती रहे। जिंदगी एक कारवा है, कारवा सभी की चलती रहे। जिंदगी एक झरोखा है, झरोखा जो है नदियों की तरह कलकल कलकल करके बहती रहे। आकाशवाणी जगदलपुर से फोन इन चाहत कार्यक्रम, बहन आशा दुल्हानी जी की आवाज स्वर लहरियों में हमेशा गूंजती रहे, और आकाशवाणी जगदलपुर में फोन इन चाहत का कार्यक्रम यूं ही नदियों की तरह हमेशा बहती रहे, हमेशा बहती रहे, हमेशा बहती रहे दीदी।
4: आपने कितनी अच्छी पंक्तियां सुनाई हैं, बहुत अच्छी बात। चलिए इसी बात पे हो जाए आपकी पसंद का प्यारा सा गीत।
5: अरे यार सुन यारी मेरी, मुझे जिंदगी

0: हेलो।
1: हेलो, फोन इन चाहत।
0: हाँ नमस्ते बहन जी।
1: नमस्ते, आप कौन बोल रहे हैं बताइए
0: जी। मैं ग्राम पनवाड़ी जिला महोबा उत्तर प्रदेश से देवीदीन अहिरवार बात कर रहा हूँ बहन जी।
1: अहिरवार जी,
0: हाँ बहन जी,
1: बताइए
0: और
1: क्या करते
0: आपको
1: हैं आप?
0: बहुत ही अच्छा जी। मैं सिलाई का काम करता हूँ,
1: अच्छा,
0: कपड़े बनाता हूँ, टेलर हूँ
1: जी, टेलरिंग का काम करते हैं।
0: हाँ बहन जी। आप बहुत ही अच्छा कार्यक्रम देते हैं बहन जी, और इतनी आपकी तारीफ करूँ तो मुझे शब्द कम पड़ जाएंगे बेहतर।
1: अरे बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए कि आप आकाशवाणी जगदलपुर के कार्यक्रम नियमित सुनते हैं?
0: हाँ जी, नहीं, मैं सुनता हूँ। मैं
1: जी, तो कौन कौन से कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं?
0: जैसे आपका हालो फरमाई से होने चाहत, मतलब जितने भी आपके कार्यक्रम हैं सारे कार्यक्रम सुनता हूँ।
1: तो आप अपने टेलरिंग के काम से समय निकाल कर हमारे कार्यक्रमों को सुन लेते हैं मतलब?
0: हाँ हाँ काम भी करता रहता हूँ और आपका जगदलपुर भी सुनता हूँ।
1: अच्छा, तो बुंदेलखंड का मौसम कैसा है वहाँ पर अभी? तो क्योंकि पूरे भारत में
0: अरे बहन
1: भयंकर
0: जी, इस
1: गर्मी
0: समय
1: पड़ रही
0: बहुत गर्मी पड़ रही है हमारे इधर।
1: जी हाँ, पूरे भारत वर्ष में बहुत गर्मी पड़ रही है और नौतपा तो आने ही वाले हैं।
0: हाँ बहुत गर्मी पड़ रही है इस समय, ये समझ लो कि बड़ी मुश्किल से दिन कट रहे हैं। और
1: अच्छा,
0: थोड़ा नीम का पेड़ लगा है हमारे दरवाजे के सामने,
1: तो नीम के पेड़ की छाया लेते हैं आप
0: उसी का
1: मतलब?
0: सहारा है समझ लो।
1: जी, बहुत अच्छी बात है कि आप पेड़ों की छाँव में रहते हैं, उन हवा लेते हैं, और ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है।
0: हाँ बहन जी,
1: तो बताइए आप।
0: और आपके यहाँ कैसी गर्मी है
1: जी,
0: जी?
1: हमारे यहाँ तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, पूरे भारत वर्ष में ही पड़ती है, तो फिर हमारे यहाँ भी काफी गर्मी है।
0: हाँ वो तो लगभग पूरे भारत देश में चल रही है गर्मी का सीजन बहुत ज्यादा।
1: अहिरवार जी,
0: तो
1: बताइए कौन सा गीत सुना दें आपको आज हम?
0: हमें महेंद्र कपूर की आवाज में सुनवा दो हमारा फिल्म का गाना, तुम अगर फिर साथ देने का वादा करो, मैं मस्त ही नजरें उठाता रहूं।
1: जी, आपने बहुत प्यारा गाना चुना है हमराज फिल्म का।
0: हाँ जी, पहली मुलाकात है तो हमने कहा चलो अच्छा गीत सुनाया।
1: चलिए, तो अहिरवार जी, हमें बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा और आपके पसंद का गीत हम जरूर आपको सुनवाते हैं।

0: 6666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: It's another six.
2: रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा।
3: ये क्या किया?
4: मैच तो गया।
5: पेमेंट कैसे करेंगे?
6: टोकनाइज कार्ड से।
4: टोकन?
6: हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स OTP CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा, अधिक सुरक्षा।
4: ऑलराउंडर
6: ओके मैन। RBI कहता है कि
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: नमस्कार।
9: नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं बताइए।
8: मैं ओम प्रकाश नेमा, विद्यालय का तेलीखेड़ा चलाता हूँ, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैडम।
9: बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम फोन इन चाहत में। हमें बहुत खुशी हुई आपने हमारे इस कार्यक्रम में फोन लगाया।
8: धन्यवाद।
9: कहिए कैसे हैं आप ओम प्रकाश जी?
8: बहुत बढ़िया है।
9: आप अच्छे हैं, क्या कर रहे हैं इन दिनों आजकल आप?
8: बस दुकान पर बैठे हैं, गर्मी का आनंद ले रहे हैं।
9: गर्मी का तो सभी आनंद ले रहे हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप इतनी तेज गर्मी से बचे रहें, स्वस्थ रहें। और क्या करते हैं आप ओम प्रकाश जी?
8: हमारे यहाँ कपड़े की दुकान है, ब्यूटी पार्लर है, सिलाई सेंटर का काम होता है।
9: अच्छा, इतने सारे काम हैं आपके यहाँ करने के लिए, बहुत बढ़िया
8: जी।
9: तो आप बताइए कि हमारे आकाशवाणी जगदलपुर के कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं और आप कौन कौन से प्रोग्राम पसंद करते हैं?
8: बहुत अच्छे लगते हैं।
9: कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं हमारे केंद्र?
8: फोन इन कार्यक्रम ज्यादा सुनते हैं।
9: फोन इन कार्यक्रम सुनते हैं आप जी। और आपका आज हमारे इस फोन इन कार्यक्रम में फोन भी लग गया, कितनी बढ़िया बात है। और सुनाइए ओम प्रकाश जी।
8: और सब बढ़िया है?
9: सब बढ़िया है
8: जी।
9: तो अब आप श्रोताओं को कौन सा गीत सुनाना चाहेंगे अपनी पसंद का बताइए।
8: हम श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे प्रेम कहानी, फिल्म का नाम है। गीत के बोल है, फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं। कुछ मित्रों का नाम ले सकते हैं?
9: जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, लीजिए।
8: हमारे लोकेंद्र वर्मा जी हैं, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, शारदा प्रसाद प्रजापति जी हैं, टेकचंद अग्रवाल जी हैं, विजय पाटिल जी हैं और रामपाल जी यादव जी हैं, तुलसीराम साहू जी हैं।
9: आप अपने सभी दोस्तों के साथ प्रेम कहानी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं, फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं, यही गीत सुना है आपने जी। तो बिल्कुल सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत श्रोताओं को। फोन इन चाहत कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: तो खुद घायल होते हैं फूल, आहिस्ता फेंको।
1: हेलो, फोन इन चाहत।
2: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार,
2: डी आर नारवानी हूँ, चकरबड़ा के जिला बिलासपुर।
1: नारवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम फोन इन चाहत में। बताइए कैसे हैं आप, कैसी
2: बहुत बढ़िया। गर्मी के मौसम में गर्मी इतनी बढ़ गई है कि
1: अब गर्मियों का मौसम है तो उसके साथ साथ छुट्टियों का भी सीजन चल रहा है, तो आपने अपनी छुट्टियाँ कैसे बिताई और किस तरीके से बिता रहे हैं हमें बताइए नारवानी जी।
2: बस पीते हैं, ठंडा ठंडा शरबत पीते हैं, गन्ने का रस पीते हैं, खरबूज तरबूज खा के गर्मी को सह रहे हैं।
1: और कहीं छुट्टियों में घूमने का आपने प्लान बनाया है
2: अपने? नहीं, अभी तक तो नहीं बनाया। अभी मैं एक महीने पहले गया था हरिद्वार अमृतसर, पिछले महीने वहाँ से वापस आया हूँ। बाकी गर्मी में खराब, अभी जाने का कहीं मूड नहीं है।
1: और इतना गर्मी पड़ रहा है कि अपने आप को मतलब गर्मी से बचा के रखना ही हमारी सेहत के लिए ठीक रहेगा। और आप हमारे आकाशवाणी जगदलपुर के कार्यक्रम पसंद करते हैं और कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं?
2: नमस्कार, जगदलपुर है, श्रोता सुमन है, युवाणी है, ये सब होनी चाहता है, आपका कोनी लोकल सब सुनता हूँ।
1: अच्छा, और कौन कौन से कार्यक्रम आप ज्यादा पसंद करते हैं?
2: सब अपनी जगह अच्छे हैं, सब में कोई ना कोई खूबी रहती है। ज्यादा तो क्या है, गाने वाने जो बजते हैं तो मनोरंजन होता है। आज के जमाने में मनोरंजन सबसे ज्यादा जरूरी है।
1: आदमी
2: दुखी परेशान होता है तो गीत अच्छे से बजते हैं तो क्या है, दिल को सुकून मिल जाता है।
1: जी बिल्कुल, और हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मनोरंजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
2: बिल्कुल, मनोरंजन ही सबसे बेहतरीन है।
1: तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप नारवानी जी, बताइए आज?
2: गाना सुन मुझे आया रुदारी फिल्म का, दिल हूम हूम करे घबराए। भी एक बात बजे कहूंगा कि ना किसी को नाराज करके जियो, ना किसी से नाराज होकर जियो। जिंदगी बस कुछ हसीन लम्हों की है, सबको खुश रखो, सबसे खुश होकर जियो।
1: अरे वाह नारवानी जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने, और इसी बात पे चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत हमारे श्रोताओं को फोन इन चाहत कार्यक्रम में। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नारवानी जी।
2: जी धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो जी,
0: फोन इन चाहत।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं अशोक कुमार साहू बोल रहा हूँ, करमा चौक लोहारी डीहा, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ से।
0: अशोक कुमार साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम फोन इन चाहत में।
1: जी
0: बताइए
1: बहुत बहुत
0: कैसे
1: धन्यवाद।
0: जी, बताइए कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं इन दिनों आजकल?
1: अभी तो गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है मैम अपने इस एरिया में, और फिर भी हमारी इस एरिया में तो बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं और पहाड़ियां हैं, जंगल है, फिर भी इतना गर्मी बढ़ा हुआ है।
0: इस बार गर्मी हमारे पूरे भारतवर्ष में बहुत ज्यादा है और गर्मी ने इस साल कई रिकॉर्ड तोड़े हैं, ये तो आप
1: जी
0: रोज
1: अभी
0: पेपर
1: की
0: में।
1: स्थिति में जो गर्मी है ना, वो
0: जी
1: गर्मी पड़ता था ना तो हमें मालूम होता था कि अब मानसून आने वाला है, और
0: हाँ
1: अब बिल्कुल पानी गिरने के कगार पर है। लेकिन इस वर्ष तो अभी मानसून का आता पता नहीं है, और ना तो ना टप्पा भी नहीं लगा है, फिर भी अभी इतना ज्यादा गर्मी है कि धूप में घर से निकलने का इच्छा नहीं होता।
0: तो सोचिए, जब नौतपा शुरू होगा तो गर्मी किस हद तक जा सकती है, आप
1: जी
0: सोचिए।
1: बहुत ज्यादा मैम, इसलिए तो चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ा हुआ है, और इन दिनों में हम काम भी करते हैं ना, तो हम सावधानी पूर्वक इसलिए काम करते हैं। मैं तो राजमिस्त्री का काम करता हूँ
0: और क्या करते हैं
1: जी, मैं नियमित खेती किसानी का काम करता हूँ, और मेरा
0: जी?
1: पत्नी जो है घर में लेडीज टेलर का काम करता है, तो
0: अच्छा,
1: उसका भी हाथ बटाता हूँ समय समय
0: तो
1: पे।
0: आपकी पत्नी भी हमारे इस फोन इन चाहत में भाग लेती हैं या हमारे
1: जी बिल्कुल
0: आकाशवाणी जगदलपुर
1: सुनते
0: से
1: हैं, हाँ
0: सुनती
1: घर
0: हैं?
1: में चलते रहता है कार्यक्रम।
0: तो मतलब आप अपने परिवार के साथ हमारे इन कार्यक्रमों को सुनते हैं?
1: जी, हम बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं आकाशवाणी में, और नियमित हम आकाशवाणी के श्रोता हैं, हम कोई कार्यक्रम नहीं है जो नहीं सुनते हैं।
0: हमें बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आप हम आकाशवाणी जगदलपुर के कार्यक्रमों को इतने लगन से सुनते हैं और आप इतने पसंद करते हैं हमारे इन कार्यक्रमों को। अशोक कुमार जी, तो कौन सा गीत सुनाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को अपनी पसंद का?
1: आज एक गीत था, फिल्म आंखे का था, अंगना पे बाबा, दुआरे पे माँ।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: हेलो, फोन इन चाहत।
8: हेलो, नमस्कार मैडम।
7: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
8: अमरजीत बात कर रहा हूँ, रामपुर से।
7: अमरजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस कार्यक्रम फोन इन चाहत में। बताइए कैसे हैं आप?
8: मैं अच्छा हूँ मैम, आप बताइए आप लोग कैसे हैं? आकाशवाणी परिवार में सभी लोग कैसे हैं?
7: सभी लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। क्या करते हैं आप?
8: मैडम मेरा हैंड वर्क का काम है, जरी का, जो सूटों पर कढ़ाई होती है।
7: बहुत बारीकी से ये काम किया जाता है?
8: जी हाँ, ये सुई द्वारा सिलते हैं मैडम, ये हम मोती होता है।
7: अच्छा, तो आप ये काम खुद अकेले करते हैं या आपके परिवार के सदस्य आपके साथ मिलकर काम करते हैं?
8: 6-7 लोग हैं हम, कारीगर लोग, और हम ये कारखाने में काम करते रहते हैं।
7: क्योंकि ये काम बहुत ज्यादा फिनिशिंग और बारीकी से किया जाता है और इसमें सुई का काम रहता है। और सुनाइए अमरजीत जी, इसके अलावा और आप क्या काम करते हैं?
8: इसके अलावा तो बस आपके प्रोग्राम सुनते रहते हैं।
7: अच्छा,
8: अच्छे लगते हैं।
7: मतलब आप काम करते करते हमारा आकाशवाणी जगदलपुर के कार्यक्रम सुनते हैं, रेडियो ऑन रखते हैं?
8: जी, मोबाइल ऐप पर सुनता हूँ मैं।
7: हमें जानकर ये बहुत खुशी होती है कि हम एक मोबाइल ऐप के जरिए अपने श्रोताओं के बहुत नजदीक हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने श्रोताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे?
8: हम अगर 2 पहिया वाहन पे बाइक पे जाते हैं तो हमें हेलमेट का प्रयोग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर सलामत तो घर सलामत।
7: जी, बहुत सही बात कही है आपने। तो चलिए अब आप बता दीजिए कि कौन सा गीत सुना दें हम आपको, आपकी पसंद का।
8: फिल्म है हीर राजा और इसमें गीत के बोले, ये दुनिया ये महफिल मेरी काम की नहीं।

0: हेलो।
1: हेलो, फोन इन चाहत।
0: हाँ जी, फोन इन चाहत। मैं मनोज कुमार साहू बोल रहा हूँ, मेघापारा लोरमी से।
1: मनोज कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम फोन इन चाहत में। कैसे हैं आप मनोज कुमार जी? बताएं।
0: जी बहुत अच्छे हैं, हम लोग कुशल मंगल हैं। आप सुनाइए, आप लोग कैसे हैं?
1: जी हम लोग भी बहुत अच्छे हैं।
0: हमारे इधर तो धूप और उमस बहुत पड़ रही है।
1: अब वो तो पूरे भारतवर्ष में पड़ रही है, और आप तो जानते हैं कि अभी दो दिन बाद नौतपा शुरू होने वाले हैं। गर्मी का जो प्रकोप है वो तो भयंकर ही होने वाला है कुछ दिनों में।
0: लेकिन एक चीज है, धूप अच्छी होती है तो फसल भी अच्छी होती है।
1: जी हाँ, ये भी सही बात है। कहते हैं सोने को जितना तपाया जाए ना, वो उतना ही चमक देता है। क्या करते हैं आप?
0: जी मेरी दुकान है किराने की, वहीं पे रहता हूँ, खेती बाड़ी भी करता हूँ।
1: अच्छा, तो आप दोनों जगह अपना सामंजस्य बिठा के रखते हैं, अपनी दुकान में भी और अपनी खेती किसानी में भी?
0: हाँ जी हाँ जी। एक्चुअली क्या है, छुट्टी रहती है तो मैं जाता हूँ खेत, बच्चे दुकान देखते हैं तो ऐसे घर के लोग तो पूरा संभाल लेते हैं।
1: और इन दोनों के बीच में आपको हमारे कार्यक्रम सुनने का समय मिल जाता है?
0: पूरा भरपूर समय खेत में तो ज्यादा समय मिलता, पॉकेट में रहता है मोबाइल और चलता रहता है। अच्छा। और काम भी होता रहता है, पता ही नहीं चलता काम।
1: मोबाइल ने हमारे और आपके बीच की जो दूरी है वो बहुत कम कर दी है। तो बताइए और क्या कहना चाहते हैं आप हमारे श्रोताओं को?
0: थोड़ा हीट वेव से बचने के लिए कुछ सुबह शाम अपना काम करें, दोपहर में ना करें, तरल पेय ले।
1: और आप क्या कर रहे हैं इन गर्मी की छुट्टियों में?
0: दुकान है जी, तो दुकान में ही रहते हैं।
1: तो आप कितने सालों से रेडियो के प्रति समर्पित हैं, बताइए?
0: अब जिस मैंने हाथ संभाल दी से सुना, मैं दादा परदादा और पिताजी सब सुनते आ रहे हैं।
1: मतलब आपने बचपन से ही अपने घर में रेडियो का माहौल देखा है?
0: हाँ जी, मेरे दादा भी जी भी सुना करते थे, पिताजी भी सुनते थे, सुनते अभी भी हो। और मैं अब तो मैं सुनता हूँ, मेरे बच्चे भी सुनने लगे, चार पांच जनरेशन सुनते आ रहे हैं।
1: तो वही आपके बच्चे भी अभी रेडियो सुनते होंगे जैसे आप सुन रहे हैं?
0: हाँ जी सुनते हैं, खासकर नमस्कार जगदलपुर का तो प्रेमी है बच्चे लोग मेरे।
1: चलिए बहुत अच्छा लगा हमें ये जान के कि आपके घर के बच्चे भी हमारे जगदलपुर के कार्यक्रमों को सुनते हैं। मनोज कुमार जी, आपकी पसंद का कौन सा गीत सुना दे, बताइए आपको?
0: फूलों सा चेहरा तेरा ये सुना दीजिएगा, फिल्म अनाड़ी का है।

0: श्रोताओं, ये था आज का आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम फोन इन चाहत। सुरों और बातों का ये खूबसूरत सिलसिला आज यहीं थमता है। आपको याद दिला दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हर शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 3:30 बजे के बीच होती है। अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं, तो अगले शुक्रवार ठीक 3 बजे से 3:30 बजे के बीच हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0778222160 और हमारा दूसरा नंबर है 0778222666। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश हमारे उन प्यारे श्रोताओं से जिनकी कॉल आज हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुई। आपसे अनुरोध है कि कृपया अगले 4 हफ्तों तक इस कार्यक्रम में फोन न करें, ताकि हमारे जो नए श्रोता भाई बहन हैं, उन्हें भी अपनी चाहत का गीत सुनने का पूरा अवसर मिल सके। आज के इस अंक के साथ अब आशा दुल्हानी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फोन इन चाहत। प्रस्तुति थी आशा दुल्हानी की, संयोजक चंद्र ऋषि ठाकुर का था। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
2: सुनो ना।
3: हाँ।
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। हमारे कार्यक्रम आप न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम गुरुदुम में आइए सुनते हैं लोकनाथ वैष्णव और साथी से हल्बी लोकगीत।

0: कार्यक्रम गुड़दुम में आप सुन रहे थे लोकनाथ वैष्णव और साथी से हल्बी लोकगीत। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। डीजीसीए ने नई गाइडलाइन जारी की, अब एयरपोर्ट पर रेल बनाने पर प्रतिबंध। प्रदेश के सभी डाकघरों में कल और परसों अल्प बचत खाता खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अनेक जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान लू चलने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने नियमों में सख्ती करते हुए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार अब हवाई यात्री एयरपोर्ट के सुरक्षा होल्ड एरिया पर रेल बनाना पूरी तरह से बैन रहेगा। साथ ही हवाई जहाज के खड़े होने वाली जगह और बस से यात्रियों को विमान ले जाने तक वाले स्थान पर रुक रुक कर रेल बनाने, फोटो या वीडियो बनाना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल नई दिल्ली प्रवास पर रवाना हो गए हैं। अपने दिल्ली प्रवास के दौरान वे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के विकास और समन्वय से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी 7 जून को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व के 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस उपलक्ष्य में देशभर के साथ छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ शासन को विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 2 महीने में पूरे करने के लिए निर्देश दिए हैं। एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि राज्य में 49,000 से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए करीब 4,000 विशेष शिक्षकों की जरूरत है। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि 848 स्वीकृत पदों में से 62 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 155 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और 85 विशेष शिक्षकों को स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होने का अवसर दिया जाए।

0: का आज ऐलान होगा। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, युवा कांग्रेस के प्रभारी अमित पठानिया सहित युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद सहित प्रदेश के 18 जिलों में एक दो स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान गर्म हवा चलने और अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कल प्रदेश में सबसे अधिक 46 डिग्री सेल्सियस तापमान राजनांदगांव में दर्ज किया गया। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और आम लोगों को घबराकर अतिरिक्त खरीदी करने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन कॉपी प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। रायपुर पुलिस ने पंजाब से ड्रग की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 56 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है। जांजगीर के करही गांव में करीब एक महीने पहले हुए गोलीकांड के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और बलौदाबाजार भाटापारा जिले में जिला शिक्षा अधिकारी ने 2 सहायक शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। दोनों पर कर्तव्य पालन में लापरवाही बरतने का आरोप है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। डीजीसीए ने नई गाइडलाइन जारी की। अब एयरपोर्ट पर रेल बनाने पर प्रतिबंध। प्रदेश के सभी डाकघरों में कल और परसों अल्प बचत खाता खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। और मौसम विभाग ने प्रदेश के अनेक जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान लू चलने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और न्यूज ऑन EIR ऐप पर आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 ले 8 तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 ले 4 तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लो सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी, आपन मंचो सवाल, आपन मंचो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र। कार्यक्रम रुसरुसा में सुनिए शांति और साथी से लोक गाथा चंद्रकांत राजा।

कार्यक्रम रुसरुसा में आप सुन रहे थे शांति और साथी से लोक गाथा चंद्रकांत राजा। श्रोताओं, लोक गाथा का अगला भाग आने वाले शुक्रवार को प्रसारित किया जाएगा। हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

समय गुजर जाता है, लोग बदल जाते हैं, हालात भी बदल जाते हैं, लेकिन कई बार हमारा मन अतीत की कुछ पुरानी घटनाओं से बाहर नहीं निकल पाता। इंसान मुस्कुराना तो सीख जाता है, लेकिन भीतर का दर्द कहीं ना कहीं जिंदा रह जाता है और मन पर रखा हुआ यही भार भावनात्मक बोझ बन जाता है। बहनों, इस विषय पर आपसे ढेर सारी बातें करेंगे कुछ नए पुराने गीतों के साथ, लेकिन उससे पहले आप सभी बहनों का कार्यक्रम घर आंगन में बहुत बहुत स्वागत और आपकी रेडियो साथी विजयलक्ष्मी का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, हम सभी अपने जीवन में केवल काम और जिम्मेदारियां ही नहीं उठा रहे होते हैं, बल्कि कई बार हमारी अतीत की कुछ घटनाएं, दुख, यादें, अनुभव, अधूरे एहसास भी हम अपने मन के अंदर लेकर चलते रहते हैं, जिन्हें कोई देख नहीं पाता। और ये बातें बीते हुए समय की कोई भी दर्द भरी घटना हो सकती है, किसी अपने की कही हुई कोई कड़वी बात हो सकती है, या फिर किसी के द्वारा किया गया अपमान, या फिर जाने अनजाने हम ही जो है किसी को कुछ कह जाते हैं और उसका पछतावा हमें जीवन भर रह जाता है, या फिर किसी प्रियजन का बिछड़ जाना या हमेशा के लिए उसे खो देना। कोई भी ऐसी बात जो मन पर ऐसी छाप छोड़ जाते हैं जो समय बीतने के बाद भी पूरी तरह मिट नहीं पाती। बाहर से जीवन सामान्य तो दिखाई देता है और लोग भी आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उन यादों का एक जो दर्द है वो बोझ बना रहता है। धीरे धीरे यही अनकहा दर्द, दबे हुए आंसू और अधूरी भावनाएं मन पर एक बोझ बनकर रह जाती है। लेकिन बहनों, सच तो यही है कि हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी भावनात्मक संघर्षों से गुजरता है। कोई अपने अतीत से लड़ रहा होता है, कोई अपने वर्तमान से, तो कोई अपने भविष्य की चिंता में खोया रहता है। तो बहनों, अब प्रश्न उठता है कि हमें इस भावनात्मक बोझ को क्या जीवन भर साथ लेकर चलना चाहिए या फिर अपने मन से इसे बाहर निकालना। और हम में से ज्यादातर लोग इस बोझ से बाहर निकलना ही बेहतर समझते हैं। माना कि ये एक दिन में खत्म होने वाली चीज नहीं है, लेकिन सही सोच और छोटे छोटे कदमों से हम भावनात्मक बोझ से बाहर निकल सकते हैं। बहनों, जब भी मन में कोई बात आपको एक कसक बनकर रह गई है, आप उसे बाहर कहना चाहते हैं किसी से, तो उसे मन में दबा कर ना रखें। अपनी दर्द, अपनी चिंता, दुख किसी भरोसेमंद व्यक्ति से जरूर साझा करें, चाहे फिर वो आपका पार्टनर हो या फिर आपकी माँ, बहन, भाभी, ननंद या फिर आपका दोस्त, उससे अपनी बातें जरूर जो है शेयर करें। और बहनों, अतीत में ही जीते ना रहें, मतलब अतीत को आप स्वीकार करना सीखें। जो बीत चुका है उसे आप और हम तो बदल नहीं सकते, इसलिए बार बार पुरानी घटनाओं को सोचते रहने से दर्द और भी बढ़ता जाएगा। बेहतर होगा हम अतीत से सीख लें, न कि उसमें जीते रहें। खुद को दोष देना बंद करें। जी हाँ बहनों, गलतियां इंसान से ही होती है, और हर बात या हर काम के लिए हम खुद को दोष देते रहेंगे तो हमारा मन और भी भारी होता जाएगा। इसलिए गलतियों को भी एक सबक की तरह देखें और कोशिश करें कि दोबारा वो गलतियां ना दोहराएं। बहनों, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो किसी की जो है बड़ी सी बड़ी गलतियों को भी बहुत आसानी से माफ कर देते हैं, और कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों की छोटी गलती भी माफ नहीं कर पाते, और कई बार यही मन का सबसे बड़ा बोझ गुस्सा और शिकायत होती है। ऐसे में दूसरों को और खुद को माफ करना सीखे। माफ करना मन को शांति देता है। अगर आपने अब तक ऐसा नहीं किया है तो एक बार आजमाकर जरूर देखिएगा, वाकई जो है मन को बहुत ज्यादा शांति और सुकून मिलती है। सकारात्मक लोगों के साथ रहे जो आपको समझे, हिम्मत दे, और नकारात्मक माहौल आपके मन के बोझ को और भी जो है बढ़ाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप जो ज्यादा नकारात्मक बातें करते हैं उनसे दूर रहें। छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें, क्योंकि हर खुशी बड़ी नहीं होती। कभी सुबह की शांति, किसी अपने की मुस्कान या छोटा सा अच्छा पल भी मन को सुकून दे जाता है। अपने लिए समय निकालें, योग, प्राणायाम और मेडिटेशन को जो है अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। प्रकृति के बीच समय बिताएं, अच्छी संगीत सुने, अच्छी किताबें पढ़ें। ये चीजें भी मन को धीरे धीरे शांत करती हैं। और सबसे जरूरी बात, भावनात्मक बोझ से बाहर निकलना कोई कमजोरी नहीं बल्कि साहस का काम है। मन के घाव को समय, समझ और सहारे की जरूरत होती है। और बहनों, चर्चा के अंत में यही कहना चाहूंगी, दर्द को छुपाने से वो और भी गहरा होता जाता है, लेकिन जब हम उसे स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं तो वही दर्द ताकत बन जाती है। इसलिए हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कुछ जो है गुनगुनाते रहें इस गीत की तरह। तो आइए सुनते हैं फिल्म तेरे नाम का ये गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में।

0: होता। डबल रोटी, आरी और छेना, पनीर असित के इंजे जीएसटी लगे मयो। इदेन संगेन 33 जरूरी दवाई नद मोलावेंट कम की सित तोड़। अदेन के इलाज तले खर्चावेंट कम लगे माता। जीवन बीमा तगवेंट इंजे जीएसटी छूट दोरकिता। अदेन के पॉलिसी पोईतनद इंजे सस्ता आंता। सुडला कार गाड़ी और 350 सीसी ता पोटरो गाड़ी ता पोर्रो 28% जीएसटी मत्ता अद कम मास इंजे 18% अत्ता। इदेन मतलब इद की इंजे गाड़ी पोटरो गाड़ी असित के सस्ता दोरकिता।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: बहनों, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता केवल उनकी आय प्राप्त करने की क्षमता नहीं बल्कि एक महिला के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने के अधिकार का भी प्रतीक है। जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं तब एक परिवार, समाज और राष्ट्र तीनों की प्रगति को एक नई दिशा मिलती है। तो आइए सुनते हैं इसी विषय पर एक वार्ता। वार्ता का विषय है महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और वार्ताकार है प्रतिमा पॉल।
4: महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता। घर और समाज के विकास में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। क्यों जरूरी है महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता? महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता बहुत जरूरी है जिससे महिला समाज में अपना सिर उठा सकती है। उन्हें अपनी जरूरतों के लिए किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा या किसी से आज्ञा नहीं लेनी पड़ेगी। आज के समय में आर्थिक आज़ादी बहुत ही जरूरी है। जरूरतें और ख्वाहिशें बढ़ गई है। पहले के मुकाबले में आज महिलाएं अपने पैरों में खड़ा होना और अपने फैसले स्वयं लेना चाहती हैं। वह किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, खुद को बेसहारा बनना नहीं चाहती, बल्कि वह स्वयं किसी का सहारा बनना चाहती हैं। आर्थिक रूप से महिलाएं स्वतंत्र होने पर अपने फैसले स्वयं ले सकती है। किसी से भी, चाहे वह माँ बाप हो, भाई बहन हो या शादी के बाद पति या अन्य रिश्तेदार हो, महिला किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहती है। पैसे को कहाँ, कैसे और कितने खर्च करें यह उनकी इच्छा है। महिला अपने परिवार को बहुत ही अच्छे ढंग से लेकर चलती है और पति के द्वारा दिए गए पैसे का उपभोग भी वह बहुत अच्छे तरीके से करती है। महिला कमाने लगेगी तो भेदभाव कम हो जाएगा, समाज में समानता आने लगेगी और महिला खुद के खड़ी हो सकती है। वह मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी और पैसे आने से महिला सशक्त बन सकती है। उनके अंदर आत्मविश्वास की भावना भी पैदा होगी और सत्ता में भी उनका नाम आने लगेगा। वह अपने सपनों को एक उड़ान भी दे सकती है, जिसके लिए कभी कभी आर्थिक कमजोरी जो बाधा भी बन जाती है। आर्थिक आज़ादी होने से महिला काफ़ी जरूरत का ध्यान रख सकती है। महिलाओं की बहुत सी ख्वाहिशें और ज़रूरतें होती हैं, परंतु वह इसलिए उसे पूरा नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं। हर चीज़ के लिए उन्हें कई बार अपने भाई बहनों से, माता पिता से या पति से मांगने पड़ते हैं। उन्हें कहीं घूमने या महंगी चीज़ें चाहिए होती है तो भी वह मजबूर होती है और ले नहीं पाती है क्योंकि परिवार वाले भी कभी कभी रोक लगा देते हैं। क्या आर्थिक स्वतंत्रता एक महिला की जिंदगी बदल सकती है? जी हाँ बहनों, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और नई अवसरों के विषय में यहाँ हम समाज से जुड़े उन मुद्दों पर बात करते हैं जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। यहाँ ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं की आवाज को सामने लाना और समाज में सकारात्मक बदलाव करना महिला आर्थिक स्वतंत्रता, यह एक सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं है, यह आत्मसम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की बात है। जब वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है तो वह अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है, जैसे बच्चों की शिक्षा, करियर का चुनाव, बच्चों का भविष्य, स्वास्थ्य। आर्थिक स्वतंत्रता महिला को आत्मविश्वास बना देती है, वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। अगर किसी महिला को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो भी आर्थिक स्वतंत्रता ही उसे उन परिस्थितियों से बाहर निकलने की ताकत भी देती है। परिवार, बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव। जब महिला कमाती है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। अक्सर देखा गया है कि महिलाएं अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य और पोषण तथा शिक्षा पर खर्च करती है। इससे परिवार की जीवन गुणवत्ता तथा जीवन बेहतर होता है और बच्चों का भविष्य अधिक सुरक्षित बनता है, खासकर बेटियों की शिक्षा और अवसरों के बेहतर रास्ते मिलते हैं। सबसे बड़ी तथा महत्वपूर्ण बात यह कि अपने पति के साथ मिलकर परिवार की उन्नति में अपना बहुमूल्य योगदान देती है। समाज में समानता की दिशा। जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होती है तो समाज में भी उनकी स्थिति मजबूत होती है। वो सिर्फ घर की जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं रहती बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनती है। आर्थिक स्वतंत्रता पुरानी सामाजिक धारणाओं को चुनौती देती है और यह साबित करती है कि महिला हर क्षेत्र में अपना योगदान दे सकती है। नए अवसर, नेटवर्क मार्केटिंग एवं होम वेस्ट बिजनेस। आज के समय में महिलाओं के लिए घर से कार्य करने के कई नए अवसर भी उपलब्ध हैं। नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग जैसे मॉडल कई महिला को अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने का अवसर देती हैं। मोडी ओडी फ्लेम जैसी कंपनियां महिला को घर से काम करके अपना नेटवर्क बना के और आय अर्जित करने का अवसर प्रदान करती है। इस तरह के व्यवसाय में महिला अपने समय के अनुसार काम कर सकती है, नए नए लोगों से जुड़ सकती है और धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बन सकती है। कई महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता में यह पहला कदम बन सकता है। चुनौतियां भी बहुत हैं। हालांकि आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में महिला कई चुनौतियों का सामना करती है और करना भी पड़ सकता है, जैसे पारंपरिक सामाजिक सोच, शिक्षा की कमी, रोजगार के सीमित अवसर, घरेलू जिम्मेदारियों का असमान बोझ और कई जगहों पर सुरक्षा की समस्याएं। इसलिए यह जरूरी है कि समाज, सरकार और परिवार, यह तीनों मिलकर महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर दें। अंत में यही कहना चाहूंगी कि महिला की आर्थिक स्वतंत्रता का मुद्दा केवल महिला का नहीं है, यह पूरे समाज के विकास का सवाल है। जब महिला मजबूत होगी तो परिवार मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा तो समाज, और समाज मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा।
3: अभी आप सुन रहे थे वार्ता। वार्ता का विषय था महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता। वार्ताकार थी प्रतिमा पौल। बहनों, कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फिल्म फना का ये गीत शान और कैलाश खेर की आवाज में।

बहनों, चलते चलते कुछ गर्मियों के लिए टिप्स। तो बहनों, जब भी आप घर से बाहर निकले तो आप सिर पे जो है गमछा, टोपी या छाते से आप अपने आप को कवर करें। दिन भर में पर्याप्त पानी पीते रहें और हल्के रंग के और सूती कपड़े पहने। ज़्यादा देर तक खाली पेट ना रहें और शरीर में अगर चक्कर, तेज बुखार, कमजोरी, उल्टी जैसा लगे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। और घर में बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उन्हें लू जल्दी लग सकती है। और जब भी घर से बाहर निकले अपने साथ पानी की एक बोतल जरूर जो है साथ रखें, और ये एक अच्छी आदत भी है। और बहनों, जब भी काम हो आपको तभी आप घर से बाहर निकले, वरना घर पर ही रहें। और बहनों, चलते चलते जो है कार्यक्रम का अंतिम गीत लेते हैं फिल्म चलते चलते से, अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ में।

उम्मीद करती हूँ आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया हो। तो इन्हीं बातों और वादों के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए विजयलक्ष्मी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी बहनें सुन रही थीं अपना कार्यक्रम घर आंगन। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दिन के एक बजने वाले हैं। अब समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। हैदराबाद हाउस में बैठक के बाद डॉ जयशंकर ने बताया कि श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों पक्ष नियमित रूप से एक दूसरे के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खाड़ी क्षेत्र के संबंध में उनकी चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वाड की बैठक शीघ्र होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 11वें दौर की मतगणना के बाद भाजपा के उम्मीदवार दिवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 44,891 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 दौर में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। श्री सिंह 32 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियांग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियांग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शांसी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है।

0: प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत में चीन के राजदूत शू फिहोंग ने शांगसी प्रांत में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना, सहयोग और सहानुभूति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में अब तक 82 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज रेलवे लाइन पर हुए एक धमाके में 30 लोग मारे गए और कई घायल हुए। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हिमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले साल होना है। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। 1:05 हुए हैं। अब सुनिए कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चौघोट।
2: काश्तकार भाई बहन मन, खेती चो सहायक रोजगार ने दूध बल्ले गोरस उत्पादन चो पेशा बल्ले निको आए। ये चो काजे किसान लगे जितलो गाय भैंस रले हुतलो फायदा होय से। मांतर गोरस उत्पादन जो पेशा निको चलते रहे दे और गाय भैंस के थनेला रोग बल्ले गोरस झेटी ने होतो बीती रोग हौन दिले किसान के खूबे नुकसान हो सके। आगर करुन ये रोग संकर बीती गाय भैंस जोन आगर गोरस देवात हुन मन के जौटू आए। थनेला रोग बैक्टीरिया विषाणु और वायरस नाव चो जीवाणु ले जन्म आए और ये रोग गोटोक पशु ले दूसर पशु ने उफड़ते जाऊ आए। ये रोग कसन ने उफड़े से आले के सबले पहल जानू। पहला जेबे थनेला रोग जौटलोर पशु जो गोरस के दुहुन निको पशु के धोले ये रोग निको पशु के जौटुक सके। दूसर दूध दूहतोर पहले गाय चो ढेटी के नगद साफ सफाई नी कर ले बले ये रोग जौटुक लाए सके। तीसर जोन ठान ले थनेला रोग धरलो पशु बसुन उठे से और हुनी ठान ने निको पशु बसले हुन ठान चो जीवाणु मन निको पशु ने हो गेले ए रोग जौटुक लाए सकोत। काश्तकार भाई बहन मन, ये तो रली गाय भैंस ने थनेला रोग जौट तोर कारण अदा ये चो लक्षण बल्ले रोग के चिता तोर चिना के बले जानू। ए रोग चो चिना आए गाय भैंस चो गोरस ढेटी कड़ा होय से और फूलू रहे से संगे संगे पशु के जर्चे गाय से। काश्तकार भाई बहन मन, हरक चीना के मैं फेर सांगे से ये रोग चो चीना आए गाय भैंस चो गोरस ढेटी कड़ा होय से और फूलू रहे से संगे संगे पशु के जर बले चेगाय से। ढेटी मन ने खूबे दुखा रहे से हुन लगे खूब गरम बले रहे से। गोरस धूले गोरस लहू असन जन्म पातर ऐसे। किसान भाई बहन मन, ये तो रली थनेला रोग चो लक्षण बल्ले के कसन चितामा हों चो चीना अदाय हामी ये चो रोकथाम करतो उट के जानू जोन माई मुराए। काश्तकार भाई बहन मन, गाय भैंस गोरस उत्पादन करतो लोग काजे खूबे मोलात ऐ काजे यमन चो रोकथाम काजे ये नगत उट मन के अपनातो राय। सबले पहल गोरस दूह तो भीता के आप लो हाथ चो नख कार्टून रहतो राय और हाथ के साफ सुथरा धोतो राय। दूहतोर पहिल गाय भैंस चो ढेटी के बले साफ पानी ने छुकछुका धोतो राय। ये चो पासे गोरस के दूहतो राय। दूसर ध्यान दे तोर गोट होय से गोरस दूहतो बिता के आप लो हाथ के 0.1% आइडोफोर चो घोल ने 30 सेकंड तक डुबाउन छुकछुका धोतो राय। हरक मय के फेर सांगे से दूसर उट आए गोरस दूह तो बीता के आप लो हाथ के 0.1% आइडो फोरचो घोल ने 30 सेकंड तक डुबाउन छुक छुका धोतो राय। और तीसरा है थनेला रोग जोंटलोर पशु के भीने संघातो राय। और दूसर निको पशु मन के धूलो पाचे रोग बीती पशु के धोतो राय। और आगे नुआ नुआ गोरस देतो बीती गाय भैंस चो गोरस के धोतो राय। ये चो पाचे जुगे उम्र बीती पशु मन के धोतो राय। जसन की गाय भैंस के गोरस धोतो पहिल एक दुई हार चो गोरस धार भुए घसरा हुआ मानते रसन नहीं करतो राय। एक दुई हार चो गोरस धार के भुए घसरा ले थनेला रोग होलो पशु चो जीवाणु मन भुए घसरून निको रलो पशु ने जोटून हुन मन ने बले ए रोग के उफड़ाऊ सकोत। कास्तकार भाई बहन मन थनेला रोग ले गाय भैंस के बचातो गोटोक और उपाय आसे और एक खंडिक ध्यान देऊन सुना। ये उपाय ने गोरस दूध और पाछे गाय भैंस चो ढेटी मन ने रलो जीवाणु के नाश करतो काजे 4% सोडियम डाइपोक्लोराइड 0.1% पोटेशियम परमैंगनेट 0.1% हाइड्रोफोर चो घोल तैयार करून गाय भैंस चो थन मन के ये घोल ने डंडी डुबाओ रतो राय। दादी दी मन हरक मय के फेर सांगे से ये उपाय ने गोरस दूध और पाछे गाय भैंस चो ढेटी मन ने रलो जीवाणु के नाश करतो काजे 4% सोडियम डाइपोक्लोराइट 0.1% पोटेशियम परमैंगनेट और 0.1% आइडोफोर चो घोल तैयार करून गाय भैंस चो थन मन के ये घोल ने डंडी डुबाउन रहतो राय। किसान भाई बहन मन एवे सांगलोर उट के धरून गाय भैंस पोस ले गोरस ढेटी ने धरतो रोग ले आप लोग गाय भैंस के बचाव सका से तेबे ए मन निको गोरस उत्पादन करून किसान भाई बहन मन चो आमदनी के बढ़ा दे।
1: अभी आपने सुना बेड़ा खाड़ा चौघोट का पुनः प्रसारण। हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 1:10 हुए हैं। प्रस्तुत है पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। मैं हूं आपकी रेडियो साथी प्रीति गुप्ता, स्वीकारें प्यार भरा नमस्कार। तो श्रोताओं चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं आपको फिल्म मासूम का गीत, अभिजीत और साधना सरगम की आवाज में। गीत और संगीत है आनंद राज आनंद का। फरमाइशी खत है आपकी। घंटाघर चौक खंडवा से हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया। धांडी नांदुरा महाराष्ट्र से हैं संदीप बाठे, श्रीकृष्ण बाठे, अमूल्य बाठे। रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद नूरजहां, वलीउल्लाह नूरजहां, रेशमा तिवारी, सोनम और आदिया। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वलीउल्लाह फकीर, डब्लूल्लाह फकीर, परवीन आसमा फकीर। सनावत मध्य प्रदेश से हैं हुकुम चंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक, सचिन कटारिया, श्रीमती प्रभा कटारिया, कृष्णा, विराज, अर्णव और काव्यांशी कटारिया। यहीं से हैं दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार। शेरकोट बिजनौर से हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कौसर। छोटी बलिया करजत से हैं नुरैशा अहमद, आमना असरीन, इमरान इकबाल। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। कुर्मी पारा बेमेतरा से हैं सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता सारथी, कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी। औरंगाबाद से राजेश साबेल पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश। यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़से, विनोद खड़से। गोरबा बिलाईगढ़ से हैं देवलाल कर्ष, कामनी कर्ष, यश कर्ष। गुमला झारखंड से हैं एसएम जावेद, शगुप्ता अंजुम। बागबहरा भदरसी से हैं पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन और खुशबू सेन।

कुरुक्षेत्र। सुनिए इस फिल्म का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वर में। देव कोहली के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने। चाहत है आपकी। मिट्ठू मुडा दुर्गा चौक रायगढ़ से हैं। गेंदलाल श्रीवास, लक्ष्मण वाधवानी, अब्दुल सलीम, संतोष श्रीवास, मनोज यादव और गेंदू भाई। पिपरिया से हैं कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा, रिमझिम गुप्ता। समडील नवा पारा से हैं मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता, श्रीमती अंकु राघव गुप्ता। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। कलाना राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा। राजकोट गुजरात से हैं रश्मि झरना, भरत कुमार। नाईवाला राजस्थान से हैं वेद मीणा, अलका मीणा। जागोद राजस्थान से शंभू दयाल खटक, बिमला देवी खटक। हीरावाली पंजाब से हैं सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा। जलालाबाद वेस्ट पंजाब से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी अरोड़ा। पदमपुर राजस्थान से हैं मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा। साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से हैं गुरमीत सिंह, मीता। गांधीग्राम गुजरात से हैं प्रवीण सोनी, कलावती सोनी। उत्तर बस्तर कांकेर भानुप्रतापपुर से हैं प्रकाश तिरसुनिया, विकास तिरसुनिया, नैतिक मुकुल, दिव्यांश धैर्य, आराध्या। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से हैं नरेल नेताम, कुसुम नेताम। जतुका किशनपुर से हैं आलम दिलकश, शबाना आलम, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम नास, प्रवान चांदी नास। ताजपुर मोरवा से भाई कारी रायकारी, श्रीमती मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीत मोहम्मद, फारूक, ललन मिश्रा और जयंत कुमार वैरागी।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 0778222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।
2: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम श्रोता सुमन, हमारा दिल आपके पास है। अगला गीत है इस फिल्म से, जिसे गाया है अलका याज्ञिक और उदित नारायण ने। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है संजीव दर्शन ने। अनुरोध है आपका। तमसा रोड हदगांव महाराष्ट्र से हैं ओम गायकवाड़, आविष्कार गायकवाड़, अनामिका गायकवाड़, प्रणीता गायकवाड़। बड़ा बाजार उदयपुर से हैं गोपाल तंबोली, कांता तंबोली, तिलक तंबोली, किरण तंबोली, सक्षम तंबोली, परी और लवर्णिया तंबोली। जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से हैं कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार नामदेव, द्रौपदी देवी नामदेव, रामदेवी नामदेव, ब्रजेश कुमारी नामदेव, अखिलेश कुमारी नामदेव, लखनलाल नामदेव, चाइना नामदेव, आकाश नामदेव, रानी परी नामदेव और उनके माता पिता। छत्रपति शाहू नगर हिंगोली से हैं पिंटर रामचंद्र हिंगोले, सिद्धांत टिंकू हिंगोले, रमाबाई सुरेंद्र हिंगोले, मयूरी शुरभि मंजूषा गौतम हिंगोले। अशोक नगर हिंगोली से दीपाली राजू ठोके, पार्वती सखाराम ठोके, रोहित सोनू मोनू ठोके। नागेश्वर नगर माटेगांव से हैं शेष राव बोबड़े, सुवर्णा सोनाजी, सीताराम शुभम, बालाजी बोबड़े, वेणुताई वैष्णवी बोबड़े, नावकी कार मातोराम भुसारे। पांगरा शिंदे हिंगोली से हैं सुनील जबड़े, टेलर आरडी हिंगोले, देव किशन हिंगोले और चांदू बलखंडे। बेडी से हैं हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची करमकर और तनिया करमकर। सतना बिल्डिंग जबलपुर से हैं अनीता, अंजना तिवारी, बीना तिवारी, ज्योति और गौरी। पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तास देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा।

अब सुनिए समीर का लिखा गीत फिल्म आन से। संगीतकार है अनु मलिक, आवाज है उदित नारायण और शब्बीर कुमार की। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी। डुमराव से हैं वलीउल्लाह अंसारी, आसमा नाज अंसारी, सोनम लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक, मीका बीरक। देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री। कवर कॉलोनी बड़वाह से हैं प्रवीर श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। बोटसरा नैला से हैं प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु साहू। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। कैदी मुड़ा रायगढ़ से हैं पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू, रीतु सिंह, ऋषभ सिंह। बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू, रोशनी और अजय गंगराड़े। लक्कर बाजार खंडवा से हैं मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोइन छोटू पवार और मोहम्मद हसनैन पवार। गांधी बाग अकोला से रमेश कटंकर, वैशाली कटंकर। महाराष्ट्र से हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयसा खान, हादिया खान, आसमा सालिया, शोएब खान, मुजदबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई। गौतम नगर नांदेड़ से हैं प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले। भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू पद्मनी रावत, शुभम, सौरव रावत और नीरज रावत। करपावन बस्तर से हैं गेनू राम बघेल, गोमती बघेल, तनुजा बघेल, सुभाष बघेल और ईशान बघेल।

सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल के युगल स्वर में सुनिए फिल्म मुस्कान का गीत। शब्द रचना समीर की है, धुन तैयार की है निखिल विनय ने, पत्र लिख भेजा है आपने। कुंभार गली कोलगांव से हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, राजी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन और संतोष चंदन। यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से हैं दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार। झारखंड बड़ा बाम्बो सुपाईसाई गांव से हैं देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश तांती, कुमारो निशा, रेशमा, प्रीति और देवन जी। दंतेवाड़ा बचेली से हैं बलराम सेन, इंदु सेन, पुष्पराज सेन, रितिका सेन, पोषण सेन, भुवनेश्वर सेन और समस्त सेन परिवार। बंगला मटिया बालोद से हैं शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्र्यंबिका, लीना, अंश और आशुतोष अंगारे। फरडी बालोद छत्तीसगढ़ से हैं मंतुराम यादव, चित्ररेखा यादव, साहिल यादव, शिवम यादव, केशव यादव, माधव यादव, राकेश यादव, रितेश यादव, पोषण यादव, नेत्राम यादव, संतुराम यादव और विजय यादव। बोड़खेरा उज्जैन से हैं विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मूड़त। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण गरोवर और रमेश मिगलानी। बुराला धरण मालेगांव से हैं दत्ता घयाल, सुनीता बाई घयाल, सानिका घयाल, गजानन घयाल। गीदम रोड जगदलपुर से टी राजू राव, टी सुनील राव, शिवानी राव, तुलसी जया राव, भाग्य लक्ष्मी राव, कीर्ति राव, आनंद राव, मनीषा राव, नानू राव, रोहिणी राव, रोहिणी और राधिका राव। मूर्तिजापुर से है

टुंडशाह, शाजिया बानो, नवागढ़ कटई से है नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा दामनी वर्मा, राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से है राष्ट्रपाल गजबीए, राधिका गजबीए, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबीए, महामाया पारा ग्राम दरचूरा से है फिरंता साहू, दुलौरिन साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू, ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू।

रक्त सुनिए इस फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और अलका यागी के स्वर में। गीत और संगीत है आनंद राज आनंद का। फरमाइशी खत है आपकी मयूरी परिसर भोपाल से हैं श्रवर सिंह गिनारे, जगदीश सिंह गिनारे, रेखा, विनीता, शेर सिंह गिनारे, संजय पगारे। कनेरा मोहल्ला पटियाला से हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक और समस्त बत्ता परिवार। सुभाषवाड भाटापारा से हैं एमएल यादव, अजय कुमार यादव, अमित अमीन यादव, युवान ढावेश यादव। हथबंद नेवदा से हैं सेवक राम यादव, टुपेंद्र कुमार यादव, तुलेंद्र कुमार यादव और देव कुमार यादव। बीसलपुर पीलीभीत से हैं विमल वर्मा, नीतू वर्मा और प्राची वर्मा। हसदा अमनपुर से कमलेश साहू, जितेंद्र साहू, पायल साहू। राजनगर मधुबनी से हैं कुशेश्वर कांति गुप्ता, संगीता गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि सिद्धि गुप्ता। ऐशबाग पीली कॉलोनी लखनऊ से मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक गुप्ता, पंखुरी गुप्ता। राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन से मंजीत गुप्ता, सोनाली गुप्ता, सूर्यांशी गुप्ता, कोमल गुप्ता, मेनका गुप्ता, माधवी साध्वी, एमके गुप्ता, राजू गुप्ता और विनीता गुप्ता। तालुका निवासा खुपटी महाराष्ट्र से बंडू लोहार पोपलघट, माया शिवांश, चंद्रकला पोपलघट, देवीदास पोपलघट। कटोरा तालाब रायपुर से मोहनलाल देवांगन, कृष्ण कुमार ध्रुव, तामनलाल भारती, झावेंद्र कुमार ध्रुव। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु। सरगुजा मैनपाट से हैं सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी से है परवीन डोम, सरूफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम। जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अक्रम आसमा बेलदार, उल्लाह आसमा बेलदार। पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन और वंशिका दिवाकर। झुमरी तलैया से है देव इंगोले, छोटू, दादा इंगोले और झकुली इंगोले।

श्रेया घोषाल और उदित नारायण के युगल स्वर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं तुमसा नहीं देखा, इस फिल्म का गीत। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने। चाहत है आपकी। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन। गोगावा जिला खरगोन से हैं उस्मान खत्री, रिजवान खत्री, अब्दुल गफ्फार खत्री। बमरचाटी डी से हैं गंगा देवी देवांगन, पूनम देवांगन, धनेश्वरी देवांगन, महेश्वरी देवांगन, कुमारी मिल्की देवांगन, बेबी मीनाक्षी, निधि देवांगन। कतियापारा जूना बिलासपुर से हैं सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश देवांगन, आशीष देवांगन, रवि, मोनू, सोनू, काना और आदित्य देवांगन। मध्य प्रदेश खंडवा से हैं जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ललित, मनीषा, शुभम, भावना, कनिका, आदित्य, मानस पटेल और मन पटेल। मध्य प्रदेश रतलाम से हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा।

तो श्रोताओं, लीजिए आप इस गीत का आनंद और दीजिए मुझे यानी अपनी रेडियो साथी प्रीति गुप्ता को कार्यक्रम श्रोता सुमन से अनुमति। नमस्कार।

0: them is what highlights the fact that India is one of our most important strategic partners in the world. It begins with the fact of our shared values. We are the two largest democracies in the world.
1: Secretary Rubio further said that the two countries are also strategically aligned on energy. Responding to a question, he said, the United States is modernizing its immigration system for the 21st century. Responding to a question on Iran, he said, there's good news on that front and indicated that further positive developments are expected in the next few hours.
0: The United States remains committed to finding a peaceful, a diplomatic solution to this crisis. But let's be clear who we're talking about here. We're not talking about some pacifist government over there, some pacifist regime. We're talking about one of the most vicious regimes.
1: The leaders also discussed regional issues, including developments in the Gulf and the Indo-Pacific, ahead of the upcoming Quad Foreign Ministers meeting. Earlier in the opening remark, Mr. Jaishankar said that India and the United States shared a comprehensive global strategic partnership marked by deep and broad-based cooperation. The External Affairs Minister said that the relationship between India and the U.S. impacts and influences not only the two countries, but also other regions and the wider world. U.S. Secretary of State Marco Rubio arrived in India yesterday on a four-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting, which will be held on the 26th of this month. In West Bengal, Bharatiya Janata Party candidate Debangshu Panda has secured a massive lead in the 15th round of counting for the Falta Assembly re-poll. Counting is underway at the Diamond Harbour Women's University. Debangshu Panda of BJP was leading by 69,673 votes when reports last came in. Shambhunath Kurmi of the Communist Party of India, Marxist, was running in second position. Abdul Razak Molla of the Indian National Congress is third. And Jahangir Khan of All India Trinamool Congress was in fourth position. The counting has been conducted across 14 tables and will span a total of 21 rounds for the Falta constituency. Senior BJP leader and Union Minister Piyush Goyal today accused Congress leader Rahul Gandhi of creating a serious plot to spread anarchy in the nation. In a social media post, he said that Mr. Gandhi's statement against Prime Minister Narendra Modi points towards a major conspiracy by the Congress Party along with all opposition parties. Mr. Goyal alleged that Congress Party's true intentions are to defame the country, insult constitutional institutions, and going abroad to appeal to foreign powers to interfere in India's internal affairs. The Union Minister stated that the citizens of the country are wise and have a clear understanding of Rahul Gandhi and the opposition parties that are acting against the nation's interests. He said that the public has repeatedly given a resounding responses to these people. Mr. Goyal added that the INDI alliance's conspiracy will never succeed. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The government has advised all Indian citizens to avoid non-essential travel to the Democratic Republic of the Congo, Uganda and South Sudan until further notice in view of the evolving Ebola outbreak situation. It also directed Indian citizens currently residing in or travelling to these countries to strictly follow public health guidance issued by local authorities and maintain heightened precautions. Ministry of Health and Family Welfare informed that India has not reported any case of Ebola disease. Earlier, the World Health Organization, WHO, had declared Ebola outbreak a public health emergency of international concern following the reported outbreaks of Ebola disease in the Democratic Republic of Congo and Uganda. Ebola disease is a viral hemorrhagic fever caused by infection with the Bundi Bagyo virus strain of the Ebola virus. India has dispatched the first tranche of urgent medical supplies and protective kits to the African Centres for Disease Control and Prevention today. In a post on X, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said the supplies have been sent in response to the emerging Ebola public health emergency. He added that India remains committed in supporting Africa in responding to the crisis in coordination with the African Union. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has issued an update regarding the Class 12th post-result process after technical issues on 21st and 22nd of this month led to incorrect fee deductions in some cases. In a statement, CBSE said that the issue occurred during applications for scanned copies of evaluated answer books. It added that in some instances, excess payment was deducted while in others lesser amounts were charged. The CBSE noted that in all cases of excess payments, the exact excess amounts will be refunded to the same payment method which was used for payment. Similarly, in cases where lesser payment was deducted, candidates shall be informed separately regarding payment of the balance amount if required. It further noted that scanned copies of the evaluated answer books shall be provided in all such cases without candidates being required to submit fresh requests. Prime Minister Narendra Modi today shared an article by Union Minister Jyotiraditya Sindhya highlighting how the five treasures of the Kanchenjunga continue to illuminate Sikkim's journey, paving the way for Visit Sikkim 2047. In a social media post, Mr. Modi said that the article portrays Kanchenjunga as a protector of the land, memory and consciousness of Sikkim. Union Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Rajiv Ranjan Singh, will chair the regional review meeting for the Northeast region tomorrow in Aizawl, Mizoram. The meeting will primarily focus on reviewing the progress of various schemes and programs being implemented in the fisheries, animal husbandry and dairying sectors across the Northeastern region. Discussions will also be held on future strategies for sustainable sectoral growth, farmers' welfare and livelihood enhancement. In Pakistan, 24 people were killed and several injured after a powerful explosion ripped through a railway line in Balochistan province today. The explosion occurred near the Chaman Fatak railway station in capital city Quetta. A train suffered partial damage in the blast, while 10 vehicles parked in the area were also damaged. Following the incident, an emergency was declared in government hospitals across Quetta, with doctors and medical staff summoned to handle the situation. Railway authorities said the Peshawar-bound Zafar Express was stopped at Quetta railway station after the blast as a precautionary measure. Babar Yusufzai, the spokesperson to the Home Minister, said that all relevant institutions have been placed on high alert following an explosion in the city. U.S. President Donald Trump has thanked law enforcement authorities and Secret Service agents for the swift action after shooting near the White House. In a post on Truth Social, he said the suspect had a violent history and noted the incident occurred shortly after another recent security-related shooting in Washington. The Secret Service said a man opened fire near White House security checkpoint at the 17th Street and Pennsylvania Avenue, following which officers returned fire. The suspect was yet taken to hospital and later died. A bystander was also injured, though it is not yet clear whether the person was struck by the suspect's bullets or by gunfire from officers. The suspect has been identified as a 21-year-old man. President Trump was inside the White House at the time of the incident, and this is the third such shooting-related incident reported near the president in recent weeks. The 125th edition of the French Open, commonly known as the Roland Garros, begins today in Paris. Novak Djokovic will launch his bid for a record-extending 25th Grand Slam title. The three-time champion seeded third opens against French big server Giovanni Mpetsi Pericard. Night session on court Philippe Chatrier, second seed and 2024 finalist Alexander Zverev, and seventh seed Taylor Fritz are also among the key men's singles players in action on the opening day. World number one Yannick Sinner will aim for his maiden French Open crown after finishing runner-up to Carlos Alcaraz last year. He will be in action tomorrow. In the women's draw, Coco Gauff will head into the French Open as a defending champion. Meanwhile, world number one Aryna Sabalenka will be aiming to win a first-ever French Open title, having come up second best to Coco Gauff in the final last year. India will also have representation in the men's doubles with top-ranked Indian player Yuki Bhamri partnering New Zealand's Michael Venus, while N. Sriram Balaji teams up with Brazil's Marcelo de Molina. In IPL cricket, the Super Sunday double header will feature crucial matches for playoff qualification today. In the first match of the day, Mumbai Indians will take on Rajasthan Royals at the Wankhede Stadium in Mumbai at 3:30 p.m. For Rajasthan Royals, it is a must-win game in the pursuit of a playoff berth. For Mumbai Indians, it was one of the most disappointing seasons in the franchise as they've already been eliminated from IPL 2026. In another clash of the day, Kolkata Knight Riders will face Delhi Capitals at Eden Gardens in Kolkata. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Last night, riding on an unbeaten 101 runs by skipper Shreyas Iyer, Punjab Kings defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets at the Ikana Cricket Stadium in Lucknow, chasing a target of 197 runs set by Lucknow Super Giants. Punjab Kings scored 200 for 3 in 18 overs. Prav Simran Singh made 69 runs. Earlier, Punjab Kings won the toss and opted to bowl. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and United States reaffirm strength of strategic partnership between the two countries. External Affairs Mr. Dr. S. Jaishankar calls for early trade deal, stresses on diversified energy supplies for the country. U.S. Secretary of State Marco Rubio describes India as one of the United States' most important strategic partners. BJP candidate Debangshu Panda secures massive lead in West Bengal's Falta Assembly constituency re-polling. Government advises all Indian citizens to avoid non-essential travel to Congo, Uganda and South Sudan in view of Ebola outbreak. 24 people killed in a blast in a railway track in Quetta in Pakistan's Balochistan province. And in tennis, French Open Grand Slam begins today in Paris. And with that, we end the Midday News.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
3: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
2: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में है कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
3: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते। These would be the principles with which we would
2: approach that region. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
4: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
2: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमरीका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमरीका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमरीकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
3: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। यह धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के युकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
5: आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
2: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमरीका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला और कलाकार।
7: दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा

0: ईद बदले मत्तांक अच्छा मानेडा इलाज चुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और वेंट सामान किन मोलवेंट कम मत्तांक जानवर किन इलाज तगवेंट राहत दरकना उम्मीद मिंदे यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दोरकिता जीएसटी तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना मिंदे
1: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजा करी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे और हाँ ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग हो से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 बजे ले 4 बजे तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा आमचो फोन नंबर आए 07782226666 फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने
2: जीएसटी चो दर के कम करलो ने सोझे मनुख जीव चो इलाज खंडिक सस्ता नहीं होली से बल्कि जानवर मंचो इलाज बोले सस्ता हो तो भरसा आसे जीएसटी ले वेटनरी सर्जिकल चो सामान सस्ता होली से नुआ कीमत ले सामान बना तो लोग और घेन तो लोग दोनों के लाभ मिरे दे ये नुआ जीएसटी दर 22 सितंबर 2025 ले लागू होए दे।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कॉन्क्रीट चॉइस।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।

0: कला और कलाकार कार्यक्रम संतो सपाए कलाकार भाई बहन मन के मैं सोमारू करे से जुहार। तो दादा दीदी मन असन है कि आमचो ये बस्तर ने कैक गीत गोबिन नाचा डगा ठसा कहनी धंधा असन कैक असन कला मन आसे जे कि लोग नहीं जान सोत ए बेचो पीला मन बल नहीं जानोत कि आमचो बस्तर ने कैक असन रुसुम मन बल हो से बोलते एक आजे आमी समय समय ने यथान ले कैक असन कलाकार भाई बहन मन चो गुणपात कर लो गीत गाव लोर कहनी सांग लोर कैक असन कार्यक्रम मन सुनाते रहो से जे कि लोग जानत बोलते मानतर ए बेच पीला मन काय हो से कि पढ़ा लिखा तो कर सोत मानतर आमचे ही रीति नीति के भूलकते जाय सोत असन करतर नो आए। तो असनीची कला हिसाब ने गोटोक दीदीचो गीत गावलोर धरुन इलोर आसे ये लोक गायिका हम्बती। तो आले ए मनचो गीत के बोले सुनू
1: कांस कसेला बाजे बाजे पीतल कसेला बाजे कांस कसेला बाजे बाजे पीतल कसेला बाजे

चौकाने ऐसो मु बिना कोनी आते संसार थाने मचो दीदी मोनी जोड़ो दीदी समूने जोड़ तोरा मचो भईन मन पेटी समू समूर तोरा।

प्रभु दीदी लंदा कर तोरा मचो दीदी मनी जोड़ो दीदी समूने जोड़ा तोरा मचो भईन मन सबु दीदी समूह जोड़ तोरा कुकुड़ी पालन बकरी पालन हमी कर तोरा कुकुड़ी पालन बकरी पालन हमी कर तोरा ए दादा संगे दीदी बोले किसान कर तोरा मचो दीदी मनी जोड़ो दीदी समूने जोड़ा तोरा मचो भईन मन होने जमा कर तोरा सुना दीदी मन सुना भईन मन सुना रे तुम चौकाने सुना दीदी मन सुना भईन मन सुना रे तुम चौकाने ए समूह बिना कोनी नियाते संसार थाने मचो दीदी मनी जोड़ो दीदी समूने जोड़ा तोरा मचो भईन मनी जोड़ो दीदी समूने जोड़ तोरा जोगे कुमार पराजा जो बटा पलाइला के दूलटा रे रानी पलाइला के दूलटा राजा मोली गला सरकार डटा रे देश होला बटा बटा मर कजरा उपू

महाराज रागले चुरो चुंडा, राजा गले चुरो चुंडा रे थो बोला, राजा गले चुरो चुंडा। सरगी बदरा दा करता ओ बगो मुरिया मंदा, आजी रे रजी आजी थे सने गीत गावी नंदो।

0: हाँ तो टीरू द
1: हाँ
0: काय नंगत गीत रही ने,
1: ओके
0: और ये गीत के जोन गावला साथ हनुमान शिवराम नाग और हनुमंचो संगवारी मन।
1: ओ
0: तो मैं बलते रले द काय सुंदर हम चो कला और कलाकार क्रम हम ही सुन लू ने, और
1: ओके
0: हम चो कलाकार भाई बहन मन बोले सुन ला, और द कला असन चीज आए जोन के भी बोले निसरे
1: नी
0: है कसा ना।
1: सरेगा
0: हाँ आज ही आसे तो काली हम चो लगले हम चो पीला झीला मन हन के सीख दे

अभी आपने सुना कार्यक्रम कला और कलाकार, मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा संपन्न होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक आप विविध भारती के कार्यक्रम सुन सकते हैं। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।

रात 9:30 पर नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 5:05 पर होगा देशभक्ति गीत। युवाओं का कार्यक्रम युवाणी शाम 5:10 पर। शाम 6:05 पर होगा जिले की चिट्ठी। इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। गोंडी समाचार बुलेटिन का प्रसारण समय होगा शाम 6:30। बस्तर केसवर शाम 7:00। कार्यक्रम आमचो गांव का प्रसारण किया जाएगा शाम 7:21 पर। रात 8:00 लोकगीतों के कार्यक्रम बालीफुल में हम आपको सुनवाएंगे मधुराम और साथियों के गाए हल्बी गीत पीला मन का जे गोट। रात 8:30 पर ये कार्यक्रम केंद्रित होगा लाला लाजपत राय पर। प्रस्तुति होगी सुब्लू राम कश्यप की पुरानी फिल्मों से। रात 9:15 पर रात 10:00 दोहना कार्यक्रम में होगा हल्बी लोकगीत। कलाकार होंगी मुरई बाई और साथी। ये थी आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी और अब एक नजर कल के कार्यक्रमों पर। हमारी प्रातःकालीन सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:51 पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुबह 6:05 पर। चिंतन 6:20 पर। श्री राम चरित मानस का गायन सुबह 6:25 पर। बेड़ा खड़ाचो गोट का प्रसारण समय शाम 6:35 माफ कीजिएगा सुबह 6:35। सुबह 6:40 पर हुलहुली कार्यक्रम में होगा कासन पाड़। वादक कलाकार होंगे गणपति कढ़ियारी और साथी। सुबह 7:05 समय होता है कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर का। इसमें आप सुनेंगे स्वतंत्र वार्ता, विषय जो रूठी प्रकृति। वार्ताकार होंगी माधवी यादव। कविता पाठ में सुभाष चंद्र साहू की कविताएं और होगी मधुर गीतों की मधुरिमा। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम लोक मंजरी में हम आपको सुनवाएंगे विभिन्न बोलियों में बस्तर के लोकगीत। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण समय होगा सुबह 9:00। 9:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से। गुलशन कार्यक्रम में पुराने फिल्मी नगमे पेश की जाएंगी सुबह 10:00। 10:30 पर लोकगीतों के कार्यक्रम गुरुदुम में होगा फूलधर वड्डे और साथियों के गाए गोंडी गीत। एक ही कलाकार। 11:00 कलाकार होंगे अभिनेता सुनील दत्त। 11:30 पर लोकगीतों के कार्यक्रम पाटा केंजा में आप सुनेंगे मासो और साथियों के गाए गोंडी गीत। मोचो माटी लोक साहित्य पत्रिका, ये कार्यक्रम होगा दोपहर 12:00। संपादक होंगे बलवीर सिंह कच्छ। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार दोपहर 12:30 पर। श्रोता सुमन फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम दोपहर 1:10 पर। दोपहर 2:30 पर होगा कार्यक्रम कला और कलाकार। सांध्यकालीन सभा में शाम 5:00 होगा पद्मा अवार्ड्स 2026। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। दिलीप कुमार पांडे और साथियों के गाए हल्बी गीत सुना जा सकेगा शाम 6:30 पर। बस्तर के स्वर शाम 7:00। शाम 7:21 पर होगा कार्यक्रम आमचो गांव। रात 8:00 लोकगीतों के कार्यक्रम में दुकारू सोड़ी और साथियों के गाए गोंडी गीत सुना जा सकेगा पीला मन का जे गोट। ये कार्यक्रम होगा रात 8:30 पर, जो केंद्रित होगा मुंशी प्रेमचंद पर। प्रस्तुति होगी भरत कुमार गंगादित्य की। रात 9:15 पर जीवना चोसोर कार्यक्रम में महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्षा रुक्मणी साहू से ली गई भेंट वार्ता सुना जा सकेगा। इनसे भेंट करेंगे बलवीर सिंह कच्छ। भेंट घाट कार्यक्रम रात 9:30 पर। इसमें सुनेगा साक्षरता की आवश्यकता विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगे बलवीर सिंह कच्छ। रात 10:00 कोदोमाली में आप सुनेंगे जगार गीत। गायिका होंगी जयमनी और साथी।

ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत समूह स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत समूह स्वर में। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए युवाओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी के युवा कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का मैं निधि हृदय से स्वागत करती हूं। आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे।
1: और मैं रेखा आप सभी प्यारे श्रोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आज की तेज भागदौड़ वाली जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है।
0: रेखा, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आजकल लोगों के पास सुविधाएं तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन मन की शांति कहीं कम होती जा रही है?
1: हाँ निधि, बिल्कुल। आज हर व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी चीजें जोड़ता जा रहा है, कपड़े, गैजेट्स, फैशन, दिखावा, लेकिन फिर भी संतुष्टि दिखाई नहीं देती है।
0: सही कहा तुमने, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ज्यादा चीजें हमारे जीवन को आसान नहीं बल्कि और उलझा देती हैं।
1: बिल्कुल। और दोस्तों, शायद इसी वजह से अब लोग सादगी भरे जीवन की ओर वापस लौटने लगे हैं।
0: बिल्कुल रेखा, आजकल सोशल मीडिया पर भी लोग साफ सुथरे कमरे, सीमित सामान और शांत जीवन शैली को काफी पसंद कर रहे हैं।
1: बिल्कुल। और इसी बदलती सोच को आज एक नया नाम दिया जा रहा है, मिनिमलिज्म का।
0: तो रेखा, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को यह बताइए कि आखिर मिनिमलिज्म होता क्या है?
1: हाँ निधि, दोस्तों मिनिमलिज्म एक ऐसी जीवन शैली है जिसमें व्यक्ति केवल उन्हीं चीजों को अपने जीवन में रखता है जो वास्तव में आवश्यक हो, यानी अनावश्यक वस्तुओं, फालतू खर्च और दिखावे से दूर रहकर सरल और संतुलित जीवन जीना ही मिनिमलिज्म कहलाता है।
0: वाह, मतलब कम चीजों में भी खुश और संतुष्ट रहना ही इसका मुख्य उद्देश्य है।
1: बिल्कुल। यह केवल एक सामान रखने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, आदतों और जीवन जीने के तरीके से भी जुड़ा हुआ है।
0: हाँ दोस्तों, कई बार हम बहुत सारी चीजें खरीद लेते हैं लेकिन फिर भी मन शांत नहीं रहता। ऐसे में सादगी भरा जीवन हमें मानसिक शांति देने का काम करता है।
1: बिल्कुल निधि।
0: हाँ,
1: आजकल युवा वर्ग इस जीवन शैली की ओर इतना आकर्षित क्यों हो रहा है?
0: देखो रेखा, आज का जीवन बहुत तेज हो गया है। हर समय प्रतियोगिता, तनाव और दिखावे का दबाव रहता है। लोग महंगी चीजों के पीछे भागते भागते मानसिक रूप से थकने लगे हैं।
1: हाँ बिल्कुल। दोस्तों, आपने भी महसूस किया होगा कि ज्यादा सामान कभी कभी जिम्मेदारियां भी बढ़ा देती है ना?
0: बिल्कुल, इसीलिए अब लोग कम लेकिन जरूरी चीजों के साथ शांत और व्यवस्थित जीवन जीना पसंद कर रहे हैं।
1: बिल्कुल। और सोशल मीडिया पर भी सिंपल लिविंग और क्लीन लाइफस्टाइल काफी लोकप्रिय हो रहा है, जिससे युवा प्रेरित हो रहे हैं, है ना?
0: हाँ सही कहा। तो रेखा, अगर कोई श्रोता मिनिमलिज्म अपनाना चाहे तो शुरुआत कैसे कर सकता है?
1: बताती हूँ। सबसे पहले व्यक्ति को अपने घर और जीवन से अनावश्यक चीजों को हटाना चाहिए। जो वस्तुएं लंबे समय से उपयोग में नहीं है उन्हें दान किया जा सकता है।
0: हाँ, और जरूरत के अनुसार ही खरीदारी करनी चाहिए। सिर्फ दिखावे या फैशन के लिए हर चीज खरीदना जरूरी नहीं होता।
1: बिल्कुल। साथ ही मोबाइल और सोशल मीडिया पर कम समय बिताकर स्वयं के विकास पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल। योग, ध्यान, किताबें पढ़ना और प्रकृति के साथ समय बिताना भी इस प्रकार की जीवन शैली का हिस्सा हो सकता है।
1: बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी इच्छाओं को सीमित रखना, क्योंकि जरूरतें कम हो तो जीवन अधिक शांत और सुंदर बन जाती है।
0: रेखा, अब हमारे श्रोताओं को इसके फायदे भी बताइए।
1: जी बिल्कुल। मिनिमलिज्म अपनाने से मानसिक तनाव कम होता है और मन अधिक शांत रहता है।
0: साथ ही खर्च कम होता है और बचत बढ़ती है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है।
1: बिल्कुल। घर और कार्यस्थल व्यवस्थित रहते हैं, जिससे काम करने में भी मन लगता है।
0: और दोस्तों, जब जीवन में अनावश्यक चीजें कम होती हैं तो व्यक्ति अपने सपनों और लक्ष्यों पर ज्यादा ध्यान दे पाता है।
1: हाँ निधि, तुमने बिल्कुल सही कहा। मिनिमलिज्म हमें यह सिखाता है कि असली खुशी चीजों में नहीं बल्कि संतोष और मानसिक शांति में होती है।
0: आज के युवाओं के लिए यह जीवन शैली बहुत उपयोगी हो सकती है।
1: जी हाँ, यदि युवा अपने जीवन में संतुलन, अनुशासन और सादगी लाए तो वे तनाव मुक्त और आत्मविश्वासी जीवन जी सकते हैं।
0: और हाँ दोस्तों, सरल जीवन जीना कभी भी कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह समझदारी और हमारे आत्मनियंत्रण की पहचान है।
1: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि मिनिमलिज्म केवल एक ट्रेंड नहीं, बल्कि बेहतर और शांत जीवन जीने की एक सुंदर कला है।
0: उम्मीद है कि आज की यह चर्चा आपको पसंद आई होगी और आप भी अपने जीवन में सादगी और संतुलन लाने का प्रयास करेंगे।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों, इन्हीं अतरंगी बातें और खूबसूरत गीतों से भरी आज की इस शीतल संध्या में सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम तरन्नुम। जीने की चाह में कहाँ तक आ गया हूँ, जीने की चाह में कहाँ तक आ गया हूँ, ए जमी सुन आसमां तक आ गया हूँ। मौत से मुझे गिला है वो आती नहीं, मौत से मुझे गिला है वो आती नहीं, जिंदगी से दोस्ती है कि जाती नहीं।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: तो दोस्तों, अगले गीत में अपनी मधुर आवाज देने के साथ ही गीत को संगीत से सजाया भी है अदनान सामी ने। गीतकार हैं समीर। सुनिए ये खूबसूरत सा गीत।

0: तो दोस्तों तरन्नुम में और भी गीत सुनेंगे, अभी वक्त हो चला है कार्यक्रम सामान्य ज्ञान की बातें का।
1: रेखा, क्या तुम्हें पता है कि इंसान के शरीर में मौजूद हड्डियां जन्म के समय और बड़े होने पर एक जैसी नहीं रहती?
0: अरे ऐसा कैसे निधि?
1: दोस्तों जब एक बच्चा जन्म लेता है तब उसके शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती, लेकिन बड़े होने तक कई हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं और उनकी संख्या 206 रह जाती है।
0: अच्छा वाह, मतलब हमारा शरीर समय के साथ खुद को बदलता भी रहता है। सच में प्रकृति का विज्ञान अद्भुत है यार।
1: हाँ
0: तो निधि,
1: हाँ
0: क्या तुमने कभी सोचा है कि धरती पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ से आती है, जंगलों से या कहीं और से?
1: ज्यादातर लोग जंगलों का नाम लेते हैं, लेकिन असल में धरती की लगभग 50-70% ऑक्सीजन समुद्र में मौजूद जो सूक्ष्म पौधे और शैवाल हैं उनसे आती है।
0: अच्छा, मतलब समुद्र केवल पानी का स्रोत नहीं बल्कि हमारी सांसों का भी बड़ा सहारा है।
1: बिल्कुल दोस्तों, इसीलिए समुद्र और पर्यावरण की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: निधि,
1: हाँ
0: क्या तुम जानती हो कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ एक भी प्राकृतिक नदी नहीं है?
1: सच में बिना नदी के कोई देश कैसे हो सकता है?
0: जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब ऐसा देश माना जाता है जहाँ कोई स्थायी प्राकृतिक नदी नहीं बहती। वहाँ पानी के लिए भूमिगत स्रोतों और समुद्री जल को शुद्ध करके उपयोग किया जाता है।
1: वाह, यह जानकारी तो सच में बहुत ही रोचक है।
0: और दोस्तों अब एक और अद्भुत जानकारी सुनिए। क्या आपको पता है कि इंसान का दिमाग सोते समय भी सक्रिय रहता है?
1: हाँ, वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा मस्तिष्क नींद में भी यादों को व्यवस्थित करने और शरीर को नियंत्रित करने का काम करता है।
0: यानी जब हम आराम कर रहे होते हैं तब भी हमारा दिमाग लगातार काम करता रहता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, यही कारण है कि डॉक्टर भी हमें पर्याप्त नींद लेने की सलाह देते हैं। रेखा, क्या तुमने कभी गौर किया कि आसमान का रंग नीला ही क्यों दिखाई देता है?
0: हाँ, ये सवाल तो बचपन से सभी के मन में आता है ना?
1: हाँ सही कहा दोस्तों, सूर्य का प्रकाश कई रंगों से मिलकर बना होता है। जब प्रकाश वातावरण से गुजरता है तब नीला रंग सबसे ज्यादा बिखरता है और इसीलिए हमें आसमान नीला दिखाई देता है।
0: वाह, मतलब रोज दिखाई देने वाली चीजों के पीछे भी कितना सुंदर विज्ञान छिपा होता है ना?
1: हाँ सही कहा।
0: तो दोस्तों विज्ञान सामान्य ज्ञान की बातों में बस इतना ही, फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम तरन्नुम की ओर। तो इसके बाद दोस्तों जो आप प्यारा सा गीत सुनेंगे उसे लिखा है और स्वर दिया है कैलाश खैर ने, साथ ही गीत को संगीत से सजाया है कैलाश नरेश परेश ने। तो सुनिए ये गीत।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: दोस्तों, कार्यक्रम तरन्नुम में और भी गीत सुनेंगे, उससे पहले बढ़ते हैं कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका की ओर।
2: रेखा, क्या आपको पता है कि वैज्ञानिक अब ऐसे स्मार्ट चश्मों पर काम कर रहे हैं जो आंखों के सामने ही मोबाइल जैसी जानकारियां दिखा सकते हैं?
1: वाह, मतलब भविष्य में मोबाइल हाथ में रखने की जरूरत भी कम हो सकती है ना?
2: हाँ, सही कहा
1: निधि। हाल ही में वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराइयों में कुछ नई सूक्ष्म जीव प्रजातियों की खोज भी की है।
2: सच में, यानी धरती के अंदर और समुद्र में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे इंसान पूरी तरह नहीं जान पाया है।
1: बिल्कुल
2: रेखा। आजकल सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहन भी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं।
1: हाँ, क्योंकि इससे प्रदूषण कम होता है और पर्यावरण को भी फायदा ज्यादा मिलता है ना? तो दोस्तों, विज्ञान पत्रिका में बस इतना ही है और अब बढ़ते हैं फिर से कार्यक्रम तरन्नुम की ओर और सुनवाते हैं आपको अगला गीत। दोस्तों, अगले गीत के गीतकार संगीतकार है प्रेम और हरदीम गीत के स्वर होंगे अभिजीत सावंत के। तो सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वार्ता का। वार्ता का विषय है डिजिटल बस्तर और युवा वार्ताकार हैं रुखसाना खातून।

0: मैं रुखसाना खातून और आज मेरे चर्चा का विषय है डिजिटल बस्तर और युवा। दोस्तों, आज का समय पूरी तरह से डिजिटल होता जा रहा है। अब लगभग हर काम मोबाइल और इंटरनेट की मदद से होने लगा है, चाहे पढ़ाई करनी हो, नौकरी की जानकारी लेनी हो, बैंक का काम करना हो, टिकट बुक करना हो या किसी भी दूर बैठे व्यक्ति से बात करना हो। हर चीज अब डिजिटल माध्यम से आसान हो गई है। बस्तर जैसे क्षेत्र भी अब धीरे धीरे इस बदलाव का हिस्सा बन रहे हैं। पहले बस्तर को केवल उसकी प्राकृतिक सुंदरता, जंगलों, झरनों और आदिवासी संस्कृति के माध्यम से जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ के युवा तकनीक की दुनिया में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। डिजिटल बस्तर का मतलब केवल मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग नहीं है, इसका मतलब यह है कि बस्तर के लोग तकनीक का इस्तेमाल केवल शिक्षा, रोजगार, व्यापार और जीवन को बेहतर बनाए। आज गांवों में भी लोग स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं, कई लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं और सरकारी योजनाओं की जानकारी इंटरनेट से प्राप्त करते हैं। इससे लोगों का समय भी बचता है और काम भी जल्दी हो जाता है। कुछ साल पहले तक बस्तर के दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की सुविधा बहुत कम थी। लोगों को छोटी छोटी जानकारी के लिए शहर जाना पड़ता था, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति बदल रही है। कई गांवों तक इंटरनेट पहुंच चुका है। युवा अब मोबाइल के माध्यम से नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। यूट्यूब, गूगल और सोशल मीडिया इनके लिए सीखने का बड़ा माध्यम बन चुके हैं। कोविड के समय में डिजिटल शिक्षा का महत्व सबसे ज़्यादा समय में आया। अब स्कूल और कॉलेज बंद हो गए थे, तब ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाई जारी रही। बस्तर के कई छात्र भी मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई करने लगे हैं। हालांकि शुरुआत में नेटवर्क और मोबाइल की समस्याएं थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने डिजिटल शिक्षा को अपनाना शुरू कर दिया। आज कई छात्र ऑनलाइन वीडियो देखकर गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। युवाओं की भूमिका डिजिटल बस्तर के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण है। युवा कई तकनीक को जल्दी सीखते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। आज का युवा केवल नौकरी खोजने तक सीमित नहीं है, बल्कि खुद का काम शुरू करने की भी सोच रखता है। कई युवा ऑनलाइन काम करके घर बैठे पैसे कमा रहे हैं। कुछ लोग यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, कुछ वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, तो कुछ सोशल मीडिया मैनेजमेंट और फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं। बस्तर की सांस्कृतिक और कला बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की हस्तकला, लकड़ी की कला, बेल बैटम आर्ट और लोक नृत्य पूरी दुनिया में पसंद किया जाते हैं। पहले इन चीज़ों की पहचान केवल स्थानीय बाजारों तक ही सीमित थी, लेकिन अब सोशल मीडिया और इंटरनेट की मदद से इन्हें देश और विदेश तक पहुंचाया जा सकता है। युवा इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से बस्तर की संस्कृति को दुनिया के सामने ला सकते हैं। इससे स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी फायदा हो रहा है। डिजिटल तकनीक ने व्यापार करने का तरीका भी बदल दिया है। अब छोटे दुकानदार भी ऑनलाइन पेमेंट स्वीकार कर रहे हैं। UPI, QR कोड और मोबाइल बैंकिंग ने पैसे के लेन देन को आसान बना दिया है। पहले बैंक के छोटे छोटे कामों के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, लेकिन अब कई काम मोबाइल से ही हो जाते हैं। इससे लोगों का समय और मेहनत दोनों बचते हैं। आज के युवा सोशल मीडिया का उपयोग करके मनोरंजन के लिए ही नहीं, बल्कि जानकारी और सीखने के लिए भी कर रहे हैं। कई युवा ऑनलाइन कोर्स करके नई स्किल सीख रहे हैं। आज के युवा सोशल मीडिया का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं बल्कि जानकारी और सीखने के लिए भी कर रहे हैं। कई युवा ऑनलाइन कोर्स करके नई स्किल सीख रहे हैं, जैसे कंप्यूटर सीखना, डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ऑनलाइन टीचिंग। इन स्किल्स की मदद से वे रोज़गार के नए अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट ने युवाओं को दुनिया से जोड़ दिया है। अब वे केवल अपने गांव या शहर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देश और दुनिया की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि डिजिटल बस्तर के सामने कई चुनौतियां भी हैं। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां इंटरनेट सही से काम नहीं करता। बिजली की समस्या भी कई जगहों पर बनी रहती है। सभी परिवार अच्छे स्मार्टफोन या लैपटॉप खरीदने में सक्षम नहीं हैं। कुछ लोग डिजिटल चीज़ों का सही उपयोग नहीं जानते, जिसके कारण वे ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते। साइबर अपराध भी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। कई लोग ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होते जाते हैं। फर्जी कॉल, गलत लिंक और OTP धोखाधड़ी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। इसलिए लोगों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। युवाओं को चाहिए कि वे खुद भी सावधान रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। सरकार भी डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल बनाने का प्रयास कर रही है। स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई सरकारी सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। छात्रवृत्ति, आधार, राशन कार्ड और अन्य योजनाओं की जानकारी अब इंटरनेट से आसानी से मिल जाती है। अगर बस्तर के युवा सही दिशा में तकनीक का उपयोग करें तो आने वाले समय में बस्तर बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। यहाँ के युवा अपनी प्रतिभा और मेहनत के नए अवसर पैदा कर सकते हैं। ज़रूरत है केवल सही मार्गदर्शन, अच्छी शिक्षा, बेहतर इंटरनेट सुविधा की। भविष्य का बस्तर ऐसा हो सकता है जहां हर गांव डिजिटल रूप से जुड़ा हो, हर युवा तकनीकी रूप से सक्षम हो और स्थानीय कला व संस्कृति को दुनिया भर में पहचान मिले। तकनीक का सही उपयोग बस्तर को शिक्षा, रोजगार और विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि डिजिटल बस्तर का सपना तभी पूरा होगा जब युवा आगे आकर इसमें भागीदारी निभाएंगे। युवा ही बस्तर की सबसे बड़ी ताकत है। अगर वे तकनीक को सही तरीके से अपनाएं और अपनी संस्कृति के साथ लेकर चलें और अपनी संस्कृति को साथ लेकर चलें तो बस्तर का भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है। डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ते हुए अपनी पहचान और परंपराओं को बचाए रखना ही असली विकास है। धन्यवाद
1: दोस्तों। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वार्ता डिजिटल बस्तर और युवा। वार्ताकार थी रुक्षाना खातून। तो दोस्तों फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम तरन्नुम की ओर और सुनते हैं प्यारा प्यारा सा गीत।
2: श्रोताओं, अगला गीत जो आप सुनेंगे उस गीत में अपनी मधुर आवाज और संगीत देकर चार चांद लगाए हैं हिमेश रेशमिया ने। गीत लिखा है समीर ने। तो सुनिए ये गीत।

0: तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर शाम होगी आप सभी से मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति, मैं रेखा नायक
1: और मैं निधि राव,
0: दीजिए हमें अनुमति,
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने को है हिंदी में समाचार। हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा

ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक मतों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फलता में मतदान में धांधली होने के बाद इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। यहां इस महीने की 21 तारीख को मतदान कराया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्रिशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 33 वर्षीय त्रिशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। त्रिशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के साथ 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की चेतावनी दी है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। और खेलों में मुंबई में IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 3rd ओवर में 2 विकेट पर 18 रन बना लिए हैं। वहीं कोलकाता में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुनिए गौरेला पिंडरा मरवाही जिले की चिट्ठी, आलेख हरीश मांडवा का है।
1: श्रोताओं नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं गौरेला पिंडरा मरवाही जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में डायल 112 सेवा के तहत 7 अत्याधुनिक इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल और 2 हाईवे पेट्रोलिंग वाहन प्रदान किए गए हैं। पिछले दिनों पिंडरा स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मरवाही विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची ने हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया। इस अवसर पर श्री मरपच्ची ने बताया कि डायल 112 सेवा से जिलेवासियों को किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता मिल सकेगी। वहीं पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार खिलारी ने बताया कि डायल 112 सेवा पहले राज्य के 16 जिलों में संचालित थी, अब इस सेवा का विस्तार प्रदेश के सभी 33 जिलों

0: में कर दिया गया है। श्रोताओं, जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य निर्धारित समय से पहले पूरा कर गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिला प्रदेश का पहला जिला बन गया है। इस उपलब्धि पर कलेक्टर और प्रमुख जनगणना अधिकारी डॉ संतोष कुमार देवांगन ने जनगणना कार्य में लगे 600 से अधिक अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। गौरतलब है कि प्रदेश में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य 1 मई से शुरू हुआ है, जो 30 मई तक चलेगा। श्रोताओं, जिले में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति को सुचारू और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए कलेक्टर डॉ संतोष कुमार देवांगन ने पेट्रोल पंप संचालकों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत बड़े वाहनों में अधिकतम 100 लीटर, कार में 20 लीटर और दोपहिया वाहन में 2 लीटर तक पेट्रोल डीजल उपलब्ध कराया जाएगा। जिला प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि आदेशों का पालन नहीं करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के विरूद्व नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस बीच राज्य शासन ने सभी पेट्रोल डीजल पंपों पर ड्रम, बोतल और जेरिकेन में ईंधन की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है। हालांकि रबी खरीफ सीजन के लिए किसानों, कलेक्टर द्वारा चिन्हांकित शासकीय निर्माण कार्यों और अस्पताल, मोबाइल टावर जैसी अत्यावश्यक सेवाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके लिए अनुविभागीय अधिकारी के परीक्षण के बाद सुरक्षा मानकों के अनुरूप बिक्री की अनुमति होगी। श्रोताओं, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में 22 मई को जिला स्तरीय मूल्यांकन और निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक में जिले के 3 नगरीय निकाय से प्राप्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का अनुमोदन राज्य स्तरीय समिति के लिए किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर पालिका परिषद गौरेला के 21 और पेण्ड्रा के 38 तथा नगर पंचायत मरवाही के 68 हितग्राहियों के आवेदन अंतिम स्वीकृति के लिए राज्य स्तरीय समिति को भेजे गए हैं। समिति से मंजूरी मिल जाने के बाद इन हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सकेगा। श्रोताओं, खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों को एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि जिले में 800 से अधिक किसानों का एग्रीस्टेक पोर्टल में अभी तक पंजीयन नहीं हुआ है। ये किसान आदिम जाति सेवा सहकारी समिति अथवा लोक सेवा केंद्र में जाकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पोर्टल में बिना पंजीयन के किसानों से धान खरीदी नहीं की जाएगी। श्रोताओं, जिले के आमाडोब और केवची गांव के जंगलों से संग्रहित प्राकृतिक शहद को अब बेंगलुरु भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत गठित स्व सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा संग्रहित इस शहद की ब्रांडिंग और पैकेजिंग का कार्य एक निजी कंपनी द्वारा किया जा रहा है। कलेक्टर डॉ संतोष देवांगन ने कहा कि स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को राज्य से बाहर नई पहचान दिलाने और महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की दिशा में ये पहल महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। श्रोताओं, गौरेला स्थित जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में 26 मई को सुबह 10 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, फील्ड ऑफिसर और ट्रेनिंग ऑफिसर सहित 72 पदों पर भर्ती की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का यह अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले की चिट्ठी, हरीश मांडवा का था। अब आप छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग अनुरिमा शर्मा की जय जोहार। आप सुनो आज के प्रमुख समाचार। राज्य सरकार ह खरीफ बछर 2026 बर सहकारी क्षेत्र में खातु बांटे संबंधी जारी करिस नवा दिशा निर्देश। नई दिल्ली में होइया नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति बछर 2026 बर काली देही पद्म पुरस्कार और कांकेर नारायणपुर के सीमावर्ती जगह में सुरक्षा बल मन दू ठीन आने आने जगह ले बरामद करे है नक्सल डंप। अब समाचार विस्तार ले। राज्य सरकार ह खरीफ बछर 2026 बर सहकारी क्षेत्र म खातू बांटे संबंधी नवा दिशा निर्देश जारी करे हे। एखर मुताबिक पाछू बछर किसान मन ला बांटे गे खातू के मात्रा के आधार म ए बछर के कोटा तय करे गे हे। एखर चलत ए बछर किसान मन ला यूरिया के 80% मात्रा ही पारंपरिक यूरिया के रूप म दे जाही, बांचे 20% मात्रा ला उपलब्ध आधार म दे जाही या फिर एखर बदला नैनो यूरिया दे जाही। डीएपी बांटे के काम घलो पाछू बछर के मुकाबला 60% करेगे हे। बांचे 4% ला वैकल्पिक एनपीके उर्वरक या नैनो डीएपी दे जाही। शासन ने स्पष्ट करे हे कि कोनो भी किसान ला नैनो खातु लेबर मजबूर नहीं करे जाही, एह ऑप्शन रूप में रही। यहाँ बता दन कि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय हालत और खाड़ी क्षेत्र में चलत तनाव ला देखत राज्य सरकार ह किसान मन ला बेरा मा खातु दे के निर्णय ले हे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू काली 25 मई के नई दिल्ली में होया नागरिक अलंकरण समारोह में बछर 2026 बर पद्म पुरस्कार देही। ए मौका में आकाशवाणी अपन श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के तहत 16 ठिन कार्यक्रम प्रस्तुत करत हे। ए एपिसोड में पद्म पुरस्कार विजेता मन के काम और जीवन के बारे में जानकारी दे जाही। एकर प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल में करी जाही। एला न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में घलो सुने जा सकत हे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी हा नियम कानून में सख्ती राखत नवा गाइडलाइन जारी करे हे, जेखर मुताबिक अब हवाई यात्री मन एयरपोर्ट के सुरक्षा होल्ड एरिया में मोबाइल ले रील बनाना पूरी तरह ले बैन रही। संगे जउन जगह में हवाई जहाज खड़े रही और बस ले यात्री मन ला विमान ले जाए जाही वहां तक वाली जगह में रुक के रील फोटो या वीडियो बनाए ऊपर घलो रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार हा जन परामर्श बर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत मसौदा नियम प्रकाशित करे हे। ग्रामीण विकास मंत्रालय हा कहे हे कि कोनो भी मनखे हितधारक संगठन या संस्था अवैया महीना के 21 तारीख तक ए मसौदा नियम मन ऊपर आपत्ति या सुझाव दे सकत हे। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ए बछर 1 जुलाई ले सब राज्य मन मा लागू हो जही। छत्तीसगढ़ सरकार हा कहे हे कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के कोनो कमी नहीं है और आम लोगन ला घबरा के उपराहा एला बिसाए के जरूरत नहीं है। सरकार के मुताबिक राज्य में करीबन 3,94,00,000 लीटर पेट्रोल और 8,08,00,000 लीटर ले ज्यादा डीजल के भंडार उपलब्ध है। किसान और जरूरी सेवा मन ला प्राथमिकता देवत ईंधन के रोजिना आपूर्ति जारी है। राज्य में 22 महीले ड्रम और जरीकेन में पेट्रोल डीजल दे ऊपर रोक लगाई गई है। सरकार हा लोगन मन ला अफवाह ले बांचे की अपील करे है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा आज 2 पाली में राखे गे रहीस। ए दरी परीक्षा देवैया मन ला पहली घाव फेस स्कैन सिस्टम ले गुजरे ला पड़ीस है। चेहरा मैच होए के बादे उमन ला परीक्षा केंद्र भीतरी जाए के परमिशन देगीस। परीक्षा ला लेके कड़ा सुरक्षा व्यवस्था रहीस। ए परीक्षा पर रायपुर जिला में 22 ठिन केंद्र बनाए गए रहीस। सुप्रीम कोर्ट हा विशेष आवश्यकता वाले लैका मन के पढ़े लिखाई ला लेके छत्तीसगढ़ शासन ला विशेष शिक्षक मन के भर्ती प्रक्रिया ला 2 महीना भीतरी पूरा करे के निर्देश दे हे। एक ठिन याचिका के सुनवाई बेरा अदालत हा कहिस कि राज्य में 49,000 ले ज्यादा विशेष आवश्यकता वाले लैका मन पर करीबन 4,000 विशेष शिक्षक के जरूरत है। राज्य सरकार हा अदालत ला बताइस कि 848 स्वीकृत पद मिले 848 स्वीकृत पद में ले 62 जिन शिक्षक मन के नियुक्ति हो चुके है। सुप्रीम कोर्ट है की इसके 155 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और 85 जिन विशेष शिक्षक मन ला स्क्रीनिंग कमेटी के आगू मा प्रस्तुत होए के मौका दे जाए। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
3: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
2: अब आगू बढ़बो बांचे समाचार डहार। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल डहर ले प्रदेश के सबो डाकघर मन मा काली और परंदिन यानी 25 और 26 मई के अल्प बचत खाता खोले बर विशेष अभियान चलाया जाही। ए दौरान कोनो भी नागरिक अपन तीर तखार के पोस्ट ऑफिस जाके या राज्य सरकार डहर ले नियुक्त अधिकृत एजेंट मन के माध्यम ले अल्प बचत योजना जैसे मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना ये सब मा निवेश कर सकी। नक्सल उन्मूलन अभियान के चलत कांकेर नारायणपुर के सीमावर्ती जगह में सुरक्षा बल मन दू ठी नानिया ने जगह ले डंप बरामद करे हैं। डीआरजी बीएसएफ और बीडीएस के संग्रह टीम हां कांकेर जिला के कोयलीबेड़ा के थाना जगह के गांव पल्लाहूर और जपमरका तीर जंगल भित्री लुका के राखे गए नक्सल डंप बरामद करे है। एमा बीजीएल लॉन्चर, बीजीएल सेल, फायर कार्टिज, AK-47 और SLR के खाली कार्टे समेत बड़कन विस्फोटक जिनिस घलो है। इस तरह सुरक्षा बल मनहा कांकेर नारायणपुर सीमावर्ती जगह के गांव मरका बेड़ा आदनार और एलूर के जंगल भित्री ले घलो नक्सल जिनिस बरामद करे है। एमा 3 ठी 12 बोर के राइफल, बीजीएल लॉन्चर, बारूद और इलेक्ट्रिक डेटोनेटर समेत विस्फोटक जिनिस शामिल है। उथी राजनांदगांव जिला के बॉर्डर ले लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली माओवादी विरोधी अभियान के चलत पुलिस ला भारी सफलता मिली है। पुलिस का सर्चिंग ऑपरेशन बेरा इहों ले नक्सली डंप बरामद करे है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के सरिया पुलिस धान खरीदी में फर्जीवाड़ा के खुलासा करत साले ओना उपार्जन केंद्र के समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर ला गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेज दे है। एकर मन ऊपर आरोप है कि बिना धान के वास्तविक आवक के ऑनलाइन एंट्री करके करीबन 99 लाख रुपया के गबन करेगे है। ये मामला में सहायक खाद अधिकारी के रिपोर्ट ऊपर मामला दर्ज करेगी। अब पेशे मौसम के हाल। प्रदेश में ए बेरा जोरदार गर्मी पड़त है जेखर ले जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग का चेताया है कि अवैया 24 घंटा के दौरान रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और महासमुंद समेत प्रदेश के 18 ठीन जिला में ले एक दू जगह में लू चल सकत है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम ले अवैया शुष्क और तात्त हवा के सेती तापमान बढ़ गए हवे और एक सेती फिलहाल गर्मी ले राहत नहीं मिलत है। वही आज रायपुर में 43.6, बिलासपुर में 43.4 और जगदलपुर में 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज करेगी। इसी बीच विशेषज्ञ मन लू ले बांचे वर सावधानी बरते की अपील करे हैं। लोगन मनला भरपूर पानी और तरल पदार्थ पिए के संगे हल्का रंग के सूती कपड़ा पहने और पूरा शरीर ला तोप के राखे के सलाह दे हैं। संगे बिना काम के बाहर नहीं जाए के अपील करे हैं। अब थोरकुन समाचार सारमा। बलौदाबाजार भाटापारा जिला में जिला शिक्षा अधिकारी है दू झीन सहायक शिक्षक ला सस्पेंड कर दे है। ये दोनों पर कर्तव्य पालन में लापरवाही बरते के आरोप है। रायपुर पुलिस ने पंजाब ले नशा के तस्करी करिया एक ठिन गिरोह के पर्दाफाश करत 3 झीन आरोपी ला गिरफ्तार करी है। एकर मंतिर ले करीबन 56 ग्राम हेरोइन जब्त करे गए है। औ बिटकॉइन में निवेश करके मुनाफा देवाए के झांसा दे के एक झीन मनखे ले 7.5 लाख रूपया के धोखाधड़ी के मामला में दुर्ग पुलिस ने 1 झीन आरोपी ला रायपुर ले गिरफ्तार करी है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। राज्य सरकार खरीफ बछर 2026 बर सहकारी क्षेत्र में खातू बांटे संबंधी जारी करी नवा दिशा निर्देश। नई दिल्ली में हुवैया नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति बछर 2026 बर काली देही पद्म पुरस्कार औ कांकेर नारायणपुर के सीमावर्ती जगह में सुरक्षा बल मन दू ठीन आनियानी जगह ले बरामद करे है नक्सल डंप। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।

0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए गोंडी समाचार बुलेटिन।
1: इधर आकाशवाणी जगदलपुर गोंडी के समाचार बुलेटिन का संग नन्ना सुखलाल नेता नेटा मुदल समाचार। स्कूल शिक्षा विभाग प्राइवेट स्कूल ना देख रेख तक आज राज थे या देश में थे समिति बना की तो राज्य सरकार खदान करना काज थे साफ सफाई गीला सिखवाते तुरते काम किया ना काजे खनन सूचना केंद्र था वने बना की तो नीति आयोग जारी आकांक्षी ब्लॉक न चैंपियंस आप दकवाटर खबर ते विजयपुर ता उसूर ब्लॉक ते दूसरा नंबर पैतूर राजता सबो डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस ता 25-26 मई तक दिया बचत किया ना खाता खोले किया ना काजी वरह काम चला की किया तो इधर सब समाचार तुन ओंडाले के इंजार छत्तीसगढ़ ते स्कूल शिक्षा विभाग प्राइवेट स्कूल का देख रेख करना काजे देश मेटे ते समिति बना की तोर इधे समिति प्राइवेट स्कूल ते फीस बढ़ा की आना और किताब कपड़ा आसाना ता शिकायत ता जांच की यार इधे काजे स्कूल शिक्षा विभाग सबो जिला नोर कलेक्टर लोर कुन चिट्ठी जारी की तोर जारी आदेश ते इतोर की सरकार न मती ते इधे खबर वासमता की छत्तीसगढ़ से संचालित प्राइवेट स्कूल आयाल बाबुल लोरकुन किताब कपड़ा और दूसरा सामान बढ़े बदे बने उन्दी फार्म दुकान वत आसाना काजे जोर किया मंतुर उन्दे दुकान तब बहुत ज्यादा दाम तब बने वत आयाल बाबुल कुन रुपया पैसांग ने बोझ बढ़े मानता होना शिकायत तुन तुरते साफ किया ना काजे जिला और ब्लॉक स्तर ते देख रेख और जांच किया ना काजे समिति बना की तोर स्कूल शिक्षा विभाग मुने वायना पढ़ाई वर्षा तक काम काजे सरकारी स्कूल दे लोकल फीस बढ़ा किया ना आदेश जारी की तोर इध पुनः फीस सरकारी स्कूल का ना संगे संगे स्वामी आत्मानंद स्कूल और सरकारी मदद पुटाना स्कूल ते बने लागू आया नू जारी आदेश ते हिसाब ते हाई स्कूल ते स्तर ते पढ़े केवल और ना लोकल फीस ही देख नालूंग सौ को 10 रुपया ना बढ़ा की हैंग 100 रुपया की सी तोर अगर बढ़ाई स्कूल तुर पढ़े केवल और कुन ई देख नालूंग सौ 45 रुपया ना जगह हैंग सौ 50 रुपया की सी हिया ना आया तो विभाग अनुसार पुनः फीस मुने वायना पढ़ाई केवल और वर्षा शिक्षा सत्र लागू राज्य सरकार खदान काम काज ते साफ सफाई और शिकायत ते तुरते काम किया ना था काजे सूचना केंद्र बना की तोर ईद काम तहत टोल फ्री नंबर 1800-2-1400 जारी की तोर ईद नंबर ते आप लोग चोरी छिपे खादान कारवालोर चोरी छिपे गाड़ी ते माल वे वालोर कुन और कल गिटिंग न गड़बड़ी ते शिकायत सोजे शिकायत किया लाई परानूर कबर केंद्र हर दिना नरकी ता 10 बजे तह मुलन बेरा 5:30 बजे औना किया ना आयार मुख्य सचिव विकासशील जल जीवन मिशन तहत राज्य ते रोजे एर हियाना और एर ता गुणवत्ता तो लगातार जांच किया ना काजे बरहोर अधिकारी लोर कुन हुकुम ही तोर इसलिंगे ते मंत्रालय ते राज्य एयर और स्वच्छ मिशन ता एक्सप्रेस कमेटी ता बैठक ते जल जीवन मिशन ता पॉइंट ओ पीएम जनमन कार्यक्रम और पीवीटीजी टोल बना की लेते उंडाना एयर ता हुजाड़ता संगे संगे दूसरा न खूबे कतमता तो पुल्लो वड़कना आत मुख्य सचिव इतोर की इदे नल एयर योजना कुन सुचारू बेश यश बेश किया ना आयार और देख रेख ते विशेष ध्यान हिया ना जरूरी आम छत्तीसगढ़ ते आदिवासी समाज अवना सरकारी योजना कुन अभियान काजे 28 मई ता जन भागीदारी शब्द से दूर सबसे पहले काम किया ना आनता ईद काम तहत आदिवासी इलाका ते बरहा जन जागरूकता कार्यक्रम चला की लोकुरकुन सरकारी योजना तक खबर ही ना ही अंतर संगेते ही आदि सेवा केंद्र ते लोकुरकना कथक इंजना कार्यक्रम की शिकायत करना साफ किया ना बने की अंतर राज्य ते पीएम जनमन योजना और धरती आवा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान तहत चुने के लिए लगभग 8000 नाहकने और 7000 वत ज्यादा आदि सेवा केंद्र माध्यम से ईद काम चला किया ना किया तोर जनजाति गौरव उत्सव जन भागीदारी अभियान तहत बस्तर जिला तक मुंड सौक 77 नाहकुन धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष चला किया का जे चुने की तोर इदे चला किया तहत लोकुरकुन सरकारी योजना जानकारी ही आना था संगे संगे ते ओना समस्या या तकलीफ त साफ दूर किया ना आनता ईद अभियान तत बेरा आयना तबोई गतिविधि बढ़ा किस प्रतिवेदन तैयार किस अधिन आदि प्रसारण पोर्टल ते अपलोड किया ना आनता जनजाति गरिमा उत्सव तहत ईद अभियान नाड़ 25 मई आउना चले मायार नीति आयोग वत जारी राजता आकांक्षाई विलाखता चैंपियंस द चैंपियंस ऑफ द क्वार्टर रिपोर्ट ते बीजापुर जिला तबूसुर ब्लॉक सेंट्रल जोन ते देश में ते दूसरा नंबर पैतू आयोग डॉक्टर सेवा और समाज ता विकास ता अलग अलग नियम ते जांच की

अभी आप सुन रहे थे गोंडी समाचार बुलेटिन। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:44 हुए हैं। विज्ञापनों के बाद प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
6: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
6: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
7: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
5: कहाँ
7: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव,
5: आरबीआई कहता है।
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
10: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
9: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
10: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
9: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
10: क्यों?
9: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
11: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
12: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते किसानों को इस वर्ष यूरिया और डीएपी पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ा कम दिया जाएगा, राज्य सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। राष्ट्रपति कल नई दिल्ली में प्रदान करेंगी पद्म पुरस्कार। दंतेवाड़ा जिले के गोडबोले दंपति को भी पद्मश्री से किया जाएगा सम्मानित। प्रदेश के सभी डाकघरों में अगले दो दिन अल्प बचत खाता खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। और सुरक्षा बलों ने कांकेर नारायणपुर के सीमावर्ती इलाके से बड़ी मात्रा में नक्सल डंप बरामद किया। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने खरीफ वर्ष 2026 के लिए सहकारी क्षेत्र में उर्वरक वितरण संबंधी नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार बीते वर्ष किसानों को वितरित की गई उर्वरक की मात्रा के आधार पर इस वर्ष का कोटा तय किया गया है। इसके तहत इस वर्ष किसानों को यूरिया की 80% मात्रा ही पारंपरिक यूरिया के रूप में दी जाएगी, शेष 20% मात्रा उपलब्धता के आधार पर प्रदान की जाएगी या उसके बदले नैनो यूरिया दिया जाएगा। डीएपी वितरण भी पिछले वर्ष के मुकाबले 60% ही किया जाएगा, शेष 4% मात्रा के लिए वैकल्पिक एनपीके उर्वरक या नैनो डीएपी उपलब्ध कराया जाएगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी किसान को नैनो उर्वरक लेने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, यह व्यवस्था पूरी तरह वैकल्पिक होगी। गौरतलब है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों तथा खाड़ी क्षेत्र में चल रहे तनाव के मद्देनजर राज्य सरकार ने किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए यह निर्णय लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 25 मई को नई दिल्ली में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इनमें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले को संयुक्त रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर आकाशवाणी नई दिल्ली अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ शासन को विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 2 माह में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि राज्य में 49,000 से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए करीब 4,000 विशेष शिक्षकों की जरूरत है। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि 848 स्वीकृत पदों में से 62 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 155 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और 85 विशेष शिक्षकों को स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होने का अवसर दिया जाए। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से सभी राज्यों में लागू हो जाएगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने नियमों में सख्ती करते हुए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार अब हवाई यात्री एयरपोर्ट के सुरक्षा होल्ड एरिया पर रेल बनाना पूरी तरह से बैन रहेगा। साथ ही हवाई जहाज के खड़े होने वाली जगह और बस से यात्रियों को विमान ले जाने वाले तक स्थान पर रुककर रील फोटो या वीडियो बनाना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और आम लोगों को घबरा कर अतिरिक्त खरीदी करने की जरूरत नहीं है। सरकार के अनुसार राज्य में करीब 3,94,00,000 लीटर पेट्रोल और 8,08,00,000 लीटर से अधिक डीजल का भंडार उपलब्ध है। किसानों और जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए ईंधन की नियमित आपूर्ति जारी है। राज्य में 22 मई से ड्रम और जेरिकेन में पेट्रोल डीजल देने पर रोक लगाई गई है। सरकार ने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत कांकेर नारायणपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 2 अलग-अलग स्थानों से डंप बरामद किया है। डीआरजी बीएसएफ और बीडीएस की संयुक्त टीम ने कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पल्लाहूर और जपमरका के बीच जंगल में छिपाकर रखे गए नक्सल डंप को बरामद किया। इसमें बीजीएल लॉन्चर, बीजीएल सेल, फायर कार्टेज, AK-47 और SLR का खाली कार्टेज सहित विभिन्न विस्फोटक सामग्री शामिल हैं। इसी तरह सुरक्षा बलों ने कांकेर नारायणपुर सीमावर्ती क्षेत्र के ग्राम मरकाबेड़ा, आदनार और एलूर के बीच जंगल से भी नक्सल सामग्री बरामद की है। इसमें 3 12-बोर की राइफल, बीजीएल लॉन्चर, बारूद और इलेक्ट्रिक डिटोनेटर सहित विस्फोटक सामग्री शामिल हैं। उधर राजनांदगांव जिले की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में माओवाद विरोधी अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान नक्सली डंप बरामद किया। डंप से हथियार निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
13: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
12: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। जांजगीर चांपा जिले की पर्वतारोही अमिता श्रीवास ने बीती 22 मई को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सफलतापूर्वक फतह किया। हालांकि वापसी के दौरान अत्यंत कम तापमान और ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें आज हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर काठमांडू के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस घटना की जानकारी मिलते ही राज्य के उच्च अधिकारियों को समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अमिता के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल द्वारा प्रदेश के सभी डाकघरों में कल और परसों यानी 25 और 26 मई को अल्प बचत खाता खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान कोई भी नागरिक अपने नजदीकी डाकघर जाकर या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकृत एजेंटों के माध्यम से अल्प बचत योजनाओं जैसे मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि में निवेश कर सकेंगे। प्रदेश में संचालित प्रयास बालक और कन्या आवासीय विद्यालयों के वर्तमान सत्र में प्रवेश के लिए आयोजित प्राक चयन परीक्षा के मॉडल उत्तर जारी कर दिए गए हैं। विद्यार्थियों से कक्षा नौवीं प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र या उत्तरों से संबंधित किसी भी प्रकार की दावा और आपत्तियां 30 मई को शाम 5:30 बजे तक आमंत्रित की गई है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरिया पुलिस ने धान खरीदी में फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए साल्हे ऊना उपार्जन केंद्र के समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इन पर आरोप है कि बिना धान की वास्तविक आवक के ही ऑनलाइन एंट्री कर करीब 99 लाख रूपये का गबन किया गया। इस मामले में सहायक खाद्य अधिकारी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद सहित प्रदेश के 18 जिलों में एक दो स्थानों पर लू चलने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम से आने वाली शुष्क और गर्म हवा के प्रभाव के कारण अधिकतम तापमान बढ़ा हुआ है जिसके कारण गर्मी से अभी राहत मिलने की संभावना नहीं है। वहीं आज रायपुर में 43.6, बिलासपुर में 43.4 और जगदलपुर में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इस बीच विशेषज्ञों ने लू से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। विशेषज्ञों ने पानी और तरल पदार्थों का सेवन करने, हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने और पूरे शरीर को ढककर रखने की सलाह दी है। साथ ही अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने की भी अपील की है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। कबीरधाम जिले के एक राइस मिल में चोरी करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी हुआ चावल भी बरामद कर लिया गया है। बालोद जिले के ग्राम सिवनी और देउर तराई क्षेत्र में जिला प्रशासन और पुलिस ने तांदुला नदी तट पर हुए अवैध कब्जों को हटाने के लिए अभियान चलाया। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के बारनवापारा अभयारण्य के पास देवपुर में बच्चों के लिए विशेष नेचर कैंप का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर बलौदाबाजार वन मंडल के विभिन्न वन परिक्षेत्रों और अभयारण्य क्षेत्रों में जन जागरूकता और सहभागिता आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत सारंगढ़ में वस्तु प्रदर्शनी सह विक्रय मेले का आयोजन किया गया। मेले में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के जनजातीय कारीगरों ने हिस्सा लिया। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में जिला शिक्षा अधिकारी ने 2 सहायक शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। दोनों पर कर्तव्य पालन में लापरवाही बरतने का आरोप है। रायपुर पुलिस ने पंजाब से ड्रग की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 56 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है। जांजगीर के करही गांव में करीब 1 महीने पहले हुए गोलीकांड के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बिटकॉइन में निवेश कर मुनाफा दिलाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 7.5 लाख रूपये की धोखाधड़ी करने के मामले में दुर्ग पुलिस ने एक आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते किसानों को इस वर्ष यूरिया और डीएपी पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ा कम दिया जाएगा। राज्य सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। राष्ट्रपति कल नई दिल्ली में प्रदान करेंगी पद्म पुरस्कार। दंतेवाड़ा जिले के गोडबोले दंपति को भी पद्मश्री से किया जाएगा सम्मानित। प्रदेश के सभी डाकघरों में अगले 2 दिन अल्प बचत खाता खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और सुरक्षा बलों ने कांकेर नारायणपुर के सीमावर्ती इलाके से बड़ी मात्रा में नक्सल डंप बरामद किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
14: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: राम राम ना ठिरू राम राम
1: राम राम जगतू राम राम अमर लिसना ने
0: अमर ले। और इसी संगे संगे बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुन तोर सब पाए गाँव कारी दादा दीदी सियान सजन सौ जंगरिया के मैं रेडियो भीतर ले जगतू
1: और मैं टीरू हमें दोनों करूं से राम राम
0: और दक टीरू हमके नानी नानी पीला जिला के नहीं बिल्कुल ने
1: ओके
0: कसन बल्ले हुन मन ज्यादा।

0: बेलपिला जिला मनाए उनके हामी आप लोग रीति नीति ने परंपरा ये सब पाए जो जानकारी हम के देते रहे ने
1: देते रहे का
0: युवा पीढ़ी आए ये कंप्यूटर चो जुग बोले सोत ने मशीन चो जुग आए ने कल चो जुग आए
1: okay.
0: तो असन दाए हम के हम चो पीला जिला के ज्यादा ध्यान देउक लागे दे
1: ध्यान देउक लागे कसन बल्ले हम चो जोन बल्ले जितलो गाँव पारा ने वैसे उन पूरा रीति नीति मन के सिकालेन तो जान दे हम पिला मन ने नी सिकाल और कहाँ ले जानो
0: और अच्छा समय आए असन आए कसन बल ले वे छुट्टी चोद समय आए ने और जंजाल एकदम घाम बेले छे के से खूबे गर्मी होए से और असन दाए पीला जिला मन बिल कहाँ ही नहीं जाओ घरे रह सोत असन दाए हम के हम चो जसन हम कसन आओ हम चो गाँव का आया है आए कसन हम काय काय करू से जोन बेलाए हम चो बस्तर चो जानकारी आए नाले हम के हम चो बड़े लोग चो कसन हम के इज्जत मान कर तो रहा है इस पाए गोट मन के सिखा ले अभी हुन मन लगे समय आए कसन बल ले अभी स्कूल खुले दे उन चो बाद ने आदो जो जुआन लेकर लेके मन कॉलेज जा दे उन चो बाद ने खूब प्रकार चो हुन मन लगे खूब बहाना बेले आए बोल तो हिसाब आए और खूब काम बेल रहे थे ने
1: okay.
0: तो उदलदा हम सीखो नहीं सको ने?
1: नहीं सको कसन बल ले हम चो लगे उदलदा समय बल नहीं रहे से नहीं
0: तो दादा दीदी मन दका ये बढ़िया समय आसे और संदाय हम चो पीला झीला के हामी आप लोग जोन बेले हम चो संस्कृति आए हम चो गोट आए हम चो हामी जो बनाऊ से हम पिंदू से हम काया ये सफाई चो जानकारी हामी आप लोग जोन बेले जुआन लेका लेके आसत ने
1: okay.
0: हम के सांग तुरा देखिये गोट बात तो होली ने टीरू
1: okay.
0: ये दे आरु गोट मन बेले आसे अले गोट मन के बेले हाले हमी सुन
1: आले मन के बेले मराऊं

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है, जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
3: जीएसटी काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तगा टैक्स तुन और वन सरल बना की तोड़। बस, ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडोई लेकिन 18% टैक्स की सी तोड़। मुन्ने अद 28% मत्ता। एचएस कोड क्लासिफिकेशन किन परवा की वलेवा गाड़ी न सामान तपोर्रो इंजे ओंडोई 18% टैक्स की सी तोड़। इत बुताते इव सामान पाड़नोर और सामान तच इयनोड़ा तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओयन बूता सरल आयना उम्मीद मिंदे। इलेक्ट्रिक गाड़ी न पोर्रो मुन्नीटा लेकेन 8% टैक्स मंता। नेलत माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो। कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मूंड चक्का ना गाड़ी 8% जीएसटी मोला देने दोर किता अदेन के अवसो बेड कम टैक्स तक गाड़ी बने मास।

0: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस उपरे एवर एक समान 18% कर लागे दे आगे ये 28% रहे। एचएस कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा करलो बिना ऑटो पार्ट्स उपरे एवर एक समान 18% कर होली से ये काम ले कल पुर्जा बनातो कंपनी अरु घेनतो लोग अरु सप्लायर्स चो चीपा गुचे दे एच संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम भले सरल हो दे। बिजली ले चलतो बीती गाड़ी उपरे 5% कर लागे दे ए मन्ने काही बदलाव नहीं होली से। बिजली ले चलतो सपाई गाड़ी दुई चक्का बीती गाड़ी अरु तीन चक्का बीती गाड़ी उपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे। असन ले ये मन सपाई कम जीएसटी दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनु रह दे।
1: तो जग तू ये जाला मन के तमरा लो ने असनी ची आमचो मोड्रा ने आजी कानून चो गोट मन के आमचे लगे दरो नमर ला से श्री नरेंद्र कुमार साहब अरे मन संगे गोट बात करे सोत प्रतिमा जवानी आले कानून चो गोट मन के बले अमराऊ
2: आले

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं प्रतिमा अजमानी स्वागत करती हूं आप सभी का कार्यक्रम कानून की बात में। श्रोताओं, जीवन में रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और वो जीवन भर के लिए होते हैं, जैसे माता पिता और संतान का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता। कई बार समय का चक्र कुछ इस तरह घूमता है कि इन रिश्तों के बीच कानून को मदद के लिए आगे आना पड़ता है ताकि हर एक व्यक्ति को जीवन की बुनियादी सुविधाएं मिल सके। आज कार्यक्रम कानून की बात में जानकारी लेंगे नए आपराधिक कानून में भरण पोषण के प्रावधान, निशुल्क विधिक सहायता योजना और लोक अदालत की। स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है श्री रविंद्र कुमार साव जी को, जो असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के पद पर रायगढ़ छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। नमस्कार सर।
1: नमस्कार मैडम,
0: स्वागत है आपका।
1: जी धन्यवाद।
0: रविंद्र जी, सबसे पहले हम चाहेंगे आप हमें बताएं कि निशुल्क विधिक सहायता योजना क्या है।
1: जी देखिए, अक्सर हम सुनते हैं कि कोर्ट कचहरी का चक्कर बहुत महंगा होता है
0: जी,
1: और हमारे देश में आज भी समाज दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा जो पूंजीपति वर्ग का है या जिनके पास पर्याप्त तो पैसे हैं, वो आसानी से अपने लिए बड़े से बड़ा और महंगा से महंगा वकील खड़े कर लेते हैं, जिससे उनको आसानी से न्याय मिल जाता है। पर आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिन लोग आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हैं, गरीब हैं, शोषण का शिकार हैं, बेसहारा हैं, या कई अन्य ऐसे कारण हैं जिसके वजह से वो कोर्ट नहीं जा पाते, अपने लिए वकील नहीं रख पाते। तो ये विधिक सहायता योजना उन्हीं लोगों के लिए है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का कोई भी नागरिक केवल गरीब होने या किसी अन्य कारणों से अक्षम होने के कारण न्याय से वंचित न रह जाए।
0: बिल्कुल सर, विधिक सहायता योजना के क्या क्या लाभ आम जनता प्राप्त कर सकती है?
1: देखिए, इसमें मुख्य रूप से इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता के लिए वकील उपलब्ध कराना है। पर यह योजना यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इस योजना के अंतर्गत न सिर्फ वकील उपलब्ध कराए जाते हैं, बल्कि कानूनी प्रक्रिया के दौरान जो भी इसमें शुल्क आता है वो सारे शुल्क विधिक सहायता के द्वारा ही दिया जाता है। साथ ही उनके आवेदनों की जो ड्राफ्टिंग होती है, वो सारे आवेदन तैयार किए जाते हैं, सलाह सहायता दिए जाते हैं। इसके साथ ही और भी अनेक
0: अलग तरीके की मदद भी दी जाती है लोगों को,
1: अन्य तरीके की मदद भी लोगों को दी जाती है
0: जी।
1: अभी वर्तमान में विधिक सहायता शिविर के माध्यम से भी आम जनता को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, और लोक अदालत के माध्यम से भी आपसी समझौते से लोगों के विवादों का निराकरण किया जा रहा है। ये भी विधिक सहायता योजना का ही एक अंग है
0: जी। रविंद्र जी, कौन कौन विधिक सहायता योजना प्राप्त कर सकते हैं?
1: विधिक सहायता योजना के लिए क्राइटेरिया बना हुआ है कि जैसे महिलाएं हैं एवं बच्चे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के कोई भी सदस्य प्राप्त कर सकते हैं, औद्योगिक श्रमिक या कर्मकार इसके अंतर्गत आते हैं, यदि कोई व्यक्ति जेल में बंद है और उसकी तरफ से कोई अधिवक्ता पैरवी के लिए उपलब्ध नहीं है तो वह भी विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। कोई दिव्यांग व्यक्ति है या आपदा पीड़ित व्यक्ति है, जैसे कि बाढ़, सूखा, भूकंप या दंगों का शिकार कोई व्यक्ति है, या गरीब वर्ग के लोग हैं जिनका आय एक निर्धारित सीमा जो कि निर्धारित किया गया है विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिनियम में, यदि उस आय से वो कम आय रखते हैं तो उन्हें भी विधिक सहायता दिया जा सकता है
0: जी। रविंद्र जी, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
1: जी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे यदि कोई भी व्यक्ति इन सेवाओं का लाभ लेना चाहता है तो अपने स्थानीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में जाकर एक साधारण सा आवेदन दे सकता है
0: जी।
1: यदि उसे आवेदन भरना नहीं आता है तो कार्यालय में जो भी कर्मचारी हैं या पैरालीगल वॉलंटियर हैं वो पूरी तरह से सहायता करते हैं
0: जी। ये बहुत सही है, क्योंकि जो कानून के शब्दों में जिस तरीके का आवेदन किया जाता है वो लोगों के लिए उतना सरल नहीं होता
1: जी। जी मैडम, अक्सर विधिक सहायता के लिए ऐसे लोग आते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, गरीब वर्ग के होते हैं और कानूनी बातों को वो समझ नहीं पाते
0: जी।
1: तो हमारे पैरालीगल वॉलंटियर या विधिक सहायता के कर्मचारी आवेदन फॉर्म भरने में उनका पूरा सहायता करते हैं। इसमें कुछ बेसिक डिटेल और बहुत ही कम दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड या आय प्रमाण पत्र जैसे सामान्य दस्तावेज ही लगते हैं
0: जी।
1: तो उन दस्तावेजों के आधार पर वो उनकी जानकारियां पूरी खुद से भर देते हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा सहायता मिल सके
0: जी। तो रविंद्र जी, ये तो हो गया कि हम वहां जाकर मिल सकते हैं वकील से
1: जी,
0: पर इसके अलावा कोई और भी तरीका है जिससे हम इस विधिक सहायता केंद्र से संपर्क कर सकें?
1: जी मैडम बिल्कुल। यदि कोई व्यक्ति घर बैठे ही विधिक सहायता का फॉर्म भरना चाहे
0: जी,
1: तो नालसा के द्वारा nalsa.gov.in
0: जी
1: एक वेबसाइट का संचालन किया जा रहा है, जिसमें जो व्यक्ति कंप्यूटर के जानकार है या घर बैठे मोबाइल से भी अगर फॉर्म भरना चाहे तो ऑनलाइन इस पोर्टल के माध्यम से वे आवेदन कर सकते हैं
0: जी।
1: इसके अलावा जैसे आवेदन फॉर्म भरने में या ऑनलाइन पोर्टल में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या यदि उनको कोई कानूनी सलाह चाहिए तो उसके लिए नालसा के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर का भी संचालन किया जा रहा है जो कि नालसा 15100 है
0: जी।
1: इसमें पूरे देश भर के वकीलों को और जो लॉ में एक्सपर्ट हैं उनको जोड़ा गया है जिसके माध्यम से यदि उनका कोई भी कानूनी दिक्कत उस समय आता है तो तत्काल उसका समाधान उसमें किया जाता है।
0: बिल्कुल,
1: ये पूरी तरह से निशुल्क है मैडम, इसमें किसी प्रकार की कोई फीस देनी नहीं पड़ती है
0: जी।
1: और हमेशा एक्सपर्ट अवेलेबल रहते हैं, जैसे किसी समय यदि कोई एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं है या कोई प्रॉब्लम होती है तो कॉल तत्काल ही किसी दूसरे एक्सपर्ट को ट्रांसफर हो जाता है। या इसमें एक सुविधा और भी है मैडम कि यदि तुरंत जवाब नहीं दे पाते हैं कोई एक्सपर्ट
0: जी,
1: तो आपका नंबर ऑटोमेटिकली उनके आईडी पे चले जाता है
0: जी,
1: और वे तुरंत जिस भी समय वो अवेलेबल हो तुरंत ही कॉल बैक करेंगे और आपका प्रॉब्लम पूछेंगे और जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसका निराकरण करने का प्रयास करते हैं
0: जी। बहुत अच्छी सुविधा आपने बताई रविंद्र जी
1: जी,
0: इससे लोगों को मुझे उम्मीद है काफी मदद मिली होगी और मन से एक तरीके का डर भी चला गया होगा
1: जी।
0: रविंद्र जी, अब हम चाहेंगे आप हमें लोक अदालत के बारे में बताएं।
1: मैडम, जैसा कि लोक अदालत नाम है, लोक का मतलब ही होता है जनता का अदालत
0: जी।
1: ये सामान्य अदालत की तुलना में अलग प्रकार का अदालत है जो विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ही आयोजित कराया जाता है
0: जी।
1: इसमें आपसी राजीनामा के आधार पर पक्षकारों के विवादों का निराकरण किया जाता है। ऐसे मामले जिनमें राजीनामा हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के मामले हों, जैसे कई आपराधिक मामले हैं जिनमें राजीनामा का प्रावधान है, या सिविल मामला है, या कोई लेन देन का मामला है, संपत्ति संबंधी विवाद है, या घरेलू मामला है जिसमें राजीनामा हो सकता है, वहां पक्षकारों के आपसी समझौते के आधार पर मामले का निराकरण किया जाता है। सबसे ज्यादा फायदा इसमें यह है मैडम कि जैसे अगर आप किसी रेगुलर लोक अदालत में आवेदन करते हैं तो आपको कोर्ट फीस पे करना पड़ता है, वकील रखना पड़ता है, लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, कई पेशी चलती है, इसी के साथ कई अन्य आवेदन और कानूनी प्रक्रिया का एक अच्छा खासा लंबा प्रक्रिया पालन करना पड़ता है
0: जी।
1: लेकिन लोक अदालत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोक अदालत में पीठासीन अधिकारी के सामने दोनों पक्षकार जाएंगे और जो भी समस्या होता है उसका आपसी बातचीत के माध्यम से निराकरण करने का प्रयास किया जाता है
0: जी।
1: जहां निराकरण हो जाता है वहां तत्काल ही उनको निर्णय दे दिया जाता है। लोक अदालत का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होता है, इसलिए वो हर जगह मान्य है
0: जी।
1: तो इससे पक्षकार जो लंबी पेशियों में लंबी कतारों में लगे रहते थे अब उनको सामना करना नहीं पड़ता, एक ही बार में उनके मामले का अंतिम निराकरण हो जाता है, कोर्ट फीस पे करना नहीं पड़ता है तो कोर्ट फीस की भी बचत हो जाती है
0: जी।
1: एक ही दिन में निराकरण हो जाता है इसलिए उनको कई कई सालों तक इंतजार करना नहीं पड़ता है। इसमें वकील रखने की भी आवश्यकता नहीं है मैडम
0: जी,
1: इसमें वकील की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना ही किसी प्रकार की कोई कानूनी बहुत लंबी जटिल प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। तो इसलिए ये लोक अदालत जनता की सुविधा के लिए, जनता का जनता के लिए अदालत ही वास्तव में लोक अदालत है
0: जी। सर, आगामी लोक अदालत कब है, हम चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: जी, आगामी लोक अदालत 12 सितंबर 2026 को आयोजित की जाने वाली है
0: जी। रविंद्र जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी विधिक सहायता योजना और लोक अदालत की हमारे श्रोताओं को दी। इसी कड़ी को अब आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे आप श्रोताओं को महिलाओं, बच्चों और माता पिता के संबंध में भरण पोषण कानून के बारे में कुछ जानकारी दें। ये प्रावधान क्या है, हम चाहेंगे आप हमें बताएं।
1: भरण पोषण का प्रावधान पुराने दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 125 में था
0: जी।
1: वर्तमान में 1 जुलाई 2024 से नए आपराधिक कानून लागू हो जाने के बाद धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इसका प्रावधान दिया गया है, जिसमें वे लोग जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और अपना भरण पोषण कर पाने में पूरी तरह से असमर्थ है
0: जी,
1: तो वे न्यायालय के माध्यम से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। जैसे ये विशेष रूप से बनाया गया है कानून की पत्नी, बच्चे तथा माता पिता जो अपना भरण पोषण कर पाने में असमर्थ हैं, वे भरण पोषण मांग सकते हैं
0: जी।
1: पत्नी है यदि वो स्वयं का भरण पोषण नहीं कर पा रही है, बच्चे हैं चाहे वो उनके वैध वारिस हो, वैध बच्चे हो या अवैध संतान हो, दोनों ही प्रकार के संतान भरण पोषण मांग सकते हैं जब तक कि वो बालिक ना हो जाए
0: जी।
1: यदि कोई बालिक पुत्र है
0: हाँ।
1: परंतु वह शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग है और अपना भरण पोषण नहीं कर पाता तो वह भी अपने पिता से भरण पोषण की मांग कर सकता है, और यदि माता पिता जो बुजुर्ग हो चुके हैं अब अपना भरण पोषण कर पाने में असमर्थ है तो वो भी अपने पुत्र से भरण पोषण मांग सकते हैं
0: जी। सर, कितनी राशि मिलती है भरण पोषण के लिए और क्या ये राशि कम या ज्यादा हो सकती है
1: जी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ कोर्ट बहुत सारी चीजों को भरण पोषण के आवेदन का निराकरण करने के समय देखता है, जैसे जिस व्यक्ति से भरण पोषण की राशि वसूलनी है उस व्यक्ति का आय का स्रोत क्या क्या है, उसकी सैलरी कितनी है, उसकी अपनी कितनी जिम्मेदारियां हैं, और जिस व्यक्ति को भरण पोषण दिया जाना है उसका रहन सहन कितना है, ताकि सामने वाले व्यक्ति जिसको भरण पोषण देना है उसकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो सके।
0: बिल्कुल।
1: तो इसके लिए कोई निर्धारित राशि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ये परिस्थिति को देखते हुए न्यायालय के द्वारा निराकृत किया जाता है।
0: जी वकील साहब, आदेश का पालन न करने पर क्या सजा मिलती है इस प्रावधान के तहत?
1: जी, यदि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध भरण पोषण का आदेश पारित किया गया है
0: जी
1: जानबूझकर भरण पोषण देने में अवहेलना करता है, जानबूझकर वो भरण पोषण नहीं देता है, तो सबसे पहले तो न्यायालय के पास ये अधिकार है कि न्यायालय चाहे तो गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है।
0: जी,
1: गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर भी अगर वो भरण पोषण नहीं देता है तो सिविल कारावास में भी डाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त जिस व्यक्ति से भरण पोषण वसूलना है उसके संपत्ति की कुर्की हो सकती है, जब्ती हो सकती है, या उसके वेतन से कटौती हो सकती है, और फिर भी यदि वो व्यक्ति जानबूझकर बार बार भरण पोषण देने में चूक करता है तो इसे न्यायालय अपने अवमानना समझकर अवमानना की कार्रवाई भी कर सकता है।
0: जी रविंद्र जी, फैसला आने में काफी समय लग जाता है, ऐसे में जिस व्यक्ति ने आवेदन किया है उसका जीवन किस तरह चलेगा, उसके लिए क्या उपाय है?
1: जैसा कि भरण पोषण का आवेदन प्रस्तुत करने के बाद और निराकरण होने के बीच में कई पेशी हो जाती है और इस बीच में पक्षकार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
0: जी,
1: जैसे यदि पति या पत्नी है और वो अलग अलग रह रहे हैं तो उनके आने जाने का खर्च, खुराक खर्च,
0: हाँ,
1: और वो खर्चे, इस बीच में अंतरिम भरण पोषण का एक प्रावधान दिया गया है।
0: जी,
1: अंतरिम भरण पोषण विशेष रूप से इसीलिए बनाया गया है कि जब तक भरण पोषण का आवेदन निराकृत नहीं हो जाता और अंतिम रूप से ये निष्कर्षित नहीं किया जाता कि कितना भरण पोषण राशि आवेदक को दिया जाए या न दिया जाए, इस बीच में उसे एक अस्थायी राहत के रूप में अंतरिम भरण पोषण दिया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य ही यह है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक पीड़ित पक्ष को आर्थिक तंगी से बचाया जा सके। और अभी जो नया आपराधिक कानून आया है इसमें समय सीमा निर्धारित कर दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अंतरिम भरण पोषण के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है
0: जी,
1: तो 60 दिनों के भीतर अदालत को अंतरिम भरण पोषण का आवेदन का निपटारा करना अनिवार्य है और यह तब तक प्रभावी रहता है जब तक कि अंतिम फैसला नहीं कर दिया जाता।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को बताई। सर, अब मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि क्या शादीशुदा बेटी से भी माता पिता भरण पोषण की मांग कर सकते हैं?
1: जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे यदि कोई माता पिता है और उनकी एकमात्र पुत्री है या पुत्री ही पुत्री है, कोई पुत्र नहीं है, और उन पुत्रियों का विवाह हो चुका है, तो केवल शादी हो जाने मात्र से वो अपने माता पिता के प्रति दायित्व जो होता है उससे वो बच नहीं सकते, तो एक विवाहित पुत्री से भी भरण पोषण की मांग की जा सकती है।
0: जी, और क्या सौतेली माँ भी भरण पोषण का दावा कर सकती है?
1: हाँ मैडम, बिल्कुल, सौतेली माँ भी भरण पोषण का दावा कर सकती है। यदि उसके खुद के संतान ना हो, सगे पुत्र पुत्री नहीं है, तो सौतेली माता पिता भी भरण पोषण मांग सकती है यदि वो अपना भरण पोषण स्वयं करने में असमर्थ है तो।
0: जी श्रोताओं, आज कार्यक्रम कानून की बात में हमने जानकारी ली नए आपराधिक कानून में भरण पोषण के प्रावधान की, निःशुल्क विधिक सहायता योजना और लोक अदालत की। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी सारी जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं ये जानकारी हमारे श्रोताओं के जरूर काम आएगी। और अब प्रतिमा अजमानी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: तो जब तू ये काय सुंदर कानून चुगोट मन के सुनते रहो ने,
1: हाँ
0: तो एक आमच लगे दरुने उरो श्री रविंद्र कुमार साहब आरे मन संकोट बात करते हो प्रतिमा जवानी।
1: हाँ
0: तो गड़ी दकले आमचो जातो समय आ बोलो ऐसे
1: हाले
0: तो इति मडरा गडरा सकल मैं विदा मांगे दे।
1: हाले ठीक है।
0: एची संगे बस्तर के सर कार्यक्रम संतोष सब पाए गांव करी दादा दीदी सियान सजन और संगजोरिया संगवारी मन के माए टीरू
1: और मैं जगतू
0: आमी दोनों करूं से राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बस्तर के स्वर, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम आमचो गांव।

0: জুয়ার জগতু জুয়ার
1: জুয়ার না ঠিরু জুয়ার
0: আমার লিসনা নি
1: না আমার লে
0: আমি তো বেড গাটো লুনি এচি সঙ্গে আমচো গাঁও কার্যক্রম শুনতো সপ্পায় গাঁওকারি দাদা দিদি সিয়ান সজন আর সংজোরিয়া সংগারি মন কে মাই টিরু
1: আর মাই জগতু
0: আমি দুনো করু সে জুয়ার
1: তো ঠিরু দা কাজী চো যুগ জো নাই আয় কাসন হুন কাই আয় কল কল যুগ বলে সত নে কল বললে হয় সে তুচো এ মশিন নে আর মশিন চো যুগ আয় নে আর নুয়া নুয়া উয়াটলে কাইচ বলে চিজ কে আমি দেখু সে নুয়া উয়াটলে আমি করতে বিতি দেখু সে নে যসন পহিল পহিল বেলে বিয়া টিকা হয় নে আহুদল দায় বাজা মৌরি নালো বিজা বিয়া টিকা নাই হতে রে মাত্র এবে কায় বাজা মৌরি চো জগা ঘেনলি ধরলি বলুবে বাজা মৌরি চো জগা ধরলি বক্স হলি ডিজে হলি নে এথানে এবে বাজা মৌরি একদম লোফ হলি আয় কাসন তো নুয়া নুয়া জন কায় তো আয় যুগ নে নুয়া নুয়া হিসাব লে কাই না কাই চিজ হয়ে সে হুসনে চিজ দক हम चो किसान खेती किसानी कर तो लोग मन पहले हमी नांगर चलाउ ने
0: okay.
1: बैला भैंसा नांगर के हमी जोतु ने
0: oh.
1: और खूबे दिन बेले लागे हम के
0: लागे
1: के? लगे 10 एकड़ जमीन आए तो उनके महीना भर लागे दे
0: लागे अरे बेदक ने कल मशीन मन नया नया इली तो आमी ट्रैक्टर ओली का ने नांगर जोतो का जे
1: 10 एकड़ के बिल 2 दिन दे 3 दिन ने हमें पूरा जोतुक सकू ने
0: okay.
1: और पहिल जो ना है हम के जोन पैदावार आए काई बोले हमी जहाँ हम चो जन बेड़ा ने खेत हम चो बाड़ी ने मरान ने काई बोले हमी उपजन के लगाऊं तो कम होते रहे
0: okay.
1: मान तरह नया नया विधि ले जन खोजाकारी भाई मन मन सांगला ने हसन भीज जी लिखाए आए हमी नया नया उवाट करुन भती हमी आप लोग फसल के बोले जो हम चो खेती किसानी कर तो भाई बहन मन हम चो फसल के बोले ज्यादा अनगर लाभ के हुन मन कमाए सोत ने
0: सत्य गोट के सांगले कसन बोले ने ड्रिप सिस्टम ने हम के पानी ले बोले बच पानी छबल बचत तो ऐसे यार बीज बोले
1: बराबर जाऊन भाती हुनी रुक ने और हुनी पौधा मन ने जाऊन भाती उन थान जाऊन भाती लगे से ने
0: okay.
1: और खाद बोले बराबर मात्रा ने जाए से फुका जगह नहीं जाए ने
0: oh.
1: और आज ही काली काय होली जोन खोजाकारी मन जोन रला हुन मन काय माटी चो बोले जांच कराए तो ने
0: okay.
1: और हुन चो कार ने काय होए से माटी कसन आए ये थाने काय काय फसल के लगा ले हम के अनगर लाभ मिले दे ने
0: oh.
1: और मुनाफा ज्यादा होए दे ज्यादा कमाई होए दे और कितलो हम के थाने खत के डालुक लागे दे ये सब पाए हम माटी चो जांच कर ले हम के जानुक होए से
0: वैसे का?
1: ने? तो यही काजे हम ही जो ना नया नया आप लोग जितलो खेती किसानी कर तो भाई दादा दीदी मन के हम यही बोलू चाहू से कि हम ही आप लोग माटी चो जांच के कराऊं और नुआ नुआ खोजाखारी हिसाब ले हम ही आप लोग फसल के हम ही लगाऊं और अनगर लाभ के कमाऊं भाती हम ही आप लोग जो जीवना के और अच्छा हम ही करूं
0: करूं
1: आली एक गोट बात तो होली ने
0: ओके
1: हाले इसी संगे संगे हम चो लगे जाला मना से
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: जीएसटी काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तक टैक्स तुन और सरल बना की तोड़ बस ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडोई लेकिन 18% टैक्स की सित तोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता HS कोड क्लासिफिकेशन किन परवा कीवा लेवा गाड़ी ना सामान तपोरो इंजे ओंडोई 18% टैक्स की सितोड़ इत बुताते यू सामान पाड़नोर और सामान तच इयनोड़ा तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओयन बूता सरल आयना उम्मीद मिंदे इलेक्ट्रिक गाड़ी न पोर्रो मुन्नीटा लेकिन 8% टैक्स मंता नेलत माट इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मूंड चक्का न गाड़ी 8% GST मोला तेने दोरकिता अदेन के और सोबेर कम टैक्स त गाड़ी बने मास मंता।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: हाँ तो टीरू।
0: हाँ जगतू।
1: तू जो मोंड्रा आज ही खूबे बड़े दका दे से ना
0: आसे काय।
1: हाँ तो आले तू जो मोंड्रा के ढीलून दक काय काय आसे जाले।
0: हाँ तो जग तू आज ही हम चलगे अलबी नाटक आसे।
1: हाँ
0: ये नाटक च नाम है सोर अरे एक एली क्लास है सदन सिंह ना।
1: हाँ
0: अरे ये प्रस्तुति है बलवीर सिंह का अले नाटक के बले सुनो और हम चुगाव करी दादा दीदी मन बले सुनो।

0: कमला दीदी, घरे आशीष री, कहाँ गेलीस?
1: ओय, ऐसे ऐसे घरे आसे। आओ आओ मन की के भी लीस
0: एबे तो
1: मास्टर इन होतो के ए बात एक भूलक लीस नोनी। आओ आ बस।
0: हाँ काय दीदी, सुरता है तो के बल्ले जाऊं दखे ने दीदी लगे बल्लू।
1: अच्छा कर लीस
0: कसन सपाई लोग ढंगता सत का।
1: हाँ नोनी, सपाई लोग नंगता सुरी। तुई बस नोनी बस, ये दे लक्ष्मण जो बाबा हाट बाटे जा दे।
0: हाँ
1: हाँ होनी काजे भाजी तुला तो काजे हरबर होन गए से मैं। तुई बस है।
0: हाँ।
1: मैं यही लगे भाजी के आनु तू लाइन दे। एबे हुताय आशीष ने नोनी।
0: हो दीदी हुताय ची आसे काय। अच्छा साक के रान से दीदी।
1: हाँ का
0: आ यही लगे आन मैं बल करुक लागें दे।
1: रोबे नोनी ए दे एबे होए दे झटपट तुलाते तुलाएं दे का।
0: मानतर दीदी एबे तुई भाजी के तो आन लीस।
1: हाँ।
0: काट तो काजी ने।
1: okay.
0: धो तो काजी पानी जे।
1: ये नोनी धोद लो ना हले का है कोनी साक के रांधु आतरी। काट तो पाचे फिर धोएं दे बिजानो।
0: नाई दीदी मैं हुनके नी बले री।
1: हाँ।
0: काट तो पाचे तो धोचे अस का है।
1: हाँ।
0: मैं काट तो पहिल धो तो के बले से।
1: काट तो पहिल बले भाजी के धोवात। आमी तो के बे काट तो पहिल नी धोलू से और पहिल धो के पाछे धो। काय फेर फरक पड़े दे तनोनी रान तोर ची तो आय।
0: ए दे दीदी तू ही फेर बल से।
1: हाँ।
0: कि लेकी मास्टर इन होली गुनक मौके समझाए से।
1: नाई नाई
0: मानतर दीदी।
1: हाँ।
0: काय बले ज्ञान चो गोट होलो ने उनके सांग तोर ची आए मने।
1: ये भाजी तुला तोर बले ज्ञान चो गोट सना जाले सांगुन दखलो नी मैं सुनुन दखेन दे।
0: हाँ दीदी एदे सुन।
1: हाँ।
0: भाजी ने खुबे बल बुपु गुण जिनिस मन भीतरे रहे से।
1: हाँ हाँ।
0: आमी जसन हुन के कार्टून पानी ने धो से उदल दाए आदो बाग उन सकत बीती जिनिस मन पानी ने जाए से।
1: भोरे से ने।
0: हाँ। और हुनके ही नहीं आमी जसन आगे धो से काय मजा लगड़ून भाती फिर पाछे काटू से जाले उन बल बुपु बीती जिनिस मन फोखा नी जाओ।
1: हाँ
0: हाँ। साग नीचे रसो।
1: ऐसे ने।
0: हाँ।
1: असनाय।
0: असनाय।
1: जाले मैं ये गोट के नी जानते रहे नोनी। खुबे नंगत गोट के सांग लिस नोनी। मानता नोनी।
0: हाँ दीदी का है।
1: आमी तो दूसर साग जसन की आलू कुंदरू बांगा करेला ये सब पाए के आगे काटू से ने फिर पाछे धोऊ से।
0: हाँ।
1: काय ये साग मन के बले आगे धोत रहा फिर पाछे काट तो रहा है।
0: खुब्बे नंगत गोट के बल लीस दीदी। सब पाए साग के आगे धो तो रहा है फिर काट तो रहा। असन कर लो ने हुंचो भीतर चो बल बपू तो फोखा नीचे जाए।
1: हाँ।
0: संगे संगे और बले गोटक फायदा आए।
1: थेब नोनी मैं पानी आने से ता है धोन तुलाते तुलाते तुझे गोट के बले सुने दे।
0: आले आन
1: ए दे काय नोनी काली गोटक नुआ नखे घेन ले से ए थाने पानी आने से।
0: आन अच्छा तो आसे आन आन
1: ए दे ए दे ए नखी तो आए।
0: हाँ
1: अबर सांग साग के आगे धो तो राय ने और दूसर फायदा का आया हुंचो।
0: ए दे दीदी दक।
1: हाँ।
0: ए भाजी कहाँ है नहाले कहाँ है मंडाउन रला
1: रला
0: कसन हाते छिवला कसन नहीं। बेड़ा ले निकराउन एता हुता बुला लावे। कौन लगचो माटी और कौन लगचो चिखल काई जाई हो रहे।
1: हाँ, हाँ, हाँ,
0: आगे धो तो के हुन सब पाए निकरुन जाए से
1: जाए। हाँ, हाँ,
0: कसन।
1: हाँ,
0: कार्टून भाती धोलो ने हुत्रो सफाई कहाँ ले निकरे दे कसन दीदी।
1: हाँ,
0: तुच विचार कर और सा।
1: हाँ, नोनी सत्य बोलसी नोनी तुई।
0: और नहीं दीदी।
1: हाँ,
0: कोनी कोनी बेड़ा ने दवाई बले छितु रसोत
1: छिछोत का है।
0: हाँ, हाँ, बेड़ा ले आनुन बिकसोत। उदल दा एक के हार काट लो ने साग ऊपरे पड़ लो दवाई बले तो एक के हार नी निकरे।
1: हाँ, तू सत्य बलसीस नोनी अद्दा मैं कहीं ची साग हो आगे धोएं दे पाचे फिर काटेंदी।
0: हाँ। ए दीदी
1: हाँ।
0: तू चो पारा चो दुई चार झन मेहरार मन के मनुक मन के संज बे रखेंदी हाक दे से
1: काय काजे
0: मैं असनी गोट मन के नहीं सांगू एं दे।
1: हाँ। अच्छा गोट सांगलिस नोनी
0: आले।
1: हाँ,
0: तेबे एबे मैं जाए से
1: पानी बोले तो पीतीस नोनी
0: काय नहीं हो दीदी पाचे के तो एं दे चे।
1: हाँ,
0: तेबे पिए दे
1: जाए से। हाँ ऐसे ऐसे
0: हाँ हाँ हाँ
1: हाँ।

0: कुक करते
1: सत्ते पल्लीस भाई
0: और पानी बोले छुक छुक का रहे से और पियो तो लोग मन के बोले छुक छुक का पानी नहीं रहे
1: सत्ते सांग दी तो आसने
2: मानता रतुई पक्की गोट के सांगलीस नोनी एदाय हार गेलो ने मैं बोले डांडी बीती कसला आने देना
3: ओय मैं बोले आने देना मानता गोट गोट तो आए
0: काय गोटा
4: काय गोटा काय गोटा
3: ये दे ये बे स्वच्छ भारत अभियान चले से जे खून ने सफाई के सांग सोत साफ सफाई रहा घर द्वार के नीको संगावा गांव खोर के नीको संगावा झाड़ा खोली बनावा बाहरे बाटे झाड़ा नहीं जा बोलून झाड़ा खोली ने जा बोल सो ने ये सफाई तो नंगत गोट है मानतर साफ सफाई बोले सफाई बाटे लागे से रांधा सार ने बोले साफ सफाई लागे से ये गोट के जाले मन की नौनी सांगली मके मन के भाव ली
4: मास्टर नहीं होली
2: होय ना बोंडका मन की नोनी मास्टरिन बनून भाती खुबे ज्ञान चो गोट के सीख ली समझ ली ना और आम के बोले सिखाए से कितलो नंगत गोट आए ना आले ए कमला इलो लोग मन का जे खिंडिक चाह होले ने अच्छा नहीं होती
4: चाह का जे बन ले का मानतर आजी मन की चो मन कर लो गुड़ बना के तो पीऊं देखा
1: हाल वाल हाल बना बना अच्छा बना लिसनोनी
4: आले पिया
0: अच्छा होली दीदी हाँ। देह पाए काजे असनी नंगत सीतर जिनिस मन तो नंगत रहे से हाँ। आले सपाए के मैं वाले बाटुक लागे से आले आना
1: तू ही बस नोनी आमी डोकरी लोग देव को लागूं दे तू तो आम चो मास्टर नी आसकाय आम के नंगत ज्ञान के सिखाईसी तू बस आमी बाटूं दे
4: मैं बाटे से बस
0: आले बड़े आया आले

0: मेटे बोड़ा ए काकी तुम्हें कहाँ जा सास
1: कहाँ जाऊन ता बाबू आम के मास्टर नोनी नंगत सोर्च गोट के सांग रहे दू तीन जन के हुन सांगली फिर आप लोग ड्यूटी ने गेली तेबे आमी बोले आम चो ड्यूटी ने निकल से समझ लीस
0: बोलो ने बड़ा है मन की नोनी चो तो ड्यूटी मास्टर इन ड्यूटी आए मात्र तुम चो काय ड्यूटी आए गुने
1: ए कमला ये भकवा के तु समझाओ बे
0: आले बहु तुम ही समझावा ए बड़ा है मौके समझाओ नहीं सके
2: ए दे बाबू गोटक दिया ले दूसर दिया के बारलो ने दूसर दिया बले बरे से कि नाई
0: हो बरे से
2: हाँ हुन दिन मन की नोनी आम च घरे गियान च गोट सोर च गोट साफ सफाई च गोट सांगली कि नाई है दिया बारली कि नाई
0: फेर
2: काय हुन आम के सांगली फेर हमी समझुन भात ले बे सफाई मी सुन भाती दूसर मन के सांगुन दे हुंची काजे नहीं सकलू से असने असने गोटो गोटोक दिया बरते गेले गुलाय गाँव ने उजर होए दे कि नाई
1: ए बार समझ लीज भकवा ले का
0: हो बड़ा समझ ले खूबे नंगत करा सास जाले मैं बोले मोचो हिसाब ने असने छुक चुका सोर चो गोट के सप्पाय के सांगते जाएं दे
1: ए ले का तू तो बलसी सप्पाय के सांगें दे मंतर गोटो गोट के तो सांग
0: काय गोट बड़ा
1: तुई तुचो घरे झाड़ा खोली तो बना लीसिस
0: हो
1: फिर बिहाने बिहाने झाड़ा खोटी के धरुन कौन बैठ जाते रही
0: ए, ए, ए, हुन, हुन नहीं होता होता जाओ कुनी भाई
1: है जाओ कुनी भाई मने तुई सुनूरा एबर तू के बिहाने दख ले कहाँ बाहरिया जा तो बाटे फेर दख एबे तो आमी मेहरार मांदी गांव ने उजर काजी दिया बारुक निकरलू से उदल दाय आमी सब पाए दूसर हिसाब ने दिया बारवा दा
0: नहीं नहीं अबर नहीं रांदा सार ले धरुन गुलाय गांव कहाँ गिन गिना नहीं रहे दे ये दे ये दे मैं आप लोग कान के धरे से झाड़ा खोली चो टकर करें दे झाड़ा कोंडी दरुन काहे बाहर या नहीं जाए
1: ये फिर समझ लिस ने
2: ये ने कमल ने

0: हाँ तो ठीरू
1: हाँ
0: द काय नगत नाटक रली ने सोर बुलुन भाती और एक लिखला सो सदन सिंह नाग और हम चु लगे हमरा ला बलबीर सिंह कच्छ और ये थाने भाग धरु लोग मंच ना सांगुंदक
1: श्री विक्रम कुमार सोनी श्री रमजम कच्छ श्रीमती लक्ष्मी मंडल श्रीमती भूमिका दास निषाद और सुश्री सरस्वती राय कुमार।
0: हाँ तो दक ये समय बले आसे और हम चो जो दादा दीदी मन संगे संगे नानी नानी पीला जिला मन बले टाकुन रहे सोत की कोनी ना कोनी गीत गोविंद ए मन चो रहे से बोलू ने
1: okay.
0: तो आले हम चो मुंडरा के ढीलू और गोटे गीत के सुनू और गीत सुन लो पाचे गीत कुड़िया चो ना के हमें पाचे के सांगवा
1: आले सुनू।

0: फिर उदा काय नंगत गीत रली भत्री गीत और एक गाउन रला अमीरी राम बघेल और हनुमंच संगवारी मन और मैं देखते रहले तू ही बोले गीत के सुन सुन बड़ा झूमते रही ने
1: okay.
0: तुम के असन लागे तू के और गोटक गीत सुन तुर मन करे ने
1: oh.
0: और तू ची संगे संगे हम चो गाँव का दादा दीदी मन बोले सुन तुर मन करे हन मन के तो आले गोटक गीत के हम फिर सुनू और पाचे गीत कुड़िया चो नाव मन के हम सांगो।

0: तो जग तू एक सुंदर गीत रहे ने
1: अरे बत्री गीत रली
0: अरे गीत के गाउन रो जलदर अरुण मंचो संगवारी
1: मान
0: तो गड़ी दकले ने आमचो समय बोले ऐसे ने तो ती मडरा गडरक सकल
1: हाँ
0: मैं विदा मांगेन
1: आले ठीक है
0: एची संगे आमचो गांव कार्यक्रम सुनतो सप्पाय गांवकारी दादा दीदी सियान सजन और संगजोरिया संगवारी मन के मैं टीरू
1: और मैं जगतू
0: आमी दूनो करूं से
1: जुआर।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
1: बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 8 बजे हैं। लोकगीतों के कार्यक्रम बालीपुल में सुनिए मधुराम और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत।
3: अठारह % टैक्स की सितोड़ इत बुताते यु सामान
4: आ नारद वाला पारा सर की अच्छा सा।

0: लोकगीतों के कार्यक्रम बालीफूल में आप सुन रहे हैं मधुराम और साथियों के गाए हल्बी गीत।
1: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेतनाथ सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेतनाथ सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेतनाथ सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेतनाथ सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: लोकगीतों के कार्यक्रम बालीफूल में आप सुन रहे हैं मधुराम और साथियों के गाए हल्बी गीत।

हालिकराने हटकड़ी लगाने सत जगल पूरे लॉ सिकराने हटकड़ी लगाने सत जगल पूरे।

0: लोकगीतों के कार्यक्रम बालीपुल में अभी आप सुन रहे थे मधुराम और साथियों के गाए हल्बी गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम पीला मन का जे गुट। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है लाला लाजपत राय पर। प्रस्तुति है सुबलू राम कश्यप की।

0: मतो पाठ के दखा उठा काय उठा हो भारत माय तो वीर पीला मन उठा काय उठा हो भारत माय तो वीर पीला मन
1: पीला मन का जी गोट आसे ही सपाय सुना पीला मन की खुबे खुबे मया और चुमा पीला मन भारत देश अंग्रेज मंचू हाथी गुलाम रली ये गोट के जानवा भारत देश ने सबले आगे पूर्त गाली समुंद बाटले बाट खोजला ये बाट चू पता सुनून इंग्लैंड ले अंग्रेज मन जहाज ने सन 1608 ने भारत देश ने अमरला भारत देश ने व्यापार कर तुकाजे ईस्ट इंडिया नाव चू कंपनी बनाला ये कंपनी ने बड़े बड़े अंग्रेज साहेब मन रला भारत देश ने सपाई बाटी पूरला और शहर मन ने चौकी बनाते गेला दिल्ली मुंबई मेरठ कलकत्ता असन चौकी मन ने कंपनी चो गोटो गोटो अंग्रेज साहब मन रला अंग्रेज साहेब मन कंपनी खाजे सिपाही भर्ती करला भारत देश चो जुआन लेका मन के सिपाही पद ने देवन बाती कंपनी सिपाही मन के आपलो हिसाब ने काम कराते रहे भारत ने कंपनी काचा बीती फसल चो व्यापार करते रहे ये खाचा बीती फसल आए आसाम ले चाय पत्ती बंगाल ले जूट महाराष्ट्र ले डांडा कपास मद्रास ले धान तिल मूंगफली ये फसल के ब्रिटेन पटाते रहोत कंपनी के दूसर फसल ले कम फायदा होते रहे और ये बीती ले खूबे फायदा होते रहे भारत देश जो किसान मन के असन फसल कमानी कर तो काजे जबरन कंपनी करते रहे अंग्रेज मन भारत जो जीवना के बले टूटाला और नानी नानी कारखाना के बले नसाऊ दिला भारत जो कच्चा बीती जिनिस के अंग्रेज मन इंग्लैंड नेउन बाती भिक्तो बीती बनाउन और भारत ने आनून आगर मोल ने भिकते रहोत और बाहरी चो देश चो पैसा ले भारत चो लोग की खूबे तकलीफ होते रहे अंग्रेज मन असन करुन खूबे भारत देश चो लोग मन की दंड कसट करते रहोत अंग्रेज मन भारत ने जमींदारी रैतावारी और मालवारी असन उवाट मन बनाला किसान की आपलो जमीन चो हक के नंगाला जमीन चो हिसाब ने पट्टी दरते गेला जमींदार मन किसान की आगर धान पैसा मांगला भारत देश जो लोग मन की खूबे दुख दंड देते रहोत और मार पेटा बले करते रहोत ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत देश जो नंगत बुद्धि बीता मनुक ये चो नावाय मंगल पांडे सिपाही चो काम करते रहे असन दखते दखते मन ने विचार कर लो ये खूबे अत्याचार कर सोत और आप लो संगवारी मन के समझा लो ये कंपनी सरकार आमचो लोग मन के आमचो हाथ ले मारुक तियारे से राजा के राजा संगे लड़ाई से हिंदू के मुसलमान संगे असन उवाट करून कंपनी राज करे से मंगल पांडे बल लो कंपनी सरकार के समझावा नी समझ लेने कंपनी सरकार के लड़वा देश चो मान सम्मान के बचावा आपलो इज्जत के बचावा सन 1857 ने अंग्रेज मन के लड़ूक मुरियाला मंगल पांडे अंग्रेज ऑफिसर की गोली मार लो मंगल पांडे ऑफिसर के मारतो के अंग्रेज सरकार फांसी दिल्ली 8 अप्रैल सन 1857 ने मंगल पांडे के देश चलो ग्रीस और अंग्रेज सरकार चो छावनी के आईग ने ढसाला और खूबे दिन झगड़ा ओली भारत देश जो आजादी खाजे आपलो जीव के बले सोपला ए संगवारी मंचो नावाय भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद राजगुरु रानी लक्ष्मीबाई पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल गंगाधर तिलक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरदार वल्लभ भाई पटेल दादा नौरीज गणेश शंकर मिश्रा लाल बहादुर शास्त्री अशफाक उल्ला खान भारत देश जो आजादी खाजे सपाए पूरे एवं देश काजे सेवा करला अई मन चो असन भारत देश काजे सेवा करला सोत एचो नावाय लाला लाजपत राय यमन चो सेवा गोट के जानवा यमन असनी देश चो रहेत की बचा तो काजी कुबी सेवा करला ये दादा चो नाव है लाला राजपत राय। लाला राजपत राय चो जन्म हुली पंजाब चो मेगा जिला ने सन 28 जनवरी 1865 ने बामन घरे कुबे भरक चू पाचे हरियाणा चो रोहतक और इसार शहर ने वकालत करलो। भारत देश चो राष्ट्रीय कांग्रेस गरम दल चो मुख्य नेता रलो संगे बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र संगे ए तीन मूर्ति के लाल बाल पाल चो नाव ने भारत देश चो लोग जानला। लाला लाजपत राय चो बाप चो नावाय राधा कृष्ण अग्रवाल और माय चो नावाय गुलाब देवी अग्रवाल। लाला लाजपत राय चो नारा आय इनकलाब जिंदाबाद बल्लेने क्रांति अमर रही। भारत देश अंग्रेज

मंशु हाथे नी रहो और देश सपाय लोग अंग्रेज मन के मार तो काजी तैयार रहोत और भारत देश जो मान सम्मान के बचाओत। लाला राजपत राय जैन 28 जनवरी 1865 17 नवंबर 1928 ने भारत जो गोटक जहल पल सेवा करी रलो असन सेवा करतो की पंजाब के श्री बल्ला। लाला राजपत राय शु पढ़ाई लिखाई आप लोग कॉलेज ने होली। लाला अंशराज और गुरुदत्त असन और सेवाकारी देशभक्त मन संगे भेंट ओला। लाला राजपत राय नगत समाज सेवा करलो और समाज चो बाढ़ती बले करलो। बरकाय 1896 धरून 1899 1900 ले धरून 1907 1908 ने भूख पड़ली और कंगाड़ ने भूख मिली। उन समय के देश जो लोग मन के खूबे सहारा होलो असन सेवा करतो की समाज सेवक बले बल्ला। लाला राजपत राय ने भारत देश जो आजादी खाजे खूबे मेहनत कर लो देश जो आजादी काजे पाटे नी होलो और समाज जो न्याय काजे वकालत कर लो। लाला राजपत राय मैगजीन के राजनीतिक गुरु मान लो। लाला राजपत राय लाहौर शहर ने 30 अक्टूबर 1928 के झगड़ा होली। लाला राजपत राय अंग्रेज मन की खूबे रीस होलो उंचो संगवारी मन के खूबे मारला। लाला राजपत राय की छाती ने ठेंगा पावली ठेंगा पातो के लाला लाजपत राय मुरछाउन पड़लो। लाला राजपत राय मारतो बेरा अस्पताल ने 18 दिन तक लाला राजपत राय चु जीव फुटुक फुटुक करते रहे। लाला राजपत राय चु 17 नवंबर 1928 के जीव गेली और बल्लो अंग्रेज मन चु ठेंगा गोटो गोटो ठेंगा चु मार उन मन काजे गोटो गोटो खिला चु काम करे दे। लाला राजपत राय के मारतो के सपाय देश लोग रीस होला। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव और उन मंशु संगवारी मन लाला राजपत राय शु बदला धरतो काजी विचार करला और 17 दिसंबर 1928 ने अंग्रेज पुलिस ऑफिसर सांडर्स की गोली मारला। फिलामन देशो सेवाकारी मंचो गोट बात के सुन ला सदाएं गोटो गीता से आले गीत के बोले सुनो।

0: तू पिलामन असन आमचो देश के बचातो काजे आमचो वीरस पुरुष भाई मन कितरो लड़ला कितरो लोग की फांसी दिला कितरो लोग की गोली मारला असन करुण बारी आमचो देश के बचाला देश जो मान सम्मान के बचाला आज ही उनमन की आमी कितरो सुरता करूं से और उनमन की 15 अगस्त 26 जनवरी काजे मंचो नाव धरूं से यार उन मंचो फोटो के पूजा पाठ करूं से असन बीस पुरुष मन के नाव धर तो रहा है पूजा पाठ कर तो रहा है और बारी आमचो देश के बचा तो काजे अरु देश जो कहीं काम कर तो काजे आम के अच्छा कर्म कर तो रहा है ते भी आमचो नाव रह दे जसन की अभी आमी आमचो देश जो बीस पुरुष मंचो नाव धरूं से उसने लोग मन नाव धर दे देश काजे समाज काजे आम के नाव धर तो रहा है नाम कमात रहा है नाव जगात रहा है पिलामन पढ़ाई लिखाई करुन बारी तुमन मंचो नाव संग संगे माय बाप छु बले
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार ऊर्जा गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका इसराइल ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंदर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
5: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच CBI को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपने श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ओजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विथ द न्यूज एट 9। The headlines. India and US outline trade agreement, energy security and mobility as key areas of cooperation in high-level talks in New Delhi. BJP candidate Debangshu Panda sweeps West Bengal's Falta Assembly repoll by over 1 lakh votes. TMC candidate forfeits deposit. West Bengal government directs all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners. Government ropes in IIT Madras and Kanpur to experts to fix CBSE re-evaluation portal glitches. In Karnataka, 8 people swept away by strong currents in Tatte Hakalu River in Uttara Kannada district. President, Vice President and Prime Minister expressed grief over the loss of lives. Normal life affected due to severe heat wave in central and northwest India. Conditions to continue for next 7 days. And at the Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers clinched 3 gold, 2 silver and 3 bronze medals in Vietnam. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and US Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both leaders reaffirmed the strength of the India-US strategic partnership and outlined key areas of cooperation including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
4: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective.

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 9:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से।

कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन रहे थे जिद्दी फिल्म से लता मंगेशकर के स्वर में। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था SD बर्मन ने। कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में। गीत लिखा है PL संतोषी ने, संगीत दिया है कल्याण जी वीर जी शाह ने। फिल्म का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।

और अब लता मंगेशकर के स्वर में आनंद बख्शी का लिखा गीत, संगीत SD बर्मन का है, फिल्म का नाम है लाखों में एक।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये छतरपुर केंद्र है।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 9:30 होने को है। नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी है। रवि वासरी
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 10 बजे हैं। लोकगीतों के कार्यक्रम दौना में सुनिए मुरई बाई और साथियों के गाए जगार गीत।

लोकगीतों के कार्यक्रम दौना में आप सुन रहे हैं मुरई बाई और साथियों के गाए जगार गीत।

0: लोकगीतों के कार्यक्रम दौना में अभी आप सुन रहे थे मुरई बाई और साथियों के गाए जगार गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 11 बजने को है अंग्रेजी और
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 109,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि यह फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा, बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा